श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है। राष्ट्रीय शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातःकाल के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह की 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगू विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फराज को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

मेरा प्रेम मेरा देश है, जहाँ की मिट्टी में मेरी पहचान बसती है। वतन से इश्क करना मतलब सिर्फ शब्दों का प्रेम नहीं जताना, बल्कि उसके सम्मान के लिए खड़ा होना, उसकी तरक्की में अपना योगदान देना है।

माँ दुर्गा का स्वरूप केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि करुणा, ममता और संरक्षण का प्रतीक है। उनका शेर पर सवार होना हमें यह संदेश देता है कि भय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, माँ की कृपा से वह क्षण भर में समाप्त हो सकता है। जिस पर माँ दुर्गा की कृपा हो, उसके जीवन में भय का कोई स्थान नहीं होता।

जीवन की राहों में अंधेरा घना हो जाता है, जब मन के आकाश पर चिंता के बादल छा जाते हैं, जब हर दिशा में निराशा का सन्नाटा सुनाई देता है, तब हृदय की गहराई से एक ही पुकार उठती है, कान्हा यानी हमारे जीवन के सारथी, वो जो कभी गीता का ज्ञान देकर मोह दूर करते हैं तो कभी माखन चुराकर प्रेम का संदेश देते।

जी का जीवन हमें सिखाता है अटूट विश्वास और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण। उन्होंने अपने जीवन में कभी अहंकार को स्थान नहीं दिया, बल्कि हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित रहे। राम के प्रति उनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: सहयोग मानव जीवन का मूल मंत्र है, जिसके बिना न व्यक्ति की यात्रा पूर्ण होती है और न ही समाज की संरचना सुदृढ़ बन पाती है। जीवन की प्रत्येक उपलब्धि के पीछे कहीं न कहीं सहयोग का अदृश्य किंतु सशक्त हाथ अवश्य होता है। मनुष्य की शक्ति उसकी अकेली क्षमता में नहीं बल्कि सामूहिक सामर्थ्य में निहित है। इसी सत्य को हमारे वैदिक मनीषियों ने अत्यंत प्रभावशाली शब्दों में उद्घोषित किया, संगच्छध्वम संवध्वम सम वो मनांसी जानताम। अर्थात हम साथ चलें, साथ बोलें और हमारे मन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हों, यही सहयोग का मर्म है। विचारों की एकता, भावनाओं का सामंजस्य और कर्मों का समन्वय। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेले रहकर न पूर्ण हो सकता है न सुखी। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु कर्मों की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब उसमें सहयोग का भाव समाहित हो। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सहयोगेन ही सिद्धि स्यात, अर्थात सहयोग से ही कार्यों की सिद्धि होती है। अकेला प्रयास सीमित होता है, जबकि सहयोग युक्त प्रयास असाधारण परिणाम देता है। यदि हम प्रकृति की ओर दृष्टि डालें तो वह स्वयं सहयोग की सजीव पाठशाला प्रतीत होती है। सूर्य प्रकाश देता है, वायु प्राणवायु बनती है, जल जीवन का आधार बनता है और पृथ्वी सबको धारण करती है। इन पंच तत्वों के परस्पर सहयोग से ही सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। एक अकेली बूंद क्षणिक होती है, किंतु अनेक बूंदें जब मिलती है तब वह नदी बनकर कठोर पर्वतों को भी मार्ग दे देती है। इसी भाव को शास्त्रों ने सरल सूत्र में कहा, एकः वृक्षो न वनम्, एक वृक्ष वन नहीं कहलाता। अनेक वृक्षों से ही वन की शोभा होती है और शक्ति और उपयोगिता प्रकट होती है। यही सत्य मानव समाज पर भी लागू होता है। सहयोग का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जहां मैं की भावना प्रबल होती है वहां हम की भावना दुर्बल पड़ जाती है। शास्त्र इसीलिए चेतावनी देते हैं, अहंकारः पतनस्य मूलम्, अहंकार व्यक्ति को अलग करता है जबकि सहयोग जोड़ता है। इसी कारण शास्त्र विनम्रता को महत्व देते हैं, विनयः भूषणम नरस्य, विनम्रता वह आभूषण है जो मनुष्य को सहयोग के योग्य बनाता है। जहां विनय होता है वहीं संवाद होता है और जहां संवाद होता है वहीं समाधान संभव होता है। परिवार में सहयोग से प्रेम, विश्वास और संस्कार पुष्ट होते हैं। जब माता पिता और संतान एक दूसरे का सहयोग करते हैं तब परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं रहता बल्कि संस्कारों की सजीव पाठशाला बन जाता है। विद्यालयों में सहयोग से ज्ञान का विकास होता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब विनम्रता और सहयोग की भावना उत्पन्न करें। कार्य क्षेत्र में सहयोग से परिश्रम फलदायी बनता है और समाज में सहयोग से स्थिरता तथा शांति स्थापित होती है। भारतीय संस्कृति का मूल चिंतन भी सहयोग पर आधारित है। हमारी प्रार्थनाएं केवल व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित नहीं बल्कि समष्टि के मंगल की कामना करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, यह केवल एक श्लोक नहीं है बल्कि सहयोगमय जीवन दृष्टि है, जहां किसी एक का सुख भी सबके सहयोग से ही संभव है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, किंतु जब वह सहयोग से रहित हो जाती है तब वह संघर्ष और वैमनस्य को जन्म देती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वही है जिसमें पराजित को भी सम्मान मिले और विजेता में विनम्रता बनी रहे। इसीलिए कहा गया है, विजयः विनयेन शोभते, विजय तभी शोभनीय होती है जब उसके साथ विनय और सहयोग जुड़ा हो। सच्चा सहयोग वही है जहां बिना कहे किसी की आवश्यकता समझ ली जाए, जहां सफलता का श्रेय सब में बांट लिया जाए और जहां असफलता के क्षणों में भी साथ न छोड़ा जाए। ऐसा सहयोग मनुष्य को संवेदनशील बनाता है और समाज को मानवीय स्वरूप प्रदान करता है। महात्मा गांधी के शब्दों में, किसी समाज की महानता इस बात में नहीं मापी जाती कि वहां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कितना आगे है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहां सबसे दुर्बल व्यक्ति को कितना सहयोग प्राप्त होता है। यही विचार भारतीय चिंतन की आत्मा है।

0: अतः आज आवश्यकता है कि हम सहयोग को केवल भाषणों तक सीमित न रखें, उसे अपने आचरण का संस्कार बनाएं, क्योंकि सहयोग से व्यक्ति महान बनता है, समाज सुदृढ़ होता है और राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। हम सब सहयोग की भावना से युक्त हों, एक दूसरे का परस्पर सम्मान करें और समन्वय के माध्यम से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ें। जब सहयोग हमारा स्वभाव बन जाता है, सम्मान हमारा व्यवहार बन जाता है और समन्वय हमारा मार्ग, तभी व्यक्ति का कल्याण, समाज की सुदृढ़ता और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होती है।
1: आप सुन रही थी चिंतन, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, खेती की बातें। आइए इसके अंतर्गत सुनते हैं कृषि यंत्र की देखभाल के बारे में जानकारी, स्वर बिंदु भाटे।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आज खेती के बात नम हम बात करेंगा अपना ऐसा आधुनिक यंत्र जो कि अपना खेती क्षेत्र काम आवत, जवा अपना ख छे तो फसल काटनू रहे। फसल काटना का लेना छे तो अलग अलग तरह का आधुनिक यंत्र आई गया, मशीन आई गई, जेका हम खरीदी सकान, काम में ले सकान, एकासी अपनों बखत भी बचज अन पैसों भी बचज, एम लागत भी कम लगज। एम छे तो आवना वाला जो यंत्र छे ओको नाव छे कंबाइन हार्वेस्टर, जो कि कटाई थ्रेशिंग सफाई ये करें, और रीपर जो खड़ी फसल का छे तो काटत। अब एका लेना एक अलावा जैसा कपास प्लकर, स्ट्रॉ रीपर और बेलर, रोटावेटर भी फसल कटाई न एको जो अवशेष प्रबंधन छे, जैसा कि अपन जो लरवई जेखा कमाएं ओका लेना काम में आवज। अब एका लेना छे तो अपना का प्रमुख यंत्र जो छे, जो खास खास मशीन न छे ओका बारे में अगर जाना तो कंबाइन हार्वेस्टर, जैसे कि गेहूँ, धान, मक्का आदि की कटाई, गहाई और सफाई अगर एक साथ अपना ख करनूज तो एका लेना यो अपनो यंत्र अपन काम में ले सकान, इनी मशीन का काम में ले सकान, जेकासी छे तो अपनो समय भी बचेगा ना अपनी मेहनत भी बची जाएगा। दूसरो आवज रीपर या रीपर बाइंडर, एम खड़ी फसल जैसी गेहूँ की छे, धान की छे, ये छे तो जड़ सी काटने का लेना ना एक लाइन सी काटने का एम अपना ख काम में आवज। स्ट्रॉ रीपर जो कि छे तो कंबाइन हार्वेस्टर जैसे कटाई का बाद में खेत में जो अवशेष नरवई जेख कवा तो बची जाए ओको भूसो बनावना का लेना, ये अपना ख काम में आवज। कपास प्लकर मशीन, ये एक छोटी सी मशीन छे पण एकासी छे तो खूब आसानी से काम ही जाए ना, तुरंत कटाई होए तो इनी मशीन को भी अपन उपयोग कर सकान अपना फसल काटना में। बेलर जेका से अपन कवांज की बंडल बनावना में अपना पूड़ा बांधानी ओका लेना छे तो अपना का ये काम में आवे, जब कटाई हुई जाए ओका बाद में छे तो कटाई का बाद में जो पूड़ा बचज ओका बाद में छे तो अपना खजो

कटाई करना का बाद में जो अवशेष बची जाए ओका पूरा बांधना का लेना अपन बेलर को उपयोग करें। दराती जो कि बहुत पारंपरिक चीज है, हाथ से अपन जब फसल न का काटता था उना उपकरण का भी अपन इना काम में ले सकान। एक सिकल एक दरांती कवान और हैप्पी एक अलावा भी बहुत सारा यंत्र छे जो कि काम में आवा, जैसे कि अपन कंबाइन हार्वेस्टर जो छे ओमा बिना खेत जोता अगली फसल की बुआई अपन करी लेवान एकासे। अने एक बाद में छे तो मल्चर आवे, मल्चर में अपना जो अपन कटाई करी ओका बाद में जो अवशेष बची गया नरवई बची ओखा अपन पछा अपनी माटी में मिलाई कना एक अच्छो खाद का रूप में उपयोग करी सकान, तो एमा अपना खाई मल्चर काम में दे। ऐसी कई सारी मशीन छे जो कि अपना का फसल कटाई के बाद में उपयोग में ले लेवांज। और

0: इन्हीं मशीन का अगर अपन खरीदाएं तो सरकार की तरफ से अपना का अनुदान भी मिला। भाई अगर आप इस तरह की कोई मशीन खरीदो तो छे तो अपना पास का जो कृषि विभाग छे वहाँ जाई का ना संपर्क करी सको ने की जानकारी ले सको, जेका सी छे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं मशीनों को उपयोग करी सको और अपना बखत का अपनी पैसा न का बचाई सको। क्योंकि अपन मशीनों को उपयोग करेंगे तो अपन छे तो काम अपनों जल्दी भी जाएगा न जो अपना को उत्पादन मिली रोज वो अच्छी किस्म को मिलेगा उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगा। अगर हमारो जैसे कोई हम गेहूँ की फसल ले रहा तो गेहूँ को दाणो अपना का कटेगा नहीं पूरा पूरा मिलेगा तो अच्छा दाणा का अपना का अच्छा पैसा भी मिलेगा। तो आज हमारा किसान भाई बहनों से योज कहणु छे।
1: खेती की बातें, इसके अंतर्गत आप सुन रही थी कृषि यंत्रों की देखभाल के बारे में जानकारी, स्वर बिंदु भाटे का था। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान के आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईक की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

अभी आप सुन रही थी श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 से आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 8:30 पर, सुबह 9 और शाम 6:45 पर। लोक संगीत में आप सुनेंगे गणपत सिंह चौहान और साथियों के गाए लोकगीत। सुगम संगीत में सुबह 9:15 और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे राजीव शर्मा को। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे हरिराय गोस्वामी महाराज का पखावज वादन, ताल रुद्रताल। जिले की चिट्ठी रेले होती है आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10:00। 10:05 पर आप सुनते हैं श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से दोपहर 3:00 तक के कार्यक्रम रिले करेंगे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिनका विवरण इस प्रकार है। दिन में 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे दिन में 11:58, दोपहर 12:58 और दिन में 2:58 पर। फिल्म संगीत होगा दोपहर 12:00 संग्रहालय से। ये कार्यक्रम होता है दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:00। लोक संगीत दोपहर 1:30 पर। 1:45 से आप सुनेंगे सुगम संगीत और दोपहर 2:00 और दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ होता है युववाणी कार्यक्रम के साथ। आज के इस कार्यक्रम में क्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। शाम 5:45 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। शाम 6:00 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत योजना, और इसी कार्यक्रम में होगी भेंटवार्ता डॉक्टर स्मृति सोहनी प्लान साइंस विशेषज्ञ से। शाम 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे हम प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। भोपाल केंद्र से ही रिले होगा सुर्खियों में रात्रि 8:00। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम सुनते हैं आप रात्रि 8:15 पर। चित्रगीत हम आपको सुनवाते हैं रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे हम राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती।

0: प्रमुख सार्वजनिक उत्सवेषु भागं ग्रहीष्यति। राधाकृष्णनवर्यः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य इरोडनगरे कोंगु वेल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट इत्यस्य संस्थापक दिवसस्य समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चात् दिने उपराष्ट्रपतिः बेंगलुरुनगरं गमिष्यति, यत्र सः विधानसौधे कर्णाटकस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणः रामकृष्ण हेगडेवर्यस्य शतवार्षिक समारोहे भागं ग्रहीष्यति। भारतस्य वेलावन सेंथिल कुमारः गतरात्रौ निर्णायक स्पर्धायां वलाज्स फार्कस इत्यमुं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य बुडापेस्ट ओपन कॉपर टूर इति उपाधिम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 3रा कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितम्बर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का

0: ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, सुबह 9 बजे और शाम 6:45 पर लोक संगीत में हम आपको सुनाएंगे गणपत सिंह चौहान और साथियों के गाए लोकगीत। सुगम संगीत में सुबह 9:15 और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे राजीव शर्मा को। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे पखावज वादन हरिराय गोस्वामी महाराज से। ताल होगा रुद्र ताल। दिन में 10:05 पर आप सुनते हैं श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप भी हमें इन नंबरों पर फोन करके अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। इन नंबरों पर आप फोन लगाइए और सुनिए अपनी पसंद का गीत। समय है सुबह 10:05 से 11 बजे तक। शाम 5 बजे आज युववाणी कार्यक्रम में क्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। 6 बजे विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे विकसित होता भारत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता डॉक्टर स्मृति सोहनी प्लांट साइंस विशेषज्ञ। 10 बजे हम आपको सुनाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। दिल्ली केंद्र से ही 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती।
2: याद रखो हमारी बात,
3: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
2: जंगल हैं धरती का गहना,
3: सदा इसकी रक्षा करना,
2: होगी जो धरती पर हरियाली,
3: चहुं ओर फैलेगी
2: खुशहाली।
4: बदलते वक्त की पुकार है कि हम सब चौकन्ने रहे हर जगह हर पल, इसलिए याद रहे संदेह वाली वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अपना वाहन अनजान व्यक्ति को न भेजें। किराएदार जांच परख कर रखें। अफवाहें न फैलाएं, न फैलने दें।
5: याद रखिए अपनी चौकसी सबकी सुरक्षा।
6: छे छप छे छपा के छे पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की।
7: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
8: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
7: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
8: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
7: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
8: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
7: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
8: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
7: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
8: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
7: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
8: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
7: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
8: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
9: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
8: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
7: समय है पानी बचाने का,
8: पानी का मोल समझने और समझाने का।
7: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे विचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बालाघाट के लांजी दौरे पर बीमार परिवारों से करेंगे मुलाकात। और अगले चार दिन प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना, आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर पीएम मोदी ताशकंद पहुंचेंगे। ये उनकी उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत और उज्बेकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम रक्षाबंधन पर्व उज्जैन में शिप्रा तट स्थित श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पंचामृत और गुलाल से अभिषेक पूजन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं वीवीआईपी गेस्ट हाउस और पुलिस सामुदायिक भवन में डॉ. यादव ने महिला पुलिसकर्मियों, महाकाल मंदिर समिति की महिला कर्मचारियों और सफाई मित्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। महिलाओं ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री को राखी बांधी और मुख्यमंत्री ने सभी को उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री ने संत निजानंद जी के आश्रम दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: संत निजानंद जी आश्रम पर आया हूँ। पूरा मालवा, पूरा प्रदेश, देश सनातन संस्कृति के ऐसी विभूतियों से इसके आलोकित आभा दुनिया परिचित होती है। हम सब भी अपने आसपास ऐसे संतों के आशीर्वाद से सत्कार्य की प्रेरणा पाते हैं। हम सब अपने कामों के साथ अपने संतों की मूल भावना सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबको लेके चलने का जो कल्याण का भाव है, ये वेद वाक्य को अमरता के साथ धारण करते हुए हम सबके कल्याण की कामना करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन की सभी चैनलों के साथ एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर होगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बालाघाट जिले के लांजी दौरे पर रहेंगे। वे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कन्या छात्रावास और उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री लांजी के पास कोरका और बुंदारी गांव जाकर बीमार परिवारों से मुलाकात करेंगे। इन बैगा बहुत

0: बजे तक सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। नमाज के लिए तय जमीन पर जगह कम पड़ने पर कुछ लोग रास्ते में दरी और बरसाती बिछाने लगे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया। नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बीच प्रदेश के अनूपपुर और भोपाल से गए लोगों के फंसने की खबर सामने आई है। अनूपपुर के कुतमा की पलक मांझी और पलवी मांझी सरकारी मदद से सुरक्षित पोखरा पहुंच गए हैं, जबकि उनके 9 सदस्यीय ग्रुप में 3 लोगों की अभी भी जानकारी नहीं मिली है। वहीं भोपाल से गोसाईकुंडा तीर्थ गए एक ही परिवार से जुड़े 29 लोग अब तक लापता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपनी फार्मर आईडी बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में फार्मर आईडी बनाने का अभियान शुरू हो गया है और सरकारी दल गांव-गांव जाकर किसानों की आईडी बना रहे हैं। फार्मर आईडी से किसानों को डिजिटल पहचान मिलेगी और उन्हें खेती से जुड़ी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। यह आईडी जमीन, पशुधन, बोई गई फसल और सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ जैसी जानकारी से जुड़ी होगी। रीवा में गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। परिजनों ने डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार और इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए थे, जिसके बाद वरिष्ठ डॉक्टरों की जांच समिति बनाई गई है। मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही और अनुशासनहीनता के आधार पर 2 डॉक्टरों और दुर्व्यवहार की शिकायत पर 2 नर्सिंग ऑफिसर्स को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। महिला को 26 अगस्त को गांधी स्मारक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उसी रात उसकी और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी। भोपाल एम्स में 9 महीने के शिशु के दोनों कानों में एक साथ सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक ये मध्य भारत में इतनी कम उम्र में हुआ पहला कॉक्लियर प्रत्यारोपण है। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था और जन्म के बाद उसे लंबे समय तक NICU में रखा गया था। बाद में मस्तिष्क ज्वर के चलते उसकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई। एम्स की ENT और एनेस्थीसिया टीम ने आधुनिक तकनीक और स्मार्ट नर्व सिस्टम की मदद से सर्जरी पूरी की। अब उपकरण को एक्टिवेट कर बच्चे को नियमित श्रवण और भाषा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुनू नेशनल पार्क से करीब 21 दिन पहले लापता हुई दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता निर्वा आखिरकार सुरक्षित मिल गई है। उसका सैटेलाइट कॉलर काम नहीं कर रहा था, जिससे उसकी लोकेशन का सिग्नल मिलना बंद हो गया था। लंबी तलाश के बाद टीम ने निर्वा को खोज निकाला और कल उसे सुरक्षित वापस बाड़े में पहुंचा दिया गया। और अब बात मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल में रिमझिम बारिश हो सकती है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडौरी, सतना समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने के आसार है। वहीं इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में तेज बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 26.9 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 2.6 इंच कम है। भोपाल में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रास प्रसंगों पर आधारित 7 दिवसीय रासलीला समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित समारोह की शुरुआत आज से होगी। रविन्द्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर हर दिन शाम 6:30 बजे से कृष्ण की अलग अलग लीलाओं की प्रस्तुति दी जाएगी। दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में आज श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक 5वां स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला टीम के लिए 50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार का ऐलान किया है। 1974 के बाद वर्ल्ड कप में भारत का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में दिगंबर जैन समाज द्वारा आज रक्षाबंधन पर्व को मुनि रक्षा दिवस के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मंदसौर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आज शनिवार को जनपद पंचायत मंदसौर के ग्राम भूखी में जन संवाद और उद्यम संवाद शिविर आयोजित होगा। सतना में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है। नदी नालों में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। धार में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को देखते हुए सड़क सुरक्षा उपसमिति द्वारा इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इंदौर में मुख्यमंत्री जनविश्वास

अभियान के तहत शिविरों का आयोजन आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के मूसाखेड़े स्थित जोन क्रमांक 18 के जोनल कार्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ के निर्देश पर मुरैना जिले में विभिन्न बीज विक्रेता फार्मों के यहां कृषि विभाग द्वारा बीजों की सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। मंडला में भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता 11 से 30 सितंबर तक होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडिया वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम सुनहरे पल में। और कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में अंदाज फिल्म से। हसरत जयपुरी का गीत है और संगीत शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना अंदाज फिल्म का गीत, और अब किशोर कुमार की ही आवाज में साथी गायक कलाकारों के साथ हम आपको सुना रहे हैं मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारी ना,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
2: और ये
4: मेरी गुड़िया की
5: ना। दादी आपके नाम?
6: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
9: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
8: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
9: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
8: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रही हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरी पल। और अब हम आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत मुकेश और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है धर्म कर्म।

लीजिए, पेश है किशोर कुमार की आवाज में गोलमाल फिल्म का नगमा, गुलजार का गीत और संगीत राहुल देव पर मन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर

0: 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: सुनहरी पल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर में जानी दुश्मन फिल्म का गीत। गीत के बोल वर्मा मलिक के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल, और इसी क्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज में लम्हे फिल्म का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार शिवहरी।

आप सुन रही थी लम्हे फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार शिवहरी। इस गीत के साथ ही सुनहरे पल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम सुनहरी पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज दिन में 10:05 से हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में आप भी जुड़कर अपनी पसंद का गीत हमें इन नंबरों पर फोन करके सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। इन नंबरों पर आप फोन लगाइए और सुनिए अपनी पसंद का फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और फिर उसके ठीक बाद 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालास फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
4: उज़्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
4: भारत ने अमेरिका के साथ जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जैवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति

0: पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 99682-919888 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 977-98513-16807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
3: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा

0: सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOVNG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, IT शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितम्बर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब

नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी के इस फिल्म संगीत के सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेम एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना शायद संभव नहीं। कभी यह आंखों की शरारत बनकर मुस्कुराता है, कभी दिल की धड़कनों में सुनाई देता है, कभी घूंघट की ओट से झांकता है और कभी अपने प्रिय के परदेश जाने पर खत का इंतजार करता है। प्रेम की इसी खूबसूरत यात्रा में आज हम सुनेंगे कुछ ऐसे फिल्मी गीत जिनके प्यार के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो आइए सुनो कि इस महफिल की शुरुआत करते हैं एक चंचल रंगीले और बेहद मधुर गीत से। कहते हैं प्रेम में पड़े इंसान को दुनिया कुछ अदली बदली सी नजर आने लगती है, फूल कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगते हैं, हवाओं में जैसे कोई नया संगीत घुल जाता है और दिल बिना किसी कारण मुस्कुराने लगता है। कुछ ऐसा ही जादू इस गीत में है। यहां प्रेम कोई गंभीर घोषणा नहीं बल्कि मन की वह चंचल अवस्था है जहां दिल खुद ब खुद अपने प्रिय का नाम गुनगुनाने लगता है। तो आइए प्रेम की इसी रंगीले अंदाज का आनंद लेते हैं।

वाह, प्रेम का जादू जब सुरों में उतरता है तो सचमुच मन मतवाला हो जाता है। लेकिन प्रेम केवल मुस्कुराने और शर्माने का नाम नहीं, प्रेम में साहस भी चाहिए, क्योंकि जहां सच्चा प्यार होता है वहां डर के लिए कोई जगह नहीं होती। प्रेम में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। जो दिल किसी को सच्चे मन से अपना मान लेता है, वह फिर दुनिया की परवाह कम और अपने एहसास की परवाह ज्यादा करता है। इसी भावना को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करता यह गीत प्रेम के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। सच्चा प्रेम परिस्थितियों से घबराता नहीं, दूरी से टूटता नहीं और समय के साथ फीका नहीं पड़ता। सुनते हैं प्रेम की इसी बेबाक अंदाज को आवाज देता हुआ खूबसूरत फिल्मी गीत।

कभी नजर मिलती है, कभी नजर झुक जाती है, और कभी चेहरा सामने होते हुए भी उसका दीदार अधूरा रह जाता है।

श्रोताओं, विदाई का क्षण हमेशा भावुक होता है। जब कोई अपना दूर जाता है तो रास्ते की दूरी से कहीं बड़ी हो जाती है मन की दूरी। और वो दिन जब मोबाइल और संदेशों की दुनिया नहीं थी, तब एक खत ही था जो दूर बैठे दो दिलों को जोड़ता था। डाकिये की राह देखना, दरवाजे पर आती आहट सुनना और हाथ में खत आते ही चेहरे पर खिल उठती मुस्कान, इस मासूम प्रतीक्षा को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करता

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लोक संगीत में आइए सुनते हैं गणपत सिंह चौहान के गाए मालवी लोकगीत। आरंभ में सुनिए इनके स्वर में ये गणपति लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत में आप सुन रहे हैं गणपत सिंह चौहान के गाए मालवी लोकगीत, और इनके ही स्वर में अब हम आपको सुनवाते हैं मातृवंदना।

0: लोक संगीत में अभी आप सुन रही थी गणपत सिंह चौहान और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। हम आपको बता दें इनके हिसर में गाए कुछ और लोकगीत आप सुन सकती हैं आज शाम 6:45 पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए मन्नापुरम के साथ।

आइए इनके स्वर में सुनते हैं कुछ भक्ति रचनाएं। आरंभ में सुनिए इनके स्वर में ये शंकराचार्य रचित निर्वाष्टकम्।

सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं राजीव शर्मा को। आइए इनके ही स्वर में हम आपको सुनवाते हैं खुर्शीद अजय की भक्ति रचना शिव भजन।

अभी आप सुन रही थी राजीव शर्मा के स्वर में शिव भजन। और इस भक्ति गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत अब समाप्त होता है। हम आपको बता दें, आपके साथ राजीव शर्मा के साथ तबले पर थे अनूप पवार, कीबोर्ड पर योगेश पाठक और वायलिन पर कमल कामली। राजीव शर्मा के गाए कुछ और भक्ति रचनाएं आप सुन सकती हैं आज शाम 6:30 पर। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं हरि राय गोस्वामी जी महाराज का पखावज वादन। ताल है रुद्रताल। आपके साथ वायलिन पर लहरा दिया है अब्दुल हमीद ने।

धागे तरकट तक तागे न धागे तिट धटता तरकट तक तक न टकरान धागे तक धेता धा न टकरान धागे तक धेता धा न टकरान धागे तक धेता धा धागे तरकट तक तागे न धागे तिट धटता तरकट तक तक न टकरान धागे तक धेता धा न टकरान धागे तक धेता धा न टकरान धागे तक धेता धा धागे तरकट तक तागे न धागे तिट धटता तरकट तक तक न टकरान धागे तक धेता धा न टकरान धागे तक धेता धा।

अभी आप सुन रही थी हरिराय गोस्वामी महाराज का पखावज वादन। ताल था रुद्रताल। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ग्वालियर जिले में पिछले तीन दिनों से अच्छी बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। 27 अगस्त तक जिले में औसतन 573.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हालांकि पिछले साल इसी अवधि में करीब 1080 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जिले की सामान्य औसत बारिश 751.2 मिलीमीटर है, इसलिए इस बार अभी भी बारिश कम है। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे थे, जहां लाडली बहनों ने उन्हें राखी बांधी। बहनों ने लाडली बहना योजना के तहत अतिरिक्त राशि देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने बहनों के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और खुशहाली के लिए काम करने का भरोसा दिलाया। ग्वालियर में 80वां स्वतंत्रता दिवस भी उत्साह और देशभक्ति के माहौल में

0: गया। एसएएफ मैदान पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बीएसएफ के श्वान दस्ते और कलारी पट्टू का प्रदर्शन भी आकर्षण रहा। इसी क्रम में डबरा में बलराम कृषि महोत्सव के तहत किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। किसानों को ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई, उन्नत कृषि यंत्र, मौसम आधारित खेती और डिजिटल कृषि सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया। स्कूल, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं में तिरंगा यात्राएं निकाली गई और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान का संदेश दिया। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में इशारा कैफे की शुरुआत एक मूक बधिर दंपति ने की है। खास बात यह है कि इस दंपति का करीब 8 साल पुराना वैवाहिक विवाद भी मीडिएशन के जरिए सुलझाया गया। मीडिएशन की प्रक्रिया प्रशिक्षित मूक बधिर और सांकेतिक भाषा जानने वाले मध्यस्थों ने कराई। अब दंपति कैफे चलाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय का 19वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने कहा कि विश्वविद्यालय देश की सांस्कृतिक धरोहर बने। कुलगुरु प्रोफेसर स्मिता सहस्रबुद्धे ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और प्रगति की जानकारी दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्वालियर में शक्ति दीदी नवाचार चलाया जा रहा है। इसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की नौकरी दिलाई जा रही है। फिलहाल जिले में 127 महिलाएं शक्ति दीदी के रूप में काम कर रही हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत अमरौल गांव में जिला स्तरीय शिविर लगाया गया। अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण किया और लोगों से सीधे उनकी समस्याएं जानी। शिविर के जरिए सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज 1819 शिकायतों का निराकरण किया गया। वहीं तीसरा जिला स्तरीय मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान आज बिलौआ नगर परिषद में आयोजित होगा। ग्वालियर के महाराजवाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में चल रही पुस्तक प्रदर्शनी कल यानी 30 अगस्त तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी में अलग अलग विषयों और लेखकों की कई किताबें उपलब्ध है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कलेक्टर ऋषिका चौहान ने किया था। हरियाली महोत्सव पर ग्वालियर में पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा पौधरोपण अभियान चलाया गया। रमौवा बांध के पास हुए कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। एक पेड़ मां के नाम और हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक ही दिन में करीब 5000 पौधे लगाए गए। ग्वालियर के LNIPE में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ। करीब 200 युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना और नशा मुक्त भारत का संकल्प दिलाया। युवाओं को खेल, शिक्षा और कला के जरिए सही दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। ग्वालियर में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ऋचिका चौहान ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। अगले 2 महीनों तक बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह नहीं किए जा सकेंगे और सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने पर भी कार्रवाई होगी। जिले के ITM हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में नई स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें मॉड्यूलर OT कॉम्प्लेक्स, कार्डियो थेरेसिक सर्जरी, ICU और कार्डियक केयर यूनिट शामिल है। इन सुविधाओं से गंभीर हृदय रोगों और जटिल सर्जरी के इलाज में मदद मिलने की उम्मीद है। अंत में बात हॉकी की। ग्वालियर में हुई हॉकी इंडिया जूनियर और सब जूनियर महिला अकादमी नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने दोनों खिताब अपने नाम किए। प्रतियोगिता में देश भर की 25 टीमों ने हिस्सा लिया। शानदार प्रदर्शन के बाद समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख था नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर था दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।
2: मीडिया वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।
2: स्वागत है सभी श्रोताओं का फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। स्वीकारें आपके रेडियो दोस्त योग।

0: योगेंद्र पांडे का नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले हम आपको बताते हैं, आप भी हमें फोन करके इन नंबरों पर अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो इन नंबरों पर फोन लगाइए और सुनिए अपनी पसंद का गीत। और लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार, मैं राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ। सर
0: राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, और आपसे कुछ बात करें, लेकिन उसके पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: गीत साहब, आज लीला चंद्रावरकर जो खूबसूरत अभिनेत्री है और बहुत मतलब फिल्मों में उन्होंने काम किया है, 100 से अधिक फिल्में हैं उनकी, और किशोर दाती जीवन संगनी भी रही है आखिरी बार वो, तो उनका ही गीत आज 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनको उनका गीत सुनवा दीजिए। अपना रंग हजार फिल्म का गीत है, चंदा में डूबा जमुना में, या फिर रखवाला पिक्चर का सुनवा दीजिए, मैंने मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया।
0: बिल्कुल, हम आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाएंगे। और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और कितना बढ़िया आपने समझाया भी और बताया भी उनके बारे में, तो बहुत अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं आप।
1: जी।
0: और बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, प्रिंटिंग प्रेस का कार्य है, यहाँ बैठा हुआ हूँ दुकान पे, रेडियो सामने ही लगा हुआ है 5 फीट दूर मेरे से।
0: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैं। लोकेन वर्मा है हमारा साथी, एक तो दोस्त अनिल कोचाले है, मंसूरी परिवार है पालदा नाका से, सभी हमारे साथी है।
0: और इन सभी के साथ आप खुद भी अपनी पसंद का गीत सुनते हैं, और साथ में रेडियो के माध्यम से जब वो भी आपकी पसंद का गीत सुनते हैं तो कैसा लगता है आपको?
1: बढ़िया लगता है, 4-5 रेडियो रख छोड़ा है सर मैंने, तो रेडियो के बिना तो काम ही नहीं चलता, मोबाइल पे मुझे समझ में आता नहीं है कार्यक्रम।
0: आपने जैसा कहा कि रेडियो बिना काम नहीं चलता, तो वाकई में मतलब जब तक रेडियो चालू नहीं हो तो मन नहीं लगता है ना?
1: नहीं लगता, और एनर्जी नहीं बढ़ती है उससे, मतलब वो बढ़ जाता उससे, मतलब अपना खून भी बढ़ जाता है सुनने से।
0: बिल्कुल, और हाथ पैर जो है ना वो तभी बिल्कुल चलते हैं काम के समय जब बिल्कुल रेडियो अपनी धुन में बसता है,
1: एकदम टॉनिक मिल जाता है उससे।
0: बिल्कुल, और है भी साथी हमारा ऐसा कि जहाँ पर हम अपने काम के साथ साथ में और रेडियो सुनते सुनते कब हमारा काम पूरा हो जाता है, कब हमारा समय पूरा हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है।
1: बिल्कुल, जो भी दिखता है रेडियो साहब मैं तो खरीद लेता हूँ, ज्यादातर मैंने बंगार में से ही लिए हुए रेडियो है मेरे पास, मैंने कोई ज्यादा पैसे भी खर्चा नहीं करे इसमें।
0: बिल्कुल, और आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने रंग हजार फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, जरूर सुनिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
6: हेलो MH हॉटलाइन।
7: हेलो पॉटलाइन।
6: हाँ जी बताएं।
7: जी सर, मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से, यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से, मैं फूलचंद पाल बात कर रहा हूँ।
6: जी फूलचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH हॉटलाइन कार्यक्रम में, और आगे बढ़ें आपसे बात करें, लेकिन उसके पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
7: जी सर बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ गीत के, फिल्म का नाम है प्यार का मंदिर, और गीत के बोले कि लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, हम इस घर में रहते हैं कि प्यार का मंदिर कहते हैं।
6: क्या बात कही, और बात भी सही है कि हम जहाँ रहते हैं जो हमारा घर है वो बिल्कुल प्यार का और मंदिर ही तो है।
7: जी जी बिल्कुल योगेश जी बिल्कुल, वह अपना घर जो है ना, जो किसी अपना घर यदि सगा कांस का भी बना है तो हमारे लिए महल है वो।
6: बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे हमारा रहना तो होता है, जहाँ पर हम सुबह से शाम तक जो है ना अपना समय व्यतीत करते हैं, विश्राम करते हैं रात्रि में, और साथ में भगवत गुणगान के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो वो मंदिर जैसा ही माना जाता है और हमारे लिए एक मंदिर जैसा ही है।
7: बिल्कुल सर बिल्कुल सही कहा है आपने, और हमारे घर जो हमें घर में अपने घर में आनंद मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलेगा।
6: बिल्कुल सही बात है, जो सुकून प्राप्त होता है, कहते हैं ना कि पूरा काम करके और थक हार के जब हम आते हैं, तो कहते हैं कि जब घर के अंदर आते हैं तो हम जैसे ही घर के आने के बाद पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तो एक सुकून लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ राहत हुई।
7: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है आपने, जैसे हम जब अच्छे धूप में से सारा किसी पेड़ के नीचे आते हैं ना,
6: हाँ,
7: तो उसमें जो छाया धूप में छाया मिलती है तो हमको बड़ा आनंद आता है। हम जब अपने घर में जाते हैं और घर का पानी पीते हैं और अपने जो है बच्चों के साथ बैठ

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर गंजवासोदा जिला विदिशा।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में। और पहले अपनी पसंद का गीत बताइए भागचंद जी।
1: सिर्फ तुम की कव्वाली सुनना है, एक मुलाकात जरूरी है सना।
0: और साथ में आप अभी रक्षाबंधन का त्योहार गुजरा कल, तो
1: बिल्कुल
0: कैसे
1: बिल्कुल
0: मनाया आपने?
1: बहुत खुशियों के साथ, भाईचारे के साथ, बहनों ने राखी बांधी
0: जी,
1: हमने बड़ाओं ने और कहा
0: बिल्कुल
1: बढ़िया मिठाई वगैरह बनी थी वो भी हमने खिलाई बिल्कुल सर। और पानी पूरी सेंटर का ठेला भी लगाते हम।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ सर, आइए गंजवासोदा आइए, आपका स्वागत करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे और साथ में आपका जो पानी पूरी का ठेला है उसमें आनंद भी लेंगे पानी पूरी का।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और सर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आकाशवाणी टीम के लिए।
0: हमारी ओर से भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी बुंदेलखंडी में भी बोल देता हूँ हमारी तरफ से झहुआ टिपरिया भर भर के शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल सर,
0: है ना।
1: बिल्कुल सर, आजकल क्या है सर जी, अपन जैसे बात करते हैं तो कोई श्रोता शिकायत करने लगते हैं, इनका फोन लगता है इनका नहीं लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी श्रोता को एंट्री कर रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: लेकिन फिर भी हम उसके साथ में
1: कभी हार नहीं होती,
0: से फिर भी हम अभी आपसे भी और सभी श्रोताओं से भी ऐसा निवेदन करना चाहते हैं कि अगर किसी की फरमाइश एक बार शामिल होती है तो कम से कम दो माह जो है वो इंतजार करें। दो माह के बाद वो अगर वो फोन लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि नए श्रोता भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, और नए श्रोता जुड़ते हैं तो नए श्रोताओं से बातचीत होती है, और बाकी पुराने श्रोता भी उनकी बातचीत सुनते हैं, तो एक नयापन सा आता है, एक नई ऊर्जा, एक नया कार्यक्रम जैसा पेश लगता है। अगर वही बार बार रिपीट होते हैं तो सभी के सुनने में ऐसा आता है कि वही बार बार श्रोता फोन लगाते हैं, तो ऐसा सभी ध्यान रखेंगे तो बड़ा

0: कार्यक्रम जो है ना रोचक भी हो जाएगा और नए श्रोता भी जुड़ेंगे।
1: बिल्कुल सर, सही बात कही आपने।
0: और कार्यक्रम के साथ में, त्योहारों के साथ में, और आपके जो कहते हैं ना कि आप जिस तरह से काम करते हैं और जो आपका तरीका है, उसके साथ में गीत भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कव्वाली का, सुनिए।
1: ठीक है।

0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: मैं संसार दानी जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी अशोक जी, स्वागत है आपका फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में।
0: बहुत धन्यवाद सर जी। कैसे हैं सर आप?
1: एकदम बिल्कुल बढ़िया। और साथ में हम आपसे बात करें, लेकिन उससे पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
0: गीत है करण अर्जुन के।
1: जी
0: ये बंधन तो प्यार का बंधन है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: राखी का डायलॉग है
1: जी,
0: मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे।
1: बिल्कुल जरूर आएंगे। और ये बंधन जो है ना, ये हमारे आपके बीच का जो श्रोताओं का और आकाशवाणी का बंधन है, ये बंधन ऐसे ही चलता रहे और इस बंधन में हमेशा जो है वो मजबूती हो, और जिस तरह से श्रोताओं का प्रेम है वो प्रेम ऐसा ही मिलता रहे। और बताइए क्या करते हैं अशोक जी आप?
0: मैं सर रिटायरमेंट हूँ, इनकम टैक्स।
1: इनकम टैक्स से रिटायर्ड हैं?
0: यार सर 75 से रेडियो का दीवाना हूँ।
1: क्या बात है। तो आपने कहते ना कि रेडियो का स्वर्णिम दौर जिया है।
0: जी सर।
1: और उस स्वर्णिम दौर में कहते हैं कि जब रेडियो सुनाई देता था तो ऐसा था कि अगर किसी गांव में एक रेडियो है तो लगभग सुबह शाम रेडियो को सुनने के लिए, समाचार सुनने के लिए तो भीड़ हो ही जाती थी।
0: सब बैठ के सुनते थे चौपाल पे समाचार शाम को हुए या सवेरे हुए। अब विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, सीलोन वगैरह,
1: बिल्कुल
0: ये सब सुनते थे।
1: बड़ी जिज्ञासा सी रहती थी मन में कि ये कैसे बोलता है और ये कैसे ध्वनि तरंगों पे काम करता है। और उस समय रेडियो का बजना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि उपलब्धि, और किसी के पास उस समय रेडियो होता था तो उसका स्टेटस भी अलग होता था।
0: जी सर वो तो है। एक सर जमाना में था ये कि रेडियो लिया है तो बहुत देखने के लिए आते थे भाई, कितने ब्रांड का है, कैसा है, मर्फी का है, काय का है, फ्लिप्स का है। जी
1: बड़े ब्रांड के साथ भी फिर बाद में रेडियो का जो है वो विकास होता गया। और कहते हैं ना कि मुझे तो लगता है कि 2000 के बाद भी रेडियो की महत्ता काफी अच्छी थी, लेकिन फिर दूरदर्शन।
0: अभी भी रेडियो है हमारे पास, रेडियो का अब कई रेडियो बदलते रहते हैं। अभी ये 12-13 साल का है, 2012 का। जी
1: तो आपकी पसंद का गीत इसी बंधन के साथ, जो रेडियो का बंधन सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के बीच में बना रहे, और गीत भी हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनिए पसंद का।
0: सर बहुत दिल से धन्यवाद।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: हेलो MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH इंदौर
2: जी, अपना शुभ नाम बताएं।
3: जी मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
2: स्वागत है राजू जी आपका। और आज के कार्यक्रम में राजू नाम के जो श्रोता हैं वो बड़े धूम मचा रहे हैं। और कैसे हैं आप?
3: मैं तो सर जी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ, और इस समय आपका कार्यक्रम बगीचे में बैठकर दिल से सुन रहा।
2: बिल्कुल, आपके बगीचों की हवा जो चल रही है ना, वो हवा हम तक सुनाई पड़ रही है। बातें करेंगे आपसे, पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
3: उसका मूवी का नाम रहेगा आंदोलन कितने दिनों के बाद मिले।
2: बिल्कुल, कुछ गुनगुनाने वाले हैं आप लगता है इस गीत को लेकर।
3: कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे।
2: बिल्कुल, क्या करते हैं राजू जी आप?
3: सर जी हम कृषक हैं, कृषि का काम करते हैं।
2: कृषि का काम करते हैं और रेडियो भी सुनते हैं।
3: रेडियो तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है, क्योंकि अपना कृषि का काम करते रहते हैं और दिन भी नहीं जाना जाता है और काम भी होता रहता है और अच्छा भी लगता है गीत सुनकर।
2: बड़ा अच्छा दोस्त होता है रेडियो।
3: रेडियो तो सर जी हमारे लिए बहुत ही परम मित्र है, क्योंकि सन 1993 से आज तक मैं रेडियो सुन रहा हूँ।
2: और ऐसी ही दोस्ती जो आपकी चल रही है रेडियो के साथ, ये ऐसी बनी रहे और गीत भी आपकी पसंद के ऐसे ही, बिल्कुल जब भी फोन लगे तो आपके गीत भी आपको मिले और पसंद के सुने और आप भी सुने और आपके सभी मित्रों को भी सुनवाएं। गीत आ रहा है,
3: मित्रों को भी डेडिकेट करेंगे सर जी।
2: बिल्कुल करिए।
3: हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के श्री गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं और बहुत सारे फूलचंद पाल जी मनखारी से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं और सभी मित्र इस समय हम आपका कार्यक्रम सर जी सुन रहे हैं दिल से।
2: बिल्कुल आनंद आप लीजिए और उनको भी आनंदित करिए, गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: जी।
1: सर जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी मैं भाईकर मुंडा बात कर रहा हूँ, जिला
0: जी
1: चराईदेव सुनारी असम से।
0: असम से। और
1: जी
0: बताइए, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, और आप सभी ठीक हैं सर?
0: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने बताया, आप असम से बात कर रहे हैं, तो जो अभी असम में प्राकृतिक आपदा आई बाढ़ की, तो आपका क्षेत्र वहाँ सुरक्षित था ना? आप ठीक है ना?
1: हाँ मित्र, हमारे यहाँ ठीक था, और अपने गांव में तो बाढ़ का इतना प्रभाव नहीं पड़ा था,
0: जी
1: और
0: जी
1: पड़ोस के गांव में कुछ जो कुछ हुआ था, बाढ़ से प्रभावित हुआ था। और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है चराईदेव, ये तो बाढ़ के मतलब चपेट में आया था, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट। और हम जो तो सुरक्षित थे, कुछ वैसे कुछ हुआ नहीं अपने गांव में, भगवान को शुक्र मनाना पड़ेगा कि कुछ

0: बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो। और अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: फिल्म का नाम है
0: इम्तिहान, शायद
1: इम्तिहान जी,
0: जी जी
1: और
0: हाँ।
1: दो बातें हो सकती है, ये गाना सुना दीजिएगा। और अपने दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा।
0: बिल्कुल लीजिए।
1: अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, रमेश पत्र, जुगेंद्र रंगसी, सुनीता बसुमतारी और सुनने वाले सभी सुप्रा मित्र को ये गाना दे रहेगा।
0: और जो जिनके आपने अभी नाम लिए वो अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: जी जी जी,
0: तो सुनवाइए। बिल्कुल अपनी पसंद का गीत।
1: हाँ जी, अमल जी ने कल भी लगाया था।
0: अच्छा, आपका कब कब मतलब फोन लगा था इसके पहले आकाशवाणी इंदौर में?
1: मेरा तो ये पहली बार
0: लगा।
1: खुशी हो रही है। हाँ।
0: अरे बिल्कुल, अपनी खुशी सभी के साथ बांटिए, अपने मित्रों के साथ बांटिए और अपनी पसंद का गीत सुनिए। हम पहुंचा रहे हैं।

0: हेलो।
1: तो नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी, इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: जीनत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में, और अपनी पसंद का गीत बताएं पहले।
1: जी, धन दौलत पिक्चर का नाम है।
0: हाँ जी।
1: जीना क्या अजी प्यार बिना, जीवन के चार बिना।
0: बड़ा ही खूबसूरत गीत है और सुनने में भी बहुत बहुत अच्छा।

0: लगता है और इसके बोल भी बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकल लगते हैं एकदम। क्या करते हैं आप?
1: हाउस वाइफ हूँ सर।
0: अच्छा, और घर में आपके कौन कौन हैं?
1: हस्बैंड है और 3 बच्चे हैं, लड़के तीनों, एक पापा के साथ जॉब करते हैं, 2 पढ़ाई करते हैं।
0: पढ़ाई करते हैं। और हस्बैंड क्या करते हैं जॉब में?
1: ये आरओ बनाते हैं, बाहर
0: आरओ।
1: जाते हैं जो प्लांट है फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी, अमेरिका है, पाकिस्तान हुई प्लांट
0: और
1: का।
0: आपको रेडियो सुनना पसंद है?
1: जी
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप? कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं इंदौर, आकाशवाणी इंदौर के?
1: आकाशवाणी के तो ये फोन इन फरमाइश ज्यादा सुनती हूँ वैसे तो,
0: फरमाइश सुनते हैं?
1: और विविध भारती चलता ही रहता है यहाँ का तो।
0: बिल्कुल, वैसे तो देखा जाए तो काम करते समय रेडियो चलता है, तो मतलब काम अच्छे से ही होता है।
1: जी
0: आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: शुक्रिया सर।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार।
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं सर जी।
0: राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे अपनी आपकी जो पसंद है वो पसंद का गीत बताएं।
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा मुस्कान। गाने के बोल रहेंगे, इश्क हंसाता है, इश्क रुलाता है।
0: बिल्कुल। और साथ में आपसे जानना चाहते हैं, आपका फोन पहली बार लगा है या इसके पहले लगाया है?
1: सर जी, हमारा कॉल तो इसमें आकाशवाणी इंदौर पर पहली बार लगा है, लेकिन कार्यक्रम सुनते रहते हैं, लेकिन प्रयास भी करते रहते हैं, कॉल नहीं लगती है। आज लग गई सर जी।
0: बस थोड़ा सा वो एहसास बता दो कि मतलब फोन लगने के बाद कैसा लगता है।
1: सर जी, कुछ पूछो मत, बड़ी खुशी मिलती है कि हमारी जब कोशिश करते हैं, जब कोशिश कामयाब होती है तो अच्छा लगता है।
0: अच्छा। और साथ में आकाशवाणी इंदौर में जो कार्यक्रम आप सुनते हैं वो फरमाइशी ही सुनते हैं?

0: नहीं सर जी, खेती किसानी का भी प्रोग्राम सुनते हैं क्योंकि उसमें जानकारी आती है फसलों के बारे में, तो अच्छा लगता है। हाँ जी
1: और जब अब हमारा फोन लगता है और फोन के साथ साथ जब फरमाइश पूरी होती है तो वो फिर एहसास कैसा होता है?
0: वो भी सर जी बड़ा खुशी होती है, और जो सुनने को गीत मिलते हैं अपनी पसंद के तो और अच्छा लगता है। और ये तो प्रोग्राम और ही अच्छा लगता है फोन का, क्योंकि इधर उधर से एक दूसरे रात से जब लोग जुड़ते हैं, जब जानकारी मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है।
1: सही बात है। जब
0: हाँ जी,
1: हाँ
0: ज्ञान भी बढ़ता है इससे।
1: एक श्रोता कई श्रोताओं के फ़ोन कॉल आते हैं और उनसे बातचीत होती है, उनके बारे में पता चलता है, तो वो सुनने में और बात करने में जो श्रोता दूसरे सुनते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है और फिर उसके बाद उनकी पसंद का गीत भी आता है।
0: हाँ जी, और आकाश पाणी का संदेश भी यही है कि बहुतन है जाए बहुतन सुखाए, और अच्छा लगता है यही।
1: बिल्कुल, इस ध्येय वाक्य के साथ ही आकाशवाणी ने काम किया है कि बहुजन हिताय और बहुजन सिखाए। क्या करते हैं राजेंद्र जी आप?
0: हम तो अभी तो खैर थोड़ा काम है, पेड़ का जो लिपस्टिक होती है वो भी लगा रहे हैं, और आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, कार्यक्रम बीच में ट्राई भी करते रहते हैं, लेकिन जब लगती है आज तो खुशी मिली है।
1: आज आपका फोन भी लग गया और फोन लगने के साथ साथ अब आपकी पसंद का गीत भी आप तक पहुंचने
0: सर जी,
1: वाला
0: तो
1: है।
0: दोस्तों के नाम भी लेंगे।
1: बिल्कुल लीजिए।
0: हाँ जी, सबसे पहले हमारे जो राजू यादव जी हैं, दिलीप पहुजा जी हैं, गंगाधर सावंकर जी हैं, सोनू जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, सारू जी हैं, आदि पूनम जी हैं, कानपुर से, और जितने लाइव श्रोता सुन रहे हैं साथ में आपको भी सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
1: और ये सॉन्ग पहुंच रहा है और सभी सुने और आप भी सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: सर कैसे हैं आप?
0: बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं।
1: बढ़िया हूँ सर जी। मेरा नाम नईम मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हम पढ़ते हैं सर।
0: मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम में। और आपकी पसंद का गीत बताएं पहले।
1: ये लोफर फिल्म का नाम है, गाने की बोले मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं।
0: लेकिन इश्क में मरना क्यों?
1: जब होता है तो इंसान मरता है।
0: बिल्कुल। और चूंकि कार्यक्रम का समय बहुत कम बचा है और आपसे बातचीत करने का तो बहुत मन था लेकिन समय कम है, तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: जी थैंक यू।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गाए लोफर फिल्म की इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों के सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम से आपके रेडियो मित्र योगेंद्र पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा नगमा, संगीत है प्रीतम का। फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र।

अब आपको सुनवा रहे हैं फितूर फिल्म का वो नगमा जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, आवाज और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

अब आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा नगमा। संगीत है सचिन जिगर का, फिल्म का नाम है भेड़िया।

रहे हैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। कुमार के बोल हैं और संगीत है शरीब और तोशी का।

ये गीत आपने सुना फिल्म एनिमल से, अरिजीत सिंह की आवाज़ थी। सिद्धार्थ गरिमा ने इस गीत को लिखा था, संगीत था श्रेयस पुराणिक का। कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में वो गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वीर ज़ारा से। जावेद अख्तर की रचना है, संगीत है मदन मोहन का।

अब आपको सुनवा रहे हैं शान और कैलाश खेर की आवाज में फना फिल्म का वो गीत जिसे लिखा है प्रशून जोशी ने, संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए चुना है कभी खुशी कभी गम फिल्म से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ है, अनिल पांडे ने गीत लिखा है, संगीत है संदेश शांडिल्य का।

अभी आप सुन रहे थे देवदास फिल्म का गीत। कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल, के और साथियों की आवाज थी। गीत लिखा था नुसरत बद्र ने, संगीत था इस्माइल दरबार का। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं एक और गीत जिसे हमने चुना है कल हो ना हो फिल्म से। शंकर महादेवन की आवाज है, जावेद अख्तर की रचना, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

ये गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म दोस्ताना से। शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान की आवाज, कुमार के बोल हैं, संगीत है विशाल शेखर का।

0: दोस्ताना फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। श्री मोदी ने एक बयान में विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। उन्होंने बताया कि वे बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बालाघाट जिले के लांजी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में भाग ले रहे हैं। इस दौरान यहां बैठक, समीक्षा, संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कन्या छात्रावास और उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि उनका जीवन खेल के प्रति समर्पण, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की प्रेरक मिसाल है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने के आसार हैं। और दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत अपना पहला मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि 3 सितम्बर को हांगकांग और 5 सितम्बर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पेश है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म अजनबी के गीत से। सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने इसी गीत को सुनना चाहा था। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, सायमा खान, पोतरा मुश्तवा खान, पोत्री अफिया खान, राव भाई, शहीद भाई और इनके पूरे परिवार वाले। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी इसी गीत को पसंद किया था। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रखवाला से। सुमधुर आवाज लता मंगेशकर की, गीत रचना है राजेंद्र कृष्ण का और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने इसी गीत को सुनना चाहा है। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर ने

कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म होगी प्यार की जीत से। इस गीत को गाया है जसपिंदर नरूला और रूप कुमार राठौर ने। ये गीत रचना है समीर की और समीर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है आनंद मिलिंद ने। पसंद किया है आप सभी ने। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गबाण, श्रीमती सरिता गबाण, प्रिंस और एकांश ने। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन और टुकटुक ने। आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि गबाण ने। इसी गीत को सुनना चाहें जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक लिख भेजी है पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। अगली फरमाइश है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयबीर सिंह ठाकुर और अमनदीप, अनिल वर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म कसम सनम तेरी कसम का ये गीत, जिसे अपनी आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। ये गीत रचना है गुलशन बाबरा की और संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश फिल्म गंगा तेरे देश में से। इस गीत को गाया है अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज ने। ये पसंद है सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। इसी गीत को सुनना चाहा है घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

0: अनुराधा पुडवाल और मोहम्मद अजीज़ के गाए इस गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
5: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
6: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
6: और ये
7: मेरी गुड़िया के नाम।
8: पर दादी, आपके नाम?
9: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं, तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या
9: RBI कहता है?
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया का 11वां भाग।

0: अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया का पति रतन एक ईमानदार मेहनती आदमी था। उसका भाई करण धूर्त और शराबी था। करण ने गांव के दीवान से अपने भाई रतन को 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया, पर कागजों में हेरा फेरी करके दीवान ने उसे 25,000 कर दिया। रतन को इससे बड़ा सदमा लगा और उसने आत्महत्या कर ली। बाद में करण ने जमुनिया और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया और जमुनिया के बेटे गोलू को भी हथिया लिया। पट्टे पर मिली रतन की जमीन भी हथिया ली। जमुनिया पास के गांव में एक सहृदय व्यक्ति झुलन बाबा के साथ रहने लगी। बांस के डलिए पंखे बनाकर गुजारा करने लगी। यहीं पर गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर उसने पढ़ना लिखना सीखा। चुनाव आने वाले थे, साथियों के कहने पर उसने सरपंची का पर्चा भर दिया। यहाँ की सीट महिला सीट घोषित होने के कारण दीवान ने भी अपनी पत्नी का पर्चा भरवा दिया। जमुनिया का पर्चा भरना दीवान को बुरा लगा। उसने जमुनिया पर हमला करवा दिया, पर जमुनिया को मामूली चोट आई। इस बीच गांव के ग्राम सेवक की बेटी मेघा अपने कॉलेज के मित्रों शिल्पी और जयंत के साथ गांव आ गई। वे लोग चुनाव में जमुनिया का साथ देने लगे। चुनाव प्रचार जोरों पर था। अब आगे।
1: अरे, अपने गांव में पुलिस? देखो तो बाबा,
2: हाँ?
1: पुलिस ही है ना?
2: अरे हाँ बेटा, पुलिस ही लगती है। अरे लगता है दीवान ने कोई चाल चली है। पुलिस में कुछ उल्टा पुल्टा शिकायत किया होगा वो। किसी तरह तुम्हें चुनाव से दूर रखने की ही चाल होगी। हाँ
1: हाँ बाबा, वो तो इधर ही आ रहे हैं।
2: हाँ?
1: चलो आने दो, देखते हैं क्या करते हैं। हम भी हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। बुला ले थाना।

0: पुलिस।
1: हाँ,
0: जमुनिया जी कौन हैं?
1: हम ही हैं जमुनिया, कहिए कैसे आना हुआ।
2: हमें थाने से भेजा गया है। वहां शिकायत पहुंची है कि
1: क्या शिकायत पहुंची है बताइए तो सही।
0: आप सरपंची का चुनाव लड़ रही हैं।
1: हाँ लड़ रहे हैं, पर इसमें कुछ गलत है का? चुनाव लड़ना गैर कानूनी है क्या?
2: अरे नहीं, हमें पता चला है कि आप सरपंची के चुनाव के लिए दीवान की पत्नी के खिलाफ खड़ी हुई हैं। इससे दीवान नाराज है और उसने आप पर हमला भी करवाया है। इसीलिए सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए हमें भेजा है।
1: ओह, तो आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं।
2: जी
1: अच्छा, वो दीवान ने हमला तो करवाया था, पर चोट मामूली सी है।
0: ये सिर पर पट्टी बंधी है, यही है ना?
1: हाँ जी हाँ, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पर वहां थाने को कैसे पता लगा?
2: इस चुनाव में आपके साथ कोई जयंत बाबू हैं,
1: हाँ,
2: उन्होंने ही खबर की थी थाने पर।
1: ओ तभी तो जयंत भैया ने खबर की है।
2: जी
1: अच्छा आप लोग कुछ पानी वानी पियेंगे तो लाएं, नहीं तो हमें चुनाव प्रचार के काम में निकलना है।
0: नहीं, अभी हमें प्यास नहीं है, आप चलें।
2: हाँ, हम भी आपके साथ ही रहेंगे।
0: हाँ
1: वो मेघा बहन अपने साथियों के साथ आती होंगी, तभी निकलेंगे। अरे ये लो, ये आ भी गए। नमस्ते।
3: नमस्ते जमुनिया
1: नमस्ते।
3: जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते
1: जमुनिया
0: जमुनिया।
1: जी, नमस्ते।
3: चलें।
1: हाँ
4: ये लो, पुलिस।
1: आपका ही किया धरा है। थोड़ी सिर पर चोट लगी, वो लोग तो तुरंत भाग भी गए, पर आपने थाने को खबर की और ये लोग आ भी गए।
4: तो देखा आपने, सरकार सुनती है और काम भी करती है, पर बीच के लोग सारी सुविधाएं खुद हड़प जाते हैं और उन्हें कुछ मिलता ही नहीं जिनको उसकी जरूरत होती है।
1: सही बात।
5: ई ससुरी तो इधर ही आ रही है।
6: अरे हाँ, ई तो जमुनिया ही है। अरे दंदी, तू जब बोलता है बुरी खबर ही देता है यार। मैं क्या करूं, हो ही यही रहा है फंदी भाई। आज तो साथ में पुलिस लेके चल रही है।
7: अरे हाँ,
6: चलिए रास्ता बदल लेते हैं दीवान जी।
7: हाँ दीवान जी, हाँ।
5: रुको रुको सब,
7: मालिक
5: जरा देखें तो सही माजरा क्या है, हैं? अरे थाना पुलिस गांव में आ गई और हमें कोई खबर ही नहीं है। अरे ये हो क्या रहा है गांव में, और तुम लोग सोए रहे हो क्या है?
7: मालिक, हमें तो थाने पुलिस का कुछ पता ही नहीं चला। कौन?
6: हवा तक नहीं लगी मालिक।
7: हाँ मालिक,
5: क्या हवा तक नहीं लगी? ससुर खाए खाए के मुटियाए रहे हो तुम लोग।
7: मालिक
5: आइए आइए आइए जमुनिया जी आइए। वाह भी वाह, क्या बात है भाई। अब आपकी तैयारी देखकर तो लग रहा है जैसे आप चुनाव जीत ही गई हैं। साथ में थाना पुलिस चल रही है। बड़ा रौब है भाई। वाह वाह वाह।
1: सब आपकी ही कृपा है दीवान जी। ईश्वर करे आपकी बात सच हो।
5: अरे सच तो ई है जमुनिया कि कच्छो दिन की खुशफहमी है, खुश रह लो। हाँ अरे जमुनिया, मतदान के बाद जब मतगणना होगी ना, तो तुम्हारा दूरों दूर तक पत्ता नहीं चलेगा। हाँ, और ये दो कांस्टेबलों के भरोसे चुनाव जीतने से रही तुम।
1: समय बदल रहा है दीवान जी, आप भी बदलिए। इस युवा शक्ति

0: को समझिए, पहचानिए।
1: अच्छा चलिए समझने की कोशिश करते हैं भाई।
0: कोशिश करेंगे तो जरूर समझेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। चलिए समझाने दीवान को। अरे जरा सोच समझकर चलना पड़ रहा है हमें, नहीं तो बहुत जल्दी समझाते ऐसे। हाँ
0: कुछ कहा दीवान जी?
1: नहीं, कुछ नहीं, आपसे नमस्ते कर रहे थे और क्या। नमस्ते
0: नमस्ते दीवान जी।
1: नमस्ते। हाँ
2: जमुनिया, चुनाव के मतदान को केवल एक हफ्ता रह गया है और हम जितना आकलन कर पा रहे हैं जनमत आपके ही पक्ष में है, और इससे दीवान का बौखला जाना स्वाभाविक है।
0: और होना भी चाहिए, अभी तक लगभग एक तरफा सत्ता उसी के पास तो रही है।
3: हाँ।
0: तो आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। जयंत भैया, आप तो सब समझते हो ना।
4: हे, मुझे तो डर लग रहा है, ये दीवान है ना, कुछ उल्टा पुल्टा न कर दे।
0: कैसा उल्टा पुल्टा मेघा बहन?
5: मेघा को लगता है कि अवैध मतदान करवा सकता है, क्यों मेघा?
4: हाँ शिल्पी, जब भी मिलता है उसके इरादे और गंदे नजर आते
2: हाँ, तो चलो आज कहीं बैठकर इस पर विचार करते हैं कि
4: हाँ,
2: हमें आगे क्या करना चाहिए।
4: हाँ चलो ठीक है, चलो चलो।
6: अभी भी कई क्षेत्र छूटे हुए हैं जिनसे हम नहीं मिल पाए हैं, उधर चलकर अपनी बात रखना जरूरी है।
0: ठीक है, आज वही चलते हैं। चलो
6: चलो
7: चलो चलो
6: चलो
7: चलो चलो चलो चलो
1: जमुनिया जीतेगी, आ जमुनिया जीतेगी। अरे नारे सुन सुन के तो कान पक गए हमारे हैं? और तुम लोग कुछ कर भी रहे हो या फिर चुपचाप रहकर तमाशा देख रहे हो?
8: मालिक,
1: अरे मालिक मालिक किए जा रहे हो कथे। अरे चुनाव है चुनाव, समय नाजुक है, सोच समझकर कदम उठाओ। हाँ, और यही सब करते रहोगे तो जैसा मुझे दिखाई दे रहा है ये जमुनिया जीत कर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। हाँ
8: मालिक, आप सही कह रहे हैं मालिक, गांव में भीतर ही भीतर जमुनिया के पक्ष में लहर चल रही है।
9: और मालिक, लोग भी क्या बताएं आपको, बहुत ही चालाक हो गए हैं।
8: हाँ?
9: अरे मुंह पे तो बोलते हैं कि आपको वोट देंगे, मगर उनके इरादे तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं।
8: हाँ, मालिक, हाँ, हाँ।
1: सही कह रहे हो तुम लोग, पर सुनो।
8: हाँ मालिक,
1: आज कंबल और कपड़ा बंटवा दो। हाँ
8: जी ठीक है,
1: पर खाली एक मोहल्ले में, अभी देखो कि क्या असर होता है। और उधर हम शहर में जाकर पता करते हैं कि यहाँ चुनाव की ड्यूटी पर कौन आ रहा
8: है।
1: हाँ, उसी को पटाकर कुछ करना पड़ेगा।
8: तो जीत गए मालिक।
1: अरे चुनाव के एक दिन पहले सबको दारू पिलाओ
8: जे, हाँ, मालिक,
1: जे, जे, और उन्हें मतदान केंद्र तक आने ही मत दो।
8: अरे हाँ, हाँ, ये,
1: हाँ, का? अरे उनके वोट हम डलवाएंगे हम।
10: जी मालिक, इस बार कुछ इसी तरह काम करना पड़ेगा, पर वहाँ भी सजग रहने की जरूरत है।
9: ये जो शेरी छोकरा है ना, जयंत,
8: जयंत
9: है ना, अरे कुछ ज्यादा ही उड़ गया है यार।
1: ठीक है जो।
9: अरे इसी ने तो आग लगवाई है मालिक, कि जमनिया पे आपने हमला करवाया।
8: लो भला,
9: तभी तो ये पुलिस वाले आ गए।
8: हाँ।
9: अरे आप कहो तो इसे भी ठीक कर दें।
1: नहीं नहीं नहीं,
8: हुकम करो मालिक।
1: नहीं अभी नहीं, पहले पटाओ से देखो क्या कहता है वो, ताकत तो बाद में आजमा लेंगे अपन लोग।
9: तो मालिक हम अभी जाते हैं, चल के देखें यार उधर का पक रहा है।
8: हाँ, हाँ, सही, चलो, सही, चलो,
1: हाँ जाओ और जल्दी लाकर हमें खबर दो।
9: अभी लाके जाओ।
8: चलो चलो आप।
11: अरे जमुनिया बहन, आज इधर।
0: हाँ भैया।

0: इधर नहीं आ पाए थे, इसलिए सबसे मिलने आ गए। आप लोग सुनाइए।
1: हमें सुनाना तो क्या है, सब ठीक ही ठाक है। देखो भाई, यहाँ के लोग तो दीवान जी के खानदानी लोग हमेशा से
2: हाँ
1: उन्हीं के साथ रहे हैं। यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है।
2: हाँ जी, समझ लो समझ लो
0: जी। ये तो इन्हीं लोगों को पता है कि ये लोग मतदान के दिन क्या करेंगे।
1: क्या करेंगे,
0: मेरा फर्ज है कि जो समझती हूँ वो इन्हें समझा दूँ, बाकी ये लोग जाने। क्यों भैया, है ना?
2: हाँ ठीक है।
0: लगता है आप लोग कुछ बोलना नहीं चाहते। तो भैया, मुझे जो कहना था कह दिया। आगे आप लोग जो ठीक समझे। चलिए साथियों,
3: हाँ
4: हाँ
3: चलो
4: चलो
3: चलते
4: चलो,
3: हैं।
4: आगे बढ़ते
3: हाँ हाँ
4: हैं।
3: चलते हैं।
5: जीतेगी भाई जीतेगी, हाँ दुनिया जीतेगी।
1: अरे जयंत बाबू, जयंत बाबू,
2: हाँ यार, हाँ
1: जरा
2: यार,
1: एक तरफ इधर यार,
2: हाँ
1: आपसे जरा कुछ जरूरी बात करनी थी।
2: हाँ
6: जी कहिए, क्या बात है?
1: बात जरा कुछ को भाई, जरा ऐसी है कि
2: हाँ हाँ भैया,
1: का कहते हैं कॉन्फिडेंशियल।
2: हाँ वही वही,
1: बस दो मिनट के लिए।
2: हाँ इधर आ जा आप, हाँ इधर आओ।
6: हम तीन चार मित्रों के बीच आप ये कह रहे हैं कि मैं अलग से गोपनीय बात करूं? देखिए, ये कुछ ठीक नहीं है। इससे हमारे बीच अविश्वास पैदा होगा, हमारा एक दूसरे पर भरोसा कम होगा। इसलिए आप अपनी बात रहने दें, और अगर कहना है तो हम सबके बीच में कहें।
2: अरे चलो यार, जयंत
1: चलो
2: भैया हमसे
1: यार,
2: बात करने में घबरा रहे हैं।
1: और क्या, फिर
2: हैं?
1: भी देखो साहब,
2: हाँ
1: सोचो,
2: हाँ
1: कुछ आपके फायदे की, कुछ हमारे फायदे
2: हाँ
1: की। जयंत बाबू समझो जरा।
6: आप अपने फायदे की चिंता करिए, अपने फायदे का मैं खुद सोच लूंगा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
1: अरे कहा ना यार, चलो चलो, बेकार टाइम खराब करने से क्या फायदा है।
2: हाँ सही कह
1: हाँ
2: रहा है यार, चल
1: चलो
2: चल चलो आ जाओ।
4: जयंत, इनका मतलब क्या रहा होगा?
6: मतलब क्या होगा, हमें पटाकर चुनाव से अलग करना चाह रहे होंगे।
4: अरे
6: ये दीवान के लोग हैं,
4: हाँ,
6: मुझे पता है। अब मुझे पक्का लगने लगा है कि दीवान कुछ फर्जी मतदान करवाने की सोच रहा है। मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। तुम लोग यहां का प्रचार संभालो, मैं कल शहर जाकर कुछ करता हूं।
3: ठीक है जयंत, तुम उधर देखो, हम लोग इधर प्रचार का मोर्चा संभालते हैं।
4: बिल्कुल ठीक।
0: ये तो बहुत ही परेशानी वाला काम है चुनाव लड़ना। मैं तो समझी थी परछा भर गया, वोट डलेंगे, जो जीतेगा गांव की तरक्की का काम करेगा, पर यहां भी बड़ी धांधली है।
4: जमुनिया, अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, समझ गई ना आप? चलो आगे बढ़ेंगे।
0: नहीं मेघा जी, पीछे हटने वाली बात नहीं है। मैं तो कहना चाहती हूं कि सीधा रास्ता नहीं है कुछ भी हासिल करने का। मतलब परस्त लोगों ने हर बात को उलझा रखा है।
4: हाँ वो तो है,
3: चलो आगे चलते हैं।
4: हाँ चलो आगे चलते हैं।
0: चलिए।
1: अरे क्या हुआ, क्या बोलता है वो जयंत छोकरा?
7: अरे बड़ी चालू चीज है वो मालिक।
1: हैं?
7: अरे हाथ ही नहीं रखने दिया,
1: हैं?
7: साफ टेढ़ा हो गया। क्या कह रहा था कि जो कहना है सबके सामने कहो।
1: अरे
7: अब सबके सामने तो बात करने की थी नहीं,
2: पर
7: कौन?
2: हाँ इशारा तो कर दिया था अपन ने, है फायदे की बात कहकर।
1: गधे हो तुम लोग गधे।
2: मालिक
1: अब वो और सजग हो जाएगा। अरे तुम्हें उनके अलग अलग होने का इंतजार करना चाहिए था, बात को बिगाड़ के रख दिया कमबख्तों। क्या करें। अच्छा सुनो
2: जी मालिक,
1: आज रात का कार्यक्रम तय करो, क्या करना है वो सोचो, थोड़ी जासूसी भी करो।
2: जी ठीक है,
1: वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और लोगों का क्या मूड है वो भी देखो। हाँ
2: जी मालिक, जी मालिक, जी
7: देखते चलो
1: आज ही रात को बताओ मुझे आकर।
2: हाँ मालिक,
1: कल मुझे उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा।
2: हाँ मालिक,
1: कल शहर भी जाऊंगा और चुनाव ड्यूटी का पता करने के लिए कि

0: है किसकी ड्यूटी, बहुत ही जरूरी हो गया है सेटिंग करना। हाँ
1: वो तो साहब,
0: चलो जाओ जाओ।
2: चलो चलो
3: इंस्पेक्टर साहब
4: जी,
3: मैं केवल इतने से काम के लिए यहां आया हूं कि उस गांव में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए।
4: जैन जी, ये तो आप भी जानते हैं कि कहां कितनी पुलिस रहेगी, चुनाव व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, सब चुनाव आयुक्त देखते हैं। हमें उनका आदेश मानना होता है और उन्हें लगता है कि तमाम उपायों के बावजूद चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं या कोई गड़बड़ी हुई है, तो दोबारा वोटिंग कराते हैं।
3: सर, मैं आपसे चुनाव व्यवस्था करवाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे पता है कि अपने देश में चुनाव बहुत फेयर होते हैं
4: जी,
3: और इस बात को दुनिया भी मानती है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि किसी भी तरह की बदमाशी पर नजर रखी जाए, जनता अपनी मर्जी से मतदान केंद्र पर जाए और मतदान करे, उन्हें किसी भी प्रकार का फोर्स ना किया जाए और ना ही लालच दिया जाए।
4: देखिए, मैंने आपके ही कहने पर जमुनिया को सुरक्षा उपलब्ध कराई है, पर एक बात जानना चाहता हूं, आपको इस गांव की पॉलिटिक्स में इतनी रुचि क्यों है? जहां तक मैं जानता हूं, आपका इस गांव से कोई संबंध नहीं है।
3: मैं तो वहां केवल घूमने घामने गया था अपने दोस्तों के साथ, पर वहां जाकर गांव में जमुनिया से मिला तो लगा एक नए भारत का उदय होने वाला है और जमुनिया उसका रोल मॉडल हो सकती है। बयार उसके पक्ष में है, उसे केवल धूर्ति हरा सकता है और हम ये नहीं होने देना चाहते। आप अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो एक अच्छे काम में आपकी भी भागीदारी हो सकती है।
4: आप निश्चिंत रहें, मैं जितना भी संभव होगा व्यवस्था करूंगा और समय समय पर मैं भी चक्कर लगाता रहूंगा वहां।
3: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच
4: जी। कोई बात नहीं,
3: हमें आपका आना अच्छा लगेगा
4: जी,
3: और मेरा विश्वास है कि जमुनिया से आप भी प्रभावित होंगे।
4: क्यों नहीं।

0: लगता है थक गई हो, सिर दबा दूं भाई?
1: अरे नहीं रे, सिर में नहीं दुख रहा, पर दबा दे, थोड़ा अच्छा लगेगा।
0: लाओ सिर दबा देती हूँ। अच्छा माई, सिर दर्द नहीं दे रहा तो फिर कुछ सोच रही हो?
1: ये तो सही बोली, पता नहीं क्या रोग पाल बैठी, जो देखो 100 सवाल पूछ रहा है। दीवान से तो कोई कुछ पूछता ही नहीं था, ना पूछ रहा है। भी चुनाव हुए नहीं और लोग ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे मैं ही सरपंच बन गई हूं।
0: तब तो अच्छा है ना माई, सोचो 100 बार सोचो, पर आगे की सोचो। अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, है ना माई?
1: तू कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी रे?
0: मेघा दीदी, शिल्पी दीदी, जैन भैया, सभी लोग तो ऐसा ही बोलते हैं ना।
1: हाँ।
2: अरे बिटिया जमुनिया,
1: जी बाबा।
2: अरे तू अभी सोई नहीं?
1: आओ बाबा, आ जाओ, ये चिरैया भी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। दादी बन गई है एकदम से।
0: अच्छा माई, चलो ठीक है, नहीं बोलते हम।
2: अरे बिटिया,
1: जी बाबा।
2: मैं पुराने टोले में गया था
1: हाँ।
2: लोगों से बात करने, सोचा उनके मन का पता करूं,
1: अच्छा।
2: पर कुछ पता नहीं चल पाया बिटिया। वहां तो कंबल बट रहे थे, धोतियां बट रही थीं। अरे ये दीवान अपना घिनौना खेल खेल कर ही मानेगा बेटा।
1: मुझे तो लोगों पर भरोसा है बाबा,
2: हाँ
1: वे कंबल और धोती भले ही ले ले, पर उधर वोट नहीं देंगे।
2: पर बिटिया, कहीं वो जबरन वोट डलवा देगा तो?
1: उसकी चिंता तो है, पर जयंत भैया उसका काट निकालेंगे,
2: हाँ
1: मुझे पक्का भरोसा है। आज शहर गए हैं, देखिए क्या खबर लाते हैं। देखा नहीं था कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया?

0: तुरंत पुलिस आ गई हमारी सुरक्षा के लिए।
1: हाँ बिटिया, अरे वो तो है।
0: तो चिंता न मत करो बाबा, सब ठीक होगा।
2: चलो भैया, अरे आ जाओ भाई सब। अरे अरे ये बच्चे लोगों को पीछे बिठाओ। हाँ महिला इधर आ जाइए, चलो बस बस। हाँ अरे अरे अरे ये बकरी को उधर करो यार, तमाशा लगा रखा है। ये कुत्ता को भगाओ। भाइयों भाइयों और बहनों, आप सबको संबोधित करने के लिए दीवान जी आने ही वाले हैं। हाँ आज ही बैठे रहना, और जब तक वो आते हैं हम आपको गाना सुनवाते हैं। बोलो सुनोगे गाना?
3: चलो भैया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाले।
4: दीवान जी के इंतजार में लोग आके चले गए।
5: अरे हाँ यार, अब तो गिने चुने लोग बचे हैं। भैया भाषण किसको सुनवाएंगे?
2: दीवान जी पधार चुके हैं, जरा तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आदरणीय दीवान जी से निवेदन करता हूँ कि वे आप सबको सीधे संबोधित करें। आदरणीय दीवान जी।
6: ताली बजा भैया।
7: मेरे गांव के मेरे प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपसे मालकिन के पक्ष में वोट डालने का निवेदन करने आया हूं। आज तक आपने मुझे ही सरपंच चुना है, और बदले में मैंने भी इस गांव का हमेशा भला चाहा है। अरे जितना सरकार ने फंड दिया उससे ज्यादा खर्च किया हमने यहां, क्योंकि ये गांव मेरे परिवार जैसा है, और ईश्वर की कृपा से मुझे भगवान ने दिया भी है, ताकि सरकार द्वारा दिए फंड से अधिक खर्च कर सकूं। भाइयों बहनों, आप तो सब समझदार लोग हैं, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। हाँ बस इतना याद रखिए कि मतदान के दिन मालकिन को याद रखिए, उन्हें अपना अमूल्य वोट दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद।
1: मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग जो भी हैं, दो चार जो बैठे हैं, मालकिन को वोट देंगे। यार देखा नहीं कैसी तिरछी हंसी थी उनके चेहरों पर।
5: भैया इस बार तो सूपड़ा साफ ही होने वाला है, दीवान इस बात को समझता क्यों नहीं है यार?
1: अरे वो खूब समझता है, पर कोशिश करना थोड़े ही छोड़ेगा।
5: भैया एक बात कहूं, हवा का रुख पहचान कर हमें भी पाला बदल लेना चाहिए।
1: तू ठीक कहता है, तो चले जमुनिया से मिलने।
5: हाँ, सोच के भैया। पक्की
1: पक्की,
5: चल चल चल जमुनिया के पास आ जा।
0: अरे दंदी फंदी भैया, इधर कहाँ चले आ रहे हैं, कैसे रास्ता भूल गए?
5: नमस्ते
4: नमस्ते जमुनिया
5: जी। जी नमस्ते
0: नमस्ते।
5: अरे हम रास्ता भूल कर छोड़े ही आए हैं।
4: हाँ? बल्कि हमें रास्ता समझ में आ गया
5: और
4: है,
5: क्या
4: इसीलिए इधर आए हैं।
5: हाँ हाँ।
4: नमस्ते
5: भैया।
8: नमस्ते नमस्ते जमुनिया।
0: नमस्ते।
8: ये कौन लोग हैं?
0: ये दंदी फंदी भैया हैं, दीवान जी के सलाहकार हैं।
8: तो फिर इधर कैसे?
0: पता लगाने निकले होंगे कि जमुनिया क्या कर रही है, क्यों?
5: अब भैया हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, अरे जिसके साथ रहते हैं वो ही भरोसा नहीं करता।
4: दीवान के साथ रहते हैं वो भी हमेशा शक की नजर से देखता है, आज तुम्हारे पास आए तो तुम भी ताना मार रही हो।
0: अच्छा चलो बताओ कैसे आना हुआ।
5: जमुनिया जिज्जी, ऐसा है जिज्जी के गांव के लोग तो तुम्हारे साथ ही हैं, क्यों भैया?
4: हाँ भैया
5: है, पर दीवान का कोई ठिकाना नहीं, कब हाँ। क्या कर बैठे। अब देखो ना, वो कल बाहर गया है इलेक्शन कराने वालों से मिलने के लिए।
4: हाँ।
5: क्यों भैया है ना, अब कहीं कोई गोटी फिट ना कराए, हम तो यही बताने आए थे आपको।
4: हाँ अच्छा अब हम चलते हैं।
5: हाँ।
4: दीवान को पता लगेगा तो हम बता देंगे कि आपकी जासूसी करने आए थे।
5: और क्या।
0: धन्यवाद भैया लोगों। नमस्कार।
5: नमस्कार जी। नमस्ते जी।
8: ऐसे लोग हर समाज में होते हैं, हमेशा सत्ता के साथ, चाहे सत्ता किसी की भी हो, इन पर भरोसा।

0: करना भी खतरनाक होता है और ना करना भी।
1: जमुनिया की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करनी गुनो मेरे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया का 11वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा से पहले विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। उन्होंने बताया कि वह बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगी। वित्त मंत्री शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बालाघाट जिले के लांजी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल हुए। अभियान के तहत यहां बैठक, समीक्षा और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन खेल के प्रति समर्पण, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की प्रेरक मिसाल है। डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने के आसार हैं। और दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत अपना पहला मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि 3 सितंबर को हांगकांग और 5 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी रीवा का।

मजबूत हौसले, बुलंद इरादे, आज महिला की है यही पहचान। हिम्मत रखती है हर धूप छांव में, कर्मठता का पहने रहती परिधान। लाज है नारी का सच्चा गहना, महिला शक्ति से ही बेहतरीन कर पाता है घर का बागवान। इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मन पसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। मैंने बुंदेलखंड की धरती अपनी वीरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन यहाँ का सूखा और पानी का संकट बहुत पुराना है। गर्मियों के दिनों में यहाँ कुएं सूख जाते थे और लोग पानी के लिए तरसते थे। इस कठिन हालात में पुरुषों को पलायन करना पड़ता था और धीरे धीरे पूरे के पूरे गांव वीरान हो चले थे। जो बचे थे वे बेहाल परेशान रहने लगे थे। यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कि इन गांवों में कोई अपनी बेटी ब्याहने को तैयार ना होता था। लोग कहते थे बेटी घर में बैठाए रहेंगे, लेकिन इन जल विहीन गांवों में न ब्याहेंगे। तभी बुंदेलखंड की जल सहेलियां आगे आईं और हाथों में हाथ मिलाकर पानी बचाने के लिए लग गईं। बहनों मध्य भारत का बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी पथरीली जमीन और भीषण सूखे के लिए जाना जाता है। बहनों यहाँ पानी की कमी से जूझते गांवों में महिलाओं का एक साहसी समूह जल सहेलियों के रूप में उभरा है। साधारण साड़ियों में लिपटी ये ग्रामीण महिलाएं तालाबों को पुनर्जीवित करके चेक डैम बनाने और वर्षा जल संचयन के जरिए बुंदेलखंड की तक

0: तस्वीर बदल रही हैं। बहनों, इन जल सहेलियों का कार्य और संगठन बेहद सराहनीय है। ये जल सहेलियां बुंदेलखंड के गांवों की वे महिलाएं हैं जो जल संकट से लड़ने के लिए एकजुट हुई हैं। बहनों, यह पहल पानी की भारी कमी से जूझते जिलों जैसे बांदा महोबा से शुरू हुई। इन जल सहेलियों का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों को बचाना और गांव के हर घर में पानी पहुंचाना था। इनका नेतृत्व गीता और उमराव जान जैसी महिलाओं ने किया। बहनों, सूखी पड़ी नदियों और तालाबों को दोबारा गहरा करना, बारिश के पानी को खेतों और कुओं में रोकना, लोगों को पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जागरूक करना, इन महिलाओं का कार्य जल स्रोतों की सफाई खुद अपने हाथों से करना था। गांवों में अब पीने के लिए पानी आसानी से मिलने लगा, खेती के लिए भी पानी की स्थिति सुधरी, भूमिगत जल स्तर भी सुधरा, महिलाओं का आत्मविश्वास और सम्मान समाज में बढ़ा, पलायन की समस्या कम हुई क्योंकि लोग गांवों में ही टिकने लगे और गांवों में ही फलने फूलने लगे। ये जल सहेलियां केवल पानी नहीं बचाती हैं, वे बुंदेलखंड का भविष्य बचा रही हैं। उनका यह प्रयास हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में मिलकर काम करने से हर समस्या का हल निकलता है, क्योंकि बहनों, जल है तो कल है, जल ही हमारा भविष्य है। बहनों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह कुछ ऐसा काम कर जाए कि मरने के बाद भी लोग उसको याद रखें। बहुत से लोग तीरथ करते हैं, लोगों को धन दान में देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वे चाहते हैं कि वे इस जन्म में इतना पुण्य कमा लें कि उन्हें अगले जन्म सुख ही सुख मिले। लेकिन बहनों, यह सब तो जीते जी किए जाने वाले कार्य हैं। लेकिन हम मरने के बाद भी किसी के काम आ जाएं तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। इस समय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, जिसके बारे में हम आज बातचीत कर रहे हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता लखटकिया से।
1: जो नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक, उसमें आप नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को कैसे जागरूक करती हैं?
2: आम जनता में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जाता है, और इस पखवाड़े के दौरान हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे लोगों में नेत्रदान करने की जागरूकता बढ़े। जैसे कि हमने नुक्कड़ नाटक किया था अभी कुछ ही दिन पहले अपने अस्पताल परिसर में, और ये हम नुक्कड़ नाटक दोबारा भी करेंगे संजय गांधी अस्पताल परिसर में। इसके अलावा रैली निकाल सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम, जो कि आजकल बहुत प्रचलित है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न तरह के विज्ञापन दे सकते हैं, टॉक दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम आम जनता में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। नेत्रदान करने के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं होती है। छोटे से छोटा बच्चा 1 साल का जो है वो भी कर सकता है, और ऊपर की उम्र की तो कोई सीमा नहीं होती है। लिंग भेद भी नहीं होता है इसमें, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों में से कोई भी नेत्रदान कर सकते हैं।
1: जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, क्या वो भी नेत्रदान कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, जिनको डायबिटीज़ है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, वो बिल्कुल नेत्रदान कर सकते हैं। साथ ही वे मरीज़ जो चश्मा लगाते हैं, जिनका ऑपरेशन मोतियाबिंद का हो चुका है, वो सभी नेत्रदान कर सकते हैं। ऐसे मरीजों को नेत्रदान के लिए मना नहीं किया जाता है। धन्यवाद।
0: आइए बहनों, पद्मावत फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं जिसे आवाज दी है नीति मोहन ने।

बहनों, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक पहल है। इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख या उससे अधिक करना है। यह योजना महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। बहनों, इस योजना में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि यह योजना महिलाओं के लिए ही है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही महिला का किसी सक्रिय स्वयं सहायता समूह यानी SHG से जुड़ा होना अनिवार्य है। बहनों, योजना के मुख्य लाभ हैं, जिसमें बिना गारंटी लोन महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। बहनों, व्यक्तिगत ऋण पर 3 साल के लिए ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। बहनों, सिलाई, डेयरी, कृषि, हस्तशिल्प और फूड प्रोसेसिंग पर मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। बहनों, इस योजना से जुड़कर बहुत सी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। बहनों, पहले जो महिलाएं केवल घर तक ही सीमित थी, आज वे खुद का काम संभाल रही हैं और समाज में अपनी पहचान बना रही हैं। बहनों, इस कार्य ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। बहनों, लखपति दीदी योजना से प्राप्त प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से महिलाओं में आत्मविश्वास भर गया है और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि सही दिशा और अवसर मिले तो महिलाएं हर चुनौती का सामना कर सकती हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे आवाज दी है सुखविंदर सिंह ने।

मैनो, बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही अपने साथ लाता है कई मुसीबतें। चारों तरफ पानी ही पानी, खास तौर पर पानी के संपर्क में हमारे पैर आते हैं। बरसात का असर हमारे पैरों पर नजर आता है। बहनों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैरों को इन्फेक्शन और गलन से बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय। बहनों, बारिश के मौसम में भीगने के बाद पैरों को सादे पानी और साबुन से धोएं। उंगलियों के बीच की जगह और मुलायम होती है तो मुलायम तौलिए से अच्छे से पोंछें। बहनों, दूसरा उपाय है पैरों और उंगलियों के बीच फंगस से बचने के लिए कोई अच्छी एंटी फंगल पाउडर या क्रीम लगाएं। यह नमी को रोकता है। बहनों, तीसरा उपाय है कि बंद जूतों की जगह सैंडल या चप्पल पहने जिसमें हवा आती जाती रहे। इससे पैर गीले नहीं रहते और बदबू नहीं देते। बहनों, चौथा उपाय है हमेशा साफ और सूती मोजे पहने। बहनों, किचन में काम करते समय अक्सर गीला होता रहता है तो कोशिश करें कि किचन को सूखा रखें, जिससे हमारे को भी आराम लगे। बहनों, पांचवा उपाय है हफ्ते में 2-3 बार गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पैरों को 10 मिनट तक डुबोए रखें, जिससे थकान भी मिट जाती है और पैरों के बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। बहनों, आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर अपने पैरों को करिए सुरक्षित और लीजिए बारिश का आनंद। तो आइए बहनों, सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे आवाज दी है सोनू निगम ने।

पहनो, बारिश का मौसम अपने जोरों पर है, क्यों ना हम बारिश का आनंद लेते हैं और सुन लेते हैं मीत और मनाली ठाकुर की आवाज में ये प्यारा सा गीत जो फिल्म बागी का है।

0: बहनों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, योगदान था आकाशवाणी रीवा का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और अब समय है एक छोटी सी अंतराल का।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी रीवा का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं अभिलाषा मिश्रा के गाए लोकगीत, जिसमें सबसे पहले आप सुनिए हिंदुली।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे अभिलाषा मिश्रा के गाए लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। योगदान है आकाशवाणी रीवा का। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवाते हैं मुकुल सोनी की गाई गजलें।

मुकुल सोनी की इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। योगदान था आकाशवाणी रीवा का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब

0: वैसी वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं पहला गीत फिल्म सरफरोश से। स्वर है आमिर खान और अलका याग्निक के। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत में बनाया है जतिन ललित ने।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

कार्यक्रम में अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म साजन से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत की रचना की है समीर ने और इसे संगीतमय बनाया है नदीम श्रवण ने।

0: साजन फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले दिए बयान में विश्वास व्यक्त किया कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वह उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वह ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह केंद्र दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जन विश्वास अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम कोरका बोंदारी में आयोजित शिविर में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और शासकीय योजनाओं की पहुंच की जानकारी ली। हर शुक्रवार को जन विश्वास अभियान के अंतर्गत विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस बार शुक्रवार को रक्षाबंधन होने के कारण शनिवार को जन विश्वास शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के गैरतगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत देवनगर में जनसंवाद एवं शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और एसपी आशुतोष गुप्ता उपस्थित रहे। जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने रांझी में आज करीब 2 घंटे तक विभिन्न शासकीय संस्थानों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ क्षेत्र के नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं को सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कोई खास वृद्धि न वहन करनी पड़े। हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख के अनुसार गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस की संशोधित कीमत सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। हालांकि मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि यह निष्कर्ष सही तथ्य पेश नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल में रिमझिम बारिश के आसार हैं, जबकि इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में तेज बारिश की संभावना कम है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, पांडुर्णा, सतना, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, उमरिया, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में मौसम बदला रहेगा। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले में विगत समय से हो रही अतिवृष्टि के मद्देनजर नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रशासन और आपदा टीम अलर्ट मोड पर हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में बाघ रक्षा सूत्र अभियान के तहत 3 दिनों में करीब 11,000 ग्रामीणों, स्कूली विद्यार्थियों, इको विकास समितियों के सदस्यों और वन मित्रों को बाघ वाली राखी बांधकर बाघ तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। अभियान का समापन आज हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
1: प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
2: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
2: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी

0: 3G का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-1213। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142-84905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर
4: को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमरीकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमरीकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमरीका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
5: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और

0: शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में
3: देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा।
2: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म है एक दूजे के लिए, स्वर हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के। ये रचना की है गीत की आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा ने। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी की पसंद पर हम सुनवाते हैं आपको बेहद खूबसूरत गीत।

लीजिए अब सुनिए फिल्म प्रेम रूप का ये बहुत मशहूर गीत, जिसे गाया है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है नरेंद्र शर्मा ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। छावड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू ने। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को पसंद किया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे ने। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये बहुत प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म लव स्टोरी से, स्वर हैं लता मंगेशकर अमित कुमार के, और ये गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले ने। इसी गीत को सुनना चाहे नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने, तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर से। स्वर हैं आशा भोसले और कुमार सानू के। ये गीत रचना है समीर की और इसे संगीतमय बनाया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। इसी गीत के लिए हम तक फरमाइश लिख भेजी है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा के पहले विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। उन्होंने बताया कि वह बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जनविश्वास अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम कोरका बोंदारी पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों से क्षेत्र की समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की और योजनाओं से मिल रहे लाभों की जानकारी ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत अपना पहला मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि 3 सितम्बर को हांगकांग और 5 सितम्बर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। योगदान रहेगा आकाशवाणी रीवा का। फिल्म संगीत आप सुनेगा शाम 5:33 पर, शाम 6:00, 6:45 पर और रात 8:15 पर। 6:30 प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेगा। शाम 7:25 पर बुंदेली समाचार और 7:30 किसानवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्थल कार्यक्रम में कृषि नवाचार विषय पर युवा किसान एवं स्टार्टअप संचालकों से बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में, रात 9:30 कार्यक्रम युवा भारती। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर मंडपाका शारदा का कर्नाटक वोकल। ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब ये सभा संपन्न होती है। शाम 5:00 इसी मीटर पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इसी बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा का आगाज कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युव वाणी से।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनिष्का
1: और मैं हूं जयती और हम स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में,
0: जहां हर शनिवार हम लाते हैं मस्ती मजा और आपका फेवरेट सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसमें आपको मौका मिलता है हमसे जुड़ने का और अपने फरमाइशी गीतों को सुनने का।
1: बिल्कुल, और आज का शनिवार थोड़ा खास है क्योंकि कल ही तो राखी थी। तो तनिष्का, ये बताओ कि कैसी रही तुम्हारी राखी?
0: जयती, मेरी राखी तो बहुत अच्छी रही। राखी त्योहार ही ऐसा होता है जिसमें पुरानी बातें, थोड़ी नोक झोंक और ढेर सारी यादें अपने साथ में लेकर आता है ये त्योहार। आखिर भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है ना?
1: बिल्कुल, और अब राखी की मीठी यादों के साथ वीकेंड भी शुरू हो चुका है। कल संडे है तो आज की शाम मजा करना तो बनता है।
0: बिल्कुल, और संडे की शुरुआत से पहले आज की शाम कुछ अच्छे गानों और आपकी प्यारी प्यारी बातों के नाम होने वाली है ना? लेकिन उसके पहले मुझे लगता है हमें आज के जो प्रश्न है वो हमारे श्रोताओं के सामने रख लेने चाहिए। तो आज का पहला प्रश्न है कि समुद्र में रहने वाला ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास ना ही मस्तिष्क होता है और ना ही हृदय।
1: और आज का दूसरा प्रश्न है, एक कौन सा ग्रह ऐसा है जिस पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है। तो हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब हमारे लिए ढूंढ कर रखेंगे। तो देर किस बात की, हमारी फोन लाइनें खुल चुकी हैं और अब बारी है आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स की।
0: जल्दी से कॉल कीजिए और बताइए कि आप कहाँ से सुन रहे हैं और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224, लेकिन श्रोताओं एसटीडी कोड 0731 लगाना न भूलिएगा।
0: चलिए आइए लेते हैं पहला कॉल।
1: हेलो फ्रेंड्स, हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ मैं।
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कैसे हैं आप?
2: जी बहुत बढ़िया हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
1: नमस्ते, बताइए आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है तू चोर मैं सिपाही।
1: जी, और गाने के बोल?
2: गाने के बोल है हम दो प्रेमी छत के ऊपर।
1: बिल्कुल, तो आपकी पसंद का गीत मिल चुका है हमें, तो चलिए सुनाते हैं आपको ये गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: चलिए श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स।
3: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार
3: जी, मैं मेटर यूनिवर्सिटी डॉक्टर का हूँ।
2: आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने रेडियो सेट से थोड़ा दूर जाकर बात कीजिए।
3: नहीं नहीं, देखिए रेडियो तो बंद है, आपके नंबर में ही कोई प्रॉब्लम है जी? मैं तो आपका नियमित श्रोता हूँ है ना, तो मुझसे तो ये गलती हो ही नहीं, ये नंबर में कुछ मिस्टेक है मैम
4: जी। अब आपकी आवाज़ ठीक से आ रही है। आप युवाणी की तरफ से आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: आप पहले अपना नाम बताएं दोनों, और मुझे सुनना है फिल्म साजन का घर का गीत। और गीत है अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, देखे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। ये गीत सुनना है और आपका नाम भी जानना चाहूंगा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: चलिए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
3: हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते मैम।
2: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
3: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से ईटीसी बात कर रहा हूँ।
2: अरे उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वो सुबह आता है 10 बजे, वो इमेज है, इमेज हॉटलाइन है
2: जी। हाँ, जी
3: वो भी अच्छा लगता है, और जो युवाड़ी में आता है प्रोग्राम, जो ये भी अच्छा लगता है। सारे प्रोग्राम आपके इंदौर से प्रोग्राम बढ़िया आते हैं, इंदौर से, इंदौर का सुतरा उतरा शहर माना हुआ है, तो आपका सुतरा उतरा प्रोग्राम भी बढ़िया आता है।
2: थैंक यू सो मच। आप हमें एक बार पहले बता दीजिए कि आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
3: आज सुनवा दीजिए मैडम जी, और मायनू इस गदा लगी यार, फिल्म नाम दिल दिल है कि मानता नहीं है,
2: दिल है कि मानता नहीं, बहुत ही अच्छी पसंद है। तो चलिए सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। युवाणी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। अपना नाम बताइए
1: धर्मेंद्र हरवाड़ बोल रहा मैम। ग्राम बरोदियो बोल रहा।
0: बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: उल्टा टेक लूंगा।
0: गीत के बोल।
1: हेलो,
0: जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स
3: जी, नमस्कार मैम।
2: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
3: जी मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ।
2: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: जी श्रीनगर जिला महोबा।
2: जी जी जी, और बताइए आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
3: जी फिल्म का नाम रहेगा बीवी हो तो ऐसी।
2: बीवी हो तो ऐसी, और इस फिल्म का कौन सा गीत?
3: फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का।
2: अच्छा अच्छा, तो हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। तब तक बताइए कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त, मौसम कैसा है?
3: जी मौसम बहुत बढ़िया है, काफी दिनों बाद खुला है, 2 दिन से बारिश नहीं हुई है।
2: हाँ ये तो है। और बताइए कि आप युवाणी बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं?
3: जी सुनता हूँ काफी दिन से।
2: तो क्या पसंद है आपको आकाशवाणी में, सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा लगता है?
3: यही फोन इन हेलो वाला।
2: अच्छा अच्छा, बताइए क्यों अच्छा लगता है आपको ये?
3: इसमें हजारों लोगों के बारे में जानते हैं, उनकी पसंद के बारे में जानते हैं, हमारे अपनी आवाज को सुनाई देती है।
2: जी तो अच्छा लगता होगा, ऐसा एक सोशलाइजिंग हो जाती है मेरे ख्याल से।
3: जी प्रकार प्रकार, अलग अलग प्रकार के गीत भी सुनने को मिल जाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए सुनवाते हैं फिर आपको आपकी पसंद का गीत फिल्म बीवी हो तो ऐसी से।
3: धन्यवाद।

0: चलिए अब जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: हसीना भी वंशोजी बोल रही, बालदाना का इंजॉय।
0: बताइए हसीना जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म बनाने दुदाई और गाने के बोले मार।

0: चलिए श्रोताओं, बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो फ्रेंड्स।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से।
0: कोटा से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, आप बताओ आपके?
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ। बताइए, आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: अराउंड द वर्ल्ड का।
0: कौन सी मूवी का?
1: शारदा जी और मुकेश जी की आवाज में।
0: जी जी,
1: गाना जरा ठहरो किसी का दम निकलता है।
0: जी, तो चलिए सुनाते हैं फिर आपको आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से।

0: श्रोताओं, ठहरने का मन तो हमारा बहुत है, लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जो आपसे दो प्रश्न किए थे, अब हम उसके उत्तर आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न था कि समुद्र में रहने वाला ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास ना ही मस्तिष्क होता है और ना ही हृदय। तो इसका उत्तर है जेलीफिश। इसके पास ना ही मस्तिष्क होता है, ना ही हृदय और ना ही हड्डियाँ। इसके शरीर में एक नर्व नेट होता है जो इसे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। और यही कारण होता है कि बिना मस्तिष्क के भी ये तैर सकती है, भोजन पकड़ सकती है और अपना जीवन सफलतापूर्वक जीती है।
1: और श्रोताओं, आज का दूसरा प्रश्न था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है, और इसका सही उत्तर है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। तो हमें उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपने दोनों ही प्रश्नों के सही जवाब हमारे लिए ढूंढ कर रखे होंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति मुझे यानी कि जयति
0: और तनिष्का को।
1: नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हमराज फिल्म के इस प्यारे से गीत से।
1: तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।
0: इस गीत को गाया है उदित नारायण ने। सुधाकर शर्मा की शब्द

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओ, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं राज फिल्म का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। समीर की शब्द रचना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ श्रोताओ, यही है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हमको सुनाया जा रहे हैं रूप कुमार राठौड़ के स्वर में। तू ही

श्रोताओ, रूप कुमार राठौड़ को अभी आपने सुना फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में। गीत रचना जयदीप सहानी की थी और संगीत सलीम सुलेमान का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत।
1: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का आज के विशेष कार्यक्रम

विकसित होता भारत। आज का अंक लेकर हाजिर हूँ मैं शालिनी सोनी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी देश का विकास आर्थिक नीतियों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, तकनीकी नवाचार एवं पर्यावरण संरक्षण का मिला जुला परिणाम है और इसके संतुलन के लिए हम नागरिकों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। विकसित भारत 2047 भारत सरकार का एक दूरदर्शी विजन है, जिसका लक्ष्य 2047 तक यानी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक प्रगति, पर्यावरण स्थिरता और बेहतर संसाधनों के साथ जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। साथ ही श्रोताओं, भारत में एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था लाना है और एक ऐसा विकास करना है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उन्नति हो। श्रोताओं, भारत का लक्ष्य है विकास की तेज रफ्तार हो, लेकिन पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। विकसित देश सिर्फ अमीर नहीं होते, वे हरे भरे भी होते हैं। श्रोताओं, हमारा लक्ष्य विकसित भारत 2047 है और लक्ष्य की नींव अगर कहीं है तो वो है हमारी हरी भरी धरती, स्वच्छ पर्यावरण। जी हाँ, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर कृषि तकनीकों को एक साथ जोड़ लिया जाता है तो आता है प्लांट साइंस का नाम। जी हाँ, प्लांट साइंस। प्लांट साइंस ही हमारे खाने, हवा, दवा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। श्रोताओं, 2047 तक भारत की आबादी लगभग 165 करोड़ होगी और इतने लोगों का पेट भरने के लिए उत्पादन दोगुना करना होगा। लेकिन श्रोताओं, जमीन और पानी वहीं का वहीं, तब ऐसे में काम आएगी प्लांट साइंस की तकनीकें। इस दिशा में श्रोताओं, जलवायु अनुकूलन फसलें तैयार की जा रही हैं, साथ ही सूखा, बाढ़, गर्मी सहन करने वाली गेहूं, धान, मोटे अनाज की किस्में तैयार हो रही हैं। श्रोताओं, अगर हम देखते हैं कि शहरों में ज़मीन कम है, होता ही है अक्सर ऐसा, शहरों में ज़मीन कम होती जा रही है, इसलिए प्लांट साइंस की मदद से वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक्स के जरिए 10 मंजिल बिल्डिंग में भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं श्रोताओं, जिसमें लगभग 90% पानी कम लगेगा। और हाँ, ज़ीरो हैंगर गोल रखा गया है, यानी मोटे अनाज जिन्हें हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं, उन्हें सुपर फूड बनाकर कुपोषण से लड़ने का रास्ता मिल गया है। श्रोताओं, 2047 का भारत भूखा नहीं बल्कि पोषित होगा और इसका श्रेय जाएगा प्लांट साइंस को।

0: श्रोताओं, 2047 तक नेट जीरो का लक्ष्य है, यानी एक हेक्टेयर जंगल जो साल में लगभग 60 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, प्लांट साइंस से हम फास्ट ग्रोइंग ट्री लगाकर बायो इकोनॉमी ला सकते हैं। पौधों में बायो फ्यूल, बायोप्लास्टिक, बायोफार्मा, गन्ने से इथेनॉल, शैवाल से जेट फ्यूल उपयोगी सामग्री हम पा सकते हैं। यकीनन 2047 तक भारत का 20% ईंधन पौधों से मिल पाएगा। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी में लगभग 100 मिलियन की हर्बल इंडस्ट्री है। ये मेडिसिनल प्लांट्स भारत की दवा फैक्ट्री बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे। श्रोताओं, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी जैव विविधता है और प्लांट साइंस इसे विश्व मंच पर दर्शाएगी और विभिन्न चुनौतियों से लड़कर सिद्ध कर देगी कि जब किसी देश का किसान और विज्ञान एक साथ आते हैं तो सफलता निश्चित है। श्रोताओं, जिस देश की जड़ें हरी हैं उस देश का भविष्य सुनहरा है, और जब प्लांट साइंस, हर्बल हेल्थ केयर और मेडिसिनल प्लांट एक साथ हों तो इसके बेहतर कार्य क्षेत्र हैं। प्लांट साइंस कैसे भारत के विकास, स्वास्थ्य सेवा, खेती, पर्यावरण, रोजगार और आर्थिक विकास में सहायक है, जानते हैं हमारे आज के मेहमान से। आज हमारे साथ हैं प्लांट साइंस एवं मेडिसिनल प्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति सोहानी। श्रोताओं, कैसे हम अपने पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ, बायोटेक्नोलॉजी के साथ और हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ एकीकृत कर विकास की राह में आगे बढ़ सकते हैं, आइए जानते हैं। श्रोताओ, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्लांट साइंस एवं मेडिसिनल प्लांट की विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति सोहानी। स्मृति जी, आकाशवाणी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: स्मृति जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि प्लांट साइंस है क्या और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या महत्व है।
1: प्लांट साइंस यानी वनस्पति विज्ञान जो है वो केवल पेड़ पौधों की पहचान या उसके क्लासिफिकेशन तक सीमित नहीं रहता। इसके अंतर्गत हम प्लांट्स की संरचना, उसके ग्रोथ, उसका रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, उसके डिसीजेस, कई मेडिसिनल प्रॉपर्टी और कमर्शियल एप्लीकेशन के साथ साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्लांट रिलेटिवली कई तरीके से जुड़ा हुआ है, जैसे फूड्स में, मेडिसिन, क्लॉथ यूज, कॉस्मेटिक्स और कई इंडस्ट्री के लिए, जैसे रॉ मटेरियल से जो भी होते हैं वो भी प्लांट से प्राप्त होते हैं। हम सुनते ही हैं और हमें पता ही है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए प्लांट साइंस हमारे हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि विकसित भारत 2047 के विजन को अचीव करने में प्लांट साइंस किस तरह से सहयोग दे सकता है।
1: देखिए, विकसित भारत 2047 का ऑब्जेक्ट केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, इसमें हेल्थी पॉपुलेशन, फूड सिक्योरिटी, क्लीनिंग एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी शामिल होता है। प्लांट साइंस के माध्यम से ऐसी कई इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी जो है वो डेवलप की जा सकती है, जिसमें हम कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन दे सके, जितनी हाई टेम्परेचर में जो प्लांट्स होते हैं अपने वो टॉलरेट कर सके, जैसे कुछ पेस्टिस होती हैं, डिसीजेज

0: सकती हैं, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डेवलप करा सकते हैं इसके अध्ययन से। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिंग के माध्यम से भी हम हाई क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट से हम हर्बल मेडिसिन, बायो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, नेचुरल कलर्स और न्यूट्रोसिटिकल्स के साथ साथ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये सभी क्षेत्रों में जैसे भारत को ग्रीन और हेल्दी बनाने में इकोनॉमिकली मदद करने के लिए तैयार रहता है।
1: स्मृति जी, आज का जो क्लाइमेट चेंज है वो एक सीरियस ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है ना, तो इससे निपटने में प्लांट साइंस क्या भूमिका, क्या रोल प्ले करता है, आप हमें बताएंगे?
0: जी, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी हमारे पास एक सिचुएशन आ चुकी है जिसकी वजह से हमारी पूरी वेजिटेशन को प्रॉब्लम आ रही है और आने वाले समय में भी आती रहेगी। इसके कारण जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, हमारे इरेगुलर रेनफॉल्स हो रहे हैं, कहीं सूखा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, सॉइल की डिग्रेडेशन के वजह से प्लांट में कई डिसीजेस जैसी समस्याएं बढ़ रही है। इसके लिए प्लांट साइंस की स्टडी करना एक चैलेंज के साथ साथ एक साइंटिफिक सॉल्यूशन भी देता है। तो स्टूडेंट्स से या जनरेशन से एक रिक्वेस्ट है कि केवल प्लांट को एक प्लांट साइंस के हिसाब से ना ले, उसकी स्टडी को एक चैलेंज के साथ हम प्रैक्टिकली सॉल्यूशन देते हैं और सोसाइटी को बेनिफिशियल करवाएं। प्लांट साइंस साइंटिस्ट जो है वो कई तरीके से क्रॉप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इन विट्रो कल्टीवेशन के साथ, जिसमें वो एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ अर्बन फॉरेस्ट्री करते हैं, नेटिव स्पीशीज प्लांटेशन के माध्यम से इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं, कहीं टिश्यू कल्चर्स होते हैं, हम प्लांट की एक छोटी सी जो होती है एक्सप्लांट को लेकर हम इन विट्रो कल्चर करते हैं, उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पर हम आर्टिफिशियल मीडिया देते हैं, जैसे सॉइल होता है एक नेचुरल मीडिया जिसमें सारे उर्वरक होते हैं, हम पानी देंगे, दवाई देंगे, तो एक नेचुरल प्लांट ग्रोथ होता है, उसकी अपनी एक क्षमता होती है। पर साइंटिस्ट जो क्या कर रहे हैं वो इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी के अंदर एक प्लांट्स को डेवलप करते हैं जहां वो उसको उसी माध्यम से उसी कॉन्सेंट्रेशन से प्लांट को मीडिया देते हैं और उसको वहां पर डेवलप करते हैं जहां जिस प्लांट को जिस चीज की जरूरत ज्यादा है उसको वो मीडिया के द्वारा उसको हार्मोन्स दिए जाते हैं और इसे प्लांट को जनरेट करते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब वो हम उसको इन विवो मतलब हम इन्वायरमेंट में या खेती में या फिर जमीन में सॉइल में उसको कल्टीवेट कराते हैं जहां उसमें क्षमता हो जाती है क्लाइमेट चेंज से जो चीजें हो रही है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर कहीं पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, वहां वो रेजिस्ट कर पाए मतलब वो वहां पर सर्वाइव कर पाए।
1: आगे स्मृति जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को मेडिसिनल प्लांट की भूमि कहा जाता है ना, तो क्या इस क्षेत्र में हमारे देश की कोई स्पेशल स्ट्रेंथ है?
0: देखिए, भारत जो है वो रिच बायोडाइवर्सिटी से बिल्कुल भरपूर है, जहाँ पर बहुत तरीके की वेजिटेशन है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं और मेडिसिनल जो उसका नॉलेज है वो हजारों वर्षों पुराना है भारत देश में। जो भारत के पास आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी ऐसे कई ट्रेडिशनल हर्बल्स के जो है लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। आप लोगों ने तुलसी, नीम, अश्वगंधा इन सब के नाम सुने होंगे। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उनमें मुलेठी, सहजन, सदाबहार, केतनाकाव, आकड़ा ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनके अंदर कई इंपॉर्टेंट बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इन प्लांट्स के एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं उन पर साइंटिफिक रिसर्च करके हम मेडिसिनल जो वैल्यू है उनकी उनको सोसाइटी को शो कर सकते हैं, उसके द्वारा हम कई थेरेप्टिकल फॉर्मुलेशन डेवलप कर सकते हैं और हर्बल कॉस्मेटिक की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं कि नेचुरल मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ हो गया
1: जी।
0: मेडिसिनल प्लांट का मतलब थेरेप्टिकल यूज के अलावा उसका स्टैंडर्ड डोज भी मायने रखता है, कितनी क्वांटिटी में उसकी वैल्यू होती है, कितना हम क्वांटिटी टेस्टिंग करते हैं और कितना क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट जो होते हैं उसी एडवाइस के द्वारा हम उस प्लांट से मेडिसिनल प्लांट में कन्वर्ट करते हैं
1: जी।
0: ये सबसे आज की जनरेशन को सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मेडिसिनल प्लांट क्या है। क्या होता है कि कुछ प्लांट्स टॉक्सिकल प्लांट्स होते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो हर प्लांट का प्रत्येक पार्ट एक मेडिसिनल वैल्यू रखता है। वो डिपेंड्स ऑन है कि वो किस बीमारी के लिए कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट वो मैटर करता है। किसी किसी प्लांट के लिए जैसे आपने आकड़ा अकाओ सुना होगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, उसमें क्या होता है कि वो एक लैक्टिस मतलब एक दूधिया पदार्थ बाहर निकालता है जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है ना, वही पॉइजनस को अगर वो एज ए पार्ट ऑफ पॉइजन है हम उसको अटैक नहीं कर सकते, उससे स्किन डिसीजेस होती है। तो इसी चीज को हमने एक तरीके से बोल सकते हैं, इसका ड्रॉबैक्स है।

0: हम उसका एक हमने एक मॉस्किटो रेपेलेंट बनाया, जिससे क्या होगा पता है कि वो पॉइजनस पार्ट है उस चीज का, तो हमने उसको लिक्विड करके जिन खेतों में कीटों की प्रॉब्लम हो जाती है, प्लांट में जो पत्तियों में डिसीज लग जाती है, हमने उसी को क्या करा डाइल्यूट करके स्प्रे करना चालू किया, तो वो प्लांट का वो पार्ट भी हमारे लिए क्या हो गया, यूजफुल हो गया, क्योंकि हमने उस खेत के ऊपर लगने वाले सारे कीटों को क्या किया है वहां से हटाया। इस तरीके से भारत के पास जितनी डाइवर्सिटीपल वैल्यूज जो है प्लांट्स की, वो प्रत्येक प्लांट का प्रत्येक पोर्शन कहीं ना कहीं यूजफुल होता है।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। हेल्थ केयर की बात जब हो ही रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में इस दिशा में योगदान मिल सकता है।
0: इसमें कई इम्पोर्टेंट एरिया हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कोप दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला तो है एक हर्बल मेडिसिन प्रोड्यूस करना। हर्बल भी है और मेडिसिन भी है, दोनों वर्ड अपने आप में एक अलग वैल्यू रखते हैं, जिसमें जैसे मेडिसिनल प्लांट का कुछ एक्टिव इंटीग्रेंट्स है वो साइंटिफिकली आइडेंटिफाई करके उसको अपन एक क्वालिटी और कंट्रोल के साथ फॉर्मुलेशन करके एक ड्रग का डेवलप कर सकते हैं, तो ये हर्बल मेडिसिन कहलाएगा।
1: जी जी,
0: जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट से ही हम लोग उस इंटीग्रेट को लेते हैं, उसका साइंटिफिकली आइडेंटिफिकेशन सेपरेशन करके उसको एक फॉर्मुलेट करते हैं हर्बल मेडिसिन में, ये एक अच्छा क्षेत्र होता है। ये जो मेडिसिन रेडी होगी ये सबसे पहले तो किसी भी ह्यूमन को बहुत कम, मतलब बोलते हैं नुकसान नहीं करेगी, इससे कोई ड्रॉबैक्स नहीं होंगे, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, रेयर टू रेयर कभी किसी को कोई रेजिस्टेंस है देन वो शो करेगा, अदरवाइज इससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। और इसके अलावा ये हमारी भारत की इकोनॉमिक्स पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम खुद हर्बल मेडिसिन डेवलप करेंगे, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ से वो सब चीजें नहीं करेंगे, हम खुद उन मेडिसिन को जो है डिजाइन करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, और हम हमारी लोकल जनता को या हमारे ट्राइब एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पार्ट ऑफ दी हर्बल मेडिसिन प्रोडक्शन के द्वारा।
1: आजकल हम हर तरफ देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई हैं हमारे आसपास, तो क्या मेडिसिनल प्लांट के रिसर्च के जरिए या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम इसे कैसे जोड़ सकते हैं?
0: AI जो है वो औषधीय पौधों के लिए बहुत अच्छी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ये हमको बता सकता है कितना फास्ट और कितना इफेक्टिव कोई प्लांट हमारे लिए हो सकता है इज हेल्प ऑफ AI। जो जितने भी हमारे प्लांट्स के अंदर उपस्थित केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या करता है वो एनालाइज करता है, प्रिडिक्ट करता है, और कौन सा कंपाउंड किस डिसीज के लिए हेल्पफुल है उसी टारगेट पे वो क्या हम उसको क्या कर सकते हैं। जैसे डिसीज अभी मैंने बताया कि हमने एक पेस्ट को स्प्रे किया, AI क्या करेगा कि पूरी लीव जो अलग अलग डिसीज हो सकती है किसी क्रॉप, जैसे एक फार्म में खेत में कई तरीके के प्लांट्स पे मतलब पत्तियों पे कई डिसीज हो सकती है, AI हमको डिटेक्ट कर देगा कि इस पौधे पर इसकी इस पत्ती पर कौन सा डिसीज है, मतलब उसी को वही टेबलेट दें या उसको वही स्प्रे करें जिससे उस पर्टिकुलर डिसीज का इलाज कर पाए, हमको हर तरीके की डिसीज के लिए हर तरीके का स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो AI हमारे लिए क्या करता है कि कई केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा एनालाइज करके हमको एक प्रॉपर चीजें शो कराता है कि हाँ हम ये चीजें उसके लिए डेवलप कर सकते हैं।
1: स्मृति जी, अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, हमारे किसान भाइयों की, तो जो ये मेडिसिनल प्लांट हैं इनका उत्पादन किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है?
0: मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन एक लेवल पे चैलेंज भी हो सकता है, और बहुत अच्छे मात्रा में उसको हम लोग अगर प्रोडक्शन करें बहुत केयरिंग के साथ करें तो एक फार्मर के लिए बहुत एक इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होता है, और उसकी सॉइल मतलब उसकी जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो क्रॉप होती है रेगुलर क्रॉप जैसे सोयाबीन की हो ये सब रोटेशन होता है कि इसके बाद यही क्रॉप आप लगा सकते हैं या कल्टीवेट कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट के लिए क्या होता है कि एक फार्मर को अपने की सलाह के हिसाब से अगर आप रेगुलर खेत के अलावा कुछ पोर्शन अपने खेत में कुछ मेडिसिनल प्लांट के लिए जगह रखें, जहाँ पर केवल मेडिसिनल प्लांट ना हो, कहीं कहीं पर एरोमेटिक प्लांट्स भी लगाएं, वो अपनी रेगुलर क्रॉप्स को क्या करेगी इम्प्रूव करेगी, उनकी सॉइल की फर्टिलिटी को ग्रो कराएगी, इससे नुकसान फार्मर्स को कभी नहीं होता बल्कि बेनिफिट ये होगा कि उसकी सॉइल की क्वालिटी भी बढ़िया रहती है और उनको इकोनॉमिकली भी फायदा ही होता है।
1: जी स्मृति जी, अब बात हमारे युवा साथियों की, बात उनके बारे में जो प्लांट साइंस का अध्ययन करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर करियर ऑप्शन के रूप में इसे चुनना चाहते हैं।
0: मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लांट्स केवल ग्रीनरी के रूप में ना देखें, प्लांट्स हमारे लिए कई तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली

0: एजेस बढ़ सकते हैं या एक्सपर्ट या एडवाइजर के रूप में इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं।
1: स्मृति जी, अब मेरे दिमाग में एक और प्रश्न ये आ रहा है कि किस तरह भारत के जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज है उसको मॉडर्न साइंस के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है।
0: देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है, नो डाउट, पर जहाँ हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात आती है वहाँ पर मॉडर्न होना बहुत जरूरी होता है। किस तरीके से मॉडर्न? क्योंकि जब तक हम फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग का एक क्वांटिटी के हिसाब से नहीं करेंगे वो ट्रेडिशनल नॉलेज में नहीं होगा। ट्रेडिशनल नॉलेज में कैसे होगा कि आप बीमार हैं, आप इस पत्ती को खा लीजिए या फिर उसका चूर्ण बना के खा लीजिए, साफ हो जाएगा। अपन देखते ही हैं कि तुलसी खा लीजिए, सर्दी होती है, कर्दों के, तो हम तुलसी को एक चाय में उबाल के पी लेते हैं, वो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है।
1: जी, जी।
0: पर अगर हम उसको साइंटिफिक वैलिडेशन और मॉडर्न साइंस से अगर जोड़ें तो हम उसको उस हर्बल प्रोडक्ट का लॉन्ग टर्म ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपायरी डेट तक कैसे यूज करें,
1: जी,
0: तो उसको हम वैलिडेट करें, उसको मतलब एक प्रॉपर क्वांटिटी में फॉर्मुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं,
1: जी,
0: तो उस ट्रेडिशनल नॉलेज से ही हम एक हेल्दी प्रोडक्ट डेवलप कर दें जो मॉडर्न साइंस कहलाएगा।
1: स्मृति जी, अगर मेडिसिनल प्लांट को हम ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं यानी कि इंक्रीजिंग डिमांड से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा?
0: मेडिसिनल प्लांट से बायोडाइवर्सिटी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत एक्सेस में अगर उसका यूज करें तो हाँ, हम उस एरिया में जाकर हम कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड कंडीशन में आ सकते हैं, पर हम इतना एक्सेस यूज करते नहीं है और कर भी नहीं सकते, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं या तो हर्ब होंगे या श्रब होंगे या ट्रीज होंगे, डिपेंड्स ऑन। तो श्रब होंगे तो वो अगेन ग्रो कर सकते हैं, ट्रीज होंगे तो ट्रीज की हम लोग अगर बार्क मतलब तो हम तना अगर यूज करेंगे तो वो अगेन ग्रो कर देगा तना, तो बहुत एक्सेस मात्रा में करेंगे तो ही वो एंडेंजर्ड कंडीशंस में आते हैं, अदरवाइज वो डाइवर्सिटी को कभी परेशान नहीं करता।
1: अच्छा स्मृति जी, आपके अनुसार 2047 तक भारत को प्लांट साइंस और हर्बल हेल्थ केयर का ग्लोबल लीडर के लिए क्या क्या किया जा सकता है?
0: ये तो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे अनुसार तो एक इंटीग्रेटेड नेशनल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हमको, जिसमें हम फार्मर को ऐसे सीड प्रोवाइड करें जो सर्टिफाइड सीड हो, और कुछ ऐसे जो सीड्स ना ग्रो करके एक प्लांटिंग मटेरियल के साथ अपनी कल्टीवेशन को प्रोसेस करते हैं, तो फार्मर्स को हम लोग एक सर्टिफाइड सीड और प्लांटिंग मटेरियल है वो उपलब्ध कराएं, उनके जो खेत हो छह कल्टीवेट कर पाए उनकी क्रॉप्स को। उसके अलावा हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो लागू किए जाने चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं उनको इविडेंस बेस्ड प्रमोट किया जाना चाहिए कि हाँ, मतलब इस पे क्लिनिकल ट्रायल किया तो उसका क्या बेस रहा, कितने उसमें मतलब कहीं ना कहीं इविडेंस को लेके रिसर्च को प्रमोट करें। कई और स्ट्रेटजी है जो ऑलरेडी अभी इस फॉर्म में है। भारत देश में कई बॉटनिकल गार्डन्स हैं पुराने पुराने, एक कलकत्ता में है रॉयल बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता, कई वैल्यूनरेबल प्लांट्स हैं, कई एंडेंजर्ड स्पीशीज है फ्लोरा की फना की, वो वहां से सेफली रिजर्व है, कंजर्व है। कई सीड्स जो है डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट उनको वहां प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो ये एक प्रोसेस जो है वो कई कई जगह पर है। पर इसके अलावा भी हमको जरूरत है कि हम इन फ्यूचर, चूंकि बढ़ती आबादी के साथ पॉपुलेशन के साथ, हम इनको किस तरीके से मैक्स टू मैक्स यूज करके बचा भी पाए।
1: स्मृति जी, प्रोग्राम के अंत में आप यूथ स्टूडेंट्स और आम नागरिकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: विकसित भारत 2047 में जो हमारा ये एक प्रयास है कि किस तरीके से हम प्लांट साइंस के थ्रू हमारी सोसाइटी को बेनिफिट कर पाए, कैसे हम क्वालिटी एक्सपर्ट बन पाए और कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न नॉलेज में कन्वर्ट कर पाए, कैसे हम लोग मिलकर प्लांट्स को सेव करें, कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और किस तरीके से हम उसी के द्वारा आगे बढ़े। सबसे निवेदन है कि प्लांट को केवल ग्रीनरी के रूप में न देखे, उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में ले जो हमारे बायोकोप या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी दैनिक दिनचर्या में बिल्कुल हेल्पफुल रहता है।
1: स्मृति जी, आपने विकसित होता भारत के परिप्रेक्ष्य में प्लांट साइंस और हर्बल हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, करियर अपॉर्चुनिटीज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बहुत अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाशवाणी के सभी लिसनर के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ, फ्रेंडली मैसेज ये है आपके लिए कि आप सभी अपने आसपास एक एक पौधा जरूर लगाएं।
1: जी,
0: थैंक यू।
1: बहुत अच्छी बात। श्रोताओं, आज की इस जानकारी से स्पष्ट होता है कि प्लांट साइंस केवल

0: प्लांट की स्टडी तक सीमित नहीं है, ये हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल के साथ देश प्रगति से भी जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे प्लांट साइंस एवं मेडिसिनल प्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति सोहानी जी से भेंटवार्ता। वाकई श्रोताओं, जब हम एक विकसित भारत का सपना साकार होते देखते हैं ना, तो इसकी मजबूत नींव हमारी मिट्टी और किसान से जुड़ी होगी। ये आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की पहली सीढ़ी है जिस पर आज का उन्नत व सशक्त भारत खड़ा होगा। और देश का वास्तविक विकास तभी संभव होगा श्रोताओं, जब हमारा अन्नदाता और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। श्रोताओं, विकास पथ पर वैसे तो कई योजनाएं एवं अभियान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन्हीं में से प्रमुख है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ये भारत सरकार का पर्यावरण जागरूकता और वृक्षारोपण अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी माँ के सम्मान और प्राकृतिक संरक्षण के को एक साथ जोड़ना है। श्रोताओं, इस अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 यानी विश्व पर्यावरण दिवस के पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, देश में हरित क्षेत्र और वृक्षों की संख्या बढ़ाना है। सभी श्रोताओं, आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तैयार कीजिए और आप भी जुड़िए एक पेड़ माँ के नाम अभियान से। इस अभियान की खूबसूरत बात यह है श्रोताओं कि पेड़ केवल लगाना नहीं है और ना ही ये पेड़ लगाने तक सीमित है, बल्कि पेड़ लगाने के बाद उसकी नियमित देखभाल संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, हम सभी अपनी माँ के साथ या उनकी स्मृति में पेड़ लगाएं, अपनी फोटो साझा करें और जुड़ जाएं इस अभियान से और आने वाली पीढ़ी के लिए एक हरित भविष्य दें। यकीनन श्रोताओं, जब विकास की रफ्तार विज्ञान की सोच के साथ मिलती है तो सपने हकीकत बन जाते हैं और देश ऊंचाइयों को छूता है। और जब विकास से जुड़ी हुई हरी भरी प्रकृति तैयार हो जाती है, तब एक ऐसा भारत बनता है जो आधुनिक भी है और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी। यही तो है श्रोताओं प्लांट साइंस की शक्ति, क्योंकि हर पौधा सिर्फ हरियाली नहीं है बल्कि जीवन, आजीविका और भविष्य की एक नई संभावना भी है। निश्चित ही श्रोताओं, हरित धरती, वैज्ञानिक सोच और समृद्ध किसान, यही है विकसित भारत की सच्ची पहचान। इसी संदेश के साथ आज का अंक यहीं समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। और अब दीजिए अनुमति अपनी श्रोताओं अब दीजिए अनुमति अपनी शालिनी सोनी को। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई सोच, एक नए अंक के साथ। जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजीव शर्मा की गई कुछ रचनाएं।

श्रोताओं, सुगम संगीत में अभी आपने सुना यह देशभक्ति गीत, जिसे गाया था राजीव शर्मा ने। आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजीव शर्मा की गई रचनाएं। लीजिए, सुनिए इन्हीं के स्वर में ये भजन।

नरेंद्र सिंह अकेला की गीत रचना अभी आपने सुनी, जिसे गाया था राजीव शर्मा ने। श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाई राजीव शर्मा की गाई रचनाएं। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गणपत सिंह चौहान और साथियों की गाए मालवी लोकगीतों को।

श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गणपत सिंह चौहान और साथ ही गाए मालवी लोकगीतों को। लीजिए, सुनिए इन्हीं के स्वर में अगली लोक रचना।

गणपत सिंह चौहान और साथियों के युगल स्वर में आप सुन रहे हैं मालवी लोक रचनाएं कार्यक्रम लोक संगीत में। लीजिए सुनिए इन्हीं के युगल स्वर में ये मालवी लोक रचना।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे गणपत सिंह चौहान और साथियों के गाए मालवी लोकगीतों को। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर ताशकंद पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायेव ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यता का जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री मिर्जियायेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापरोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। नेपाल में

0: भारी भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। मंत्रालय ने कहा कि शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूनों के विश्लेषण में सहायता हेतु भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञ दल आज काठमांडू पहुंचने वाला है। सुरंग बचाव के लिए एक विशेष तकनीकी दल कल काठमांडू पहुंचा। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत के तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि कितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक से सुधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेल स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे देवें।

प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारण होगा शाम 7:30 पर। सुर्खियों में, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही रिले होगा रात 8:00। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 8:15 पर। और सदाबहार फिल्मी की दुआ कार्यक्रम चित्रगीत होगा रात 9:15 पर। राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी रात 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित होगा रात्रि 10:00। ये था विवरण आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का।

अब विवरण कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। कल सुबह 7:20 पर योग निरोग कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद से जानेंगे प्रदूषण से होने वाली बीमारियां और प्राणायाम के द्वारा उनका उपचार। सुनहरे पल सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आएंगे सुबह 7:35 पर। कल के सितारे बच्चे हमारे ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 8:30 पर। लोक संगीत में प्रेम सिंह, मोहन सिंह, देपाल पुरिया के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:00। सुगम संगीत में वीणा पारिक की गाई रचनाएं हम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत में काला रामनाथन का वायलिन पर बजाया राग भटियार हम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी कल सुबह 10:00। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का प्रसारण होगा सुबह 10:05 पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम अनुप्रसारित होगी कल सुबह 11:00 से। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओ, हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे कार्यक्रम दोपहर 12:02 से। फिल्म संगीत संग्रहालय से कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा 12:30 पर। महिला कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा दिन में 1:00। लोक संगीत का अनुप्रसारण होगा 1:30 पर और संगम संगीत अनुप्रसारित होगा दिन में 1:45 पर। सांध्यकालीन सभा आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आरंभ होगी युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी से शाम 5:00। फिल्म संगीत कारण लीजिएगा 5:45 पर। सुगम संगीत में वीणा पारिक की गाई रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:30 पर। लोक संगीत में प्रेम सिंह, मोहन सिंह, देवपाल प्रिया और साथियों गाए लोक रचनाओं का आनंद लीजिएगा शाम 6:45 पर। वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट मैच का अनुप्रसारण होगा कल शाम 7:30 से। ये था विवरण कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, नक्सल प्रभावित रहे गांवों में विकास सर्वोच्च प्राथमिकता। अगले महीने की 8 तारीख से विदिशा में कैंसर मरीजों के लिए चिकित्सा महाविद्यालय में शुरू होगा डे केयर सेंटर। और प्रदेश के सभी जिलों में जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आज आयोजित किए गए विशेष शिविर, मौके पर सुलझाई गई समस्याएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 137वां एपिसोड कल 30 अगस्त को प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। वह देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बालाघाट जिले के पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे ग्राम बोंदारी पहुंचकर ग्रामवासियों से संवाद किया और क्षेत्र के विकास तथा ग्रामीणों की आवश्यकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान पशुपालन को बढ़ावा देने, आवास सुविधा, पोषण आहार के उपयोग की आदत विकसित करने के लिए जन जागरूकता अभियान, वन विभाग के सहयोग, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन सभी सुविधाओं को क्षेत्र में बेहतर ढंग से स्थापित करने और शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बालाघाट जिले के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से 225 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। इन कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में सामाजिक एवं मूलभूत अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा।
1: हमारा सबका संकल्प है, आज तक सरकार के नाते से मैं बता सकता हूँ हमारी सरकार का, कि नक्सल मुक्त बालाघाट हमारी उपलब्धि है। लेकिन अब अपनी अधिक उपलब्धि समृद्ध और आत्मनिर्भर बालाघाट बने, हमारा संकल्प है हर गांव में विकास, हर युवाओं को अवसर, हर परिवार की आय में वृद्धि, हर समाज को सम्मान। इसलिए सुरक्षित बालाघाट से समृद्ध बालाघाट और नक्सल से विकास की अवरुद्ध हुई धारा को नई दिशा देकर के समृद्धि की तरफ ले जाएंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा है, बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाषा, संस्कृति और सभ्यता में राष्ट्रीय गौरव किसी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और प्रगति को बढ़ाता है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है। आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं को सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कोई खास वृद्धि न वहन करनी पड़े। हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख के अनुसार गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस संशोधित कीमत सीएनजी और घरेलू एनजी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। हालांकि

0: मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निष्कर्ष सही तथ्य पेश नहीं करता। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगले महीने की 8 तारीख से विदिशा में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए डे केयर सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री और स्थानीय सांसद शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा में कहा कि 8 सितंबर का दिन विदिशा के लोगों के लिए बहुत विशेष दिन रहेगा। इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों के लिए डे केयर सेंटर का शुभारंभ होगा। श्री चौहान ने आज इसी की तैयारियों की समीक्षा की।
2: 8 सितंबर का दिन कैंसर के पेशेंट्स के लिए डे केयर सेंटर का शुभारंभ यहां होगा और हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी 8 सितंबर को यहां स्वयं पधारेंगे। उनके साथ श्री राजेंद्र शुक्ला जी जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी यहां आएंगे कि मेडिकल कॉलेज विदिशा और एम्स भोपाल के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU सम्पन्न होगा, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे।
0: प्रदेश में जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले विशेष शिविर आज आयोजित किए गए। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि अभियान के तहत आज लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के रांझी में करीब 2 घंटे तक विभिन्न शासकीय संस्थानों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानी। रायसेन के गैरतगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत देवनगर में जनसंवाद एवं शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल के आठनेर में क्लस्टर स्तरीय जन विश्वास शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवड़े ने ग्रामीणों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया। मुरैना के बानमौर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवास जिले में भी सुशासन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उधर खंडवा में भी कलेक्टर शणव गुप्ता की अगुवाई में शिविर आयोजित किए गए। आगरमालवा में जन विश्वास अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान एक निजी क्लिनिक सील किया गया। शिवपुरी दमोह झाबुआ सीहोर में भी जनविश्वास शिविर आयोजित किए गए। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल में रिमझिम बारिश के आसार हैं, जबकि इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में तेज बारिश की संभावना कम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को स्नेह सौहार्द और सामाजिक समरसता के लोक पर्व भुजरिया की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि भुजरिया पर्व हमारी समृद्ध लोक परंपराओं को प्रवाहमान बनाता है। उधर नर्मदापुरम जिले की पिपरिया में आज रक्षाबंधन और भुजरिया पर्व आयोजित किया गया। इसमें 1500 से अधिक महिलाएं पहुंची और सांसद दर्शन सिंह चौधरी को राखी बांधी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डीजे मोहंती ने जन समुदाय से बरसात के मौसम में संक्रामक एवं जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। एम्स भोपाल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उपचार, जांच, डिजिटल सेवाओं और मरीजों की सुविधा से जुड़ी कई नई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा कर

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीलेश जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
4: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
3: क्या, कैसे?
4: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
3: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
4: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: किसान भाइयों, समय का पहिया कितने जल्दी घूमता है। देखते ही देखते सावन का सुहाना महीना विदा हो गया और अब भादो यानी भाद्रपद लग चुका है। मानसून भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इंद्रदेव की कृपा से हमारी धरती माता की प्यास तो बुझी ही, साथ ही आने वाली रबी की फसलों के लिए भी जमीन में बढ़िया नमी जमा हो गई है। और भाइयों, इस समय खेतों का जो नज़ारा है उसे देखकर तो सचमुच छाती चौड़ी हो जाती है। चारों तरफ जो घनी हरियाली फैली है वो सिर्फ पेड़ पौधों की नहीं बल्कि आप सभी किसान भाइयों के पसीने और दिन रात की मेहनत की रंगत है। जब हवा चलती है और सोयाबीन मक्का के वे खेत लहलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी फसलें झूम झूम कर मुस्कुरा रही है। विदा होते हुए मानसून की इस हरियाली का आनंद लेना भी अपने आप में एक बड़ा उत्सव है। तो हरियाली का आनंद लेते हुए सुनते हैं सिद्धेश्वर सेन और साथियों का गाया ये प्यारा सा लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों, फसलें जब इतनी सुंदर खड़ी है तो हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। इस समय फसलों में फलियां और दाने बनने की शुरुआत हो गई है, इसलिए अब हमें खेतों में घूमकर अच्छे से उनकी देखरेख करना है। खेतों में कहीं भी खरपतवार न उगने पाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेनी है। आज बस इतना ही। अनुमति दीजिए नीलेश जोशी को। नमस्कार।

0: एसपी ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखवे और लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करवे को निर्देश दो। जे हते आज की बुंदेली समाचार। नमस्कार।
1: शिमला 600 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा।
2: किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: उसे 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता भैया बहनों को पहुंच जावे अंशु तिलेठे की नेह और स्नेह भरी राम राम। भैया हरो, किसान वाणी कार्यक्रम में आपोरण को खूब ही खूब स्वागत है। आज हम एक 9 अंक आपोरण के लाने लेके आए हैं किसान वाणी को। भैया हरो, जब बात आपोरे हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारी भारत सरकार नित नई योजनाएं देशवासियों के समृद्धि के लाने उनके हितन के लाने लात है, चाहे वह खेती किसानी की होए, चाहे वह हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कायना होए। सो उन्हीं में से आज हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में आपसे बात करन चाहूत हैं। जहाँ PMJAY योजना जिए आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, जहाँ भारत सरकार की एक बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ई योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों को हर साल अस्पताल में इलाज के लाने 5 लाख रुपया को मुफ्त या कैशलेस खर्चा मिलत है। ई योजना की कछु मुख्य बातें हम आप उनके संगे साझा करन चाहूते हैं। भैयारो, प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपया तक की कवर राशि माने 5 लाख रुपया तक को इलाज आप ई योजना के माध्यम से फ्री करा सकत हैं एक साल में। कोनो भी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालन में पैसा नहीं देने पड़त है ई योजना के माध्यम से। और परिवार कितो ही बड़ो काय ना होए, परिवार के सदस्यों की संख्या चाहे कितने ही काय ना होए, सभी को ई योजना को फायदा मिलत है। अस्पताल में भर्ती होबे को खर्चा, जांचें और दवाइयां सभी ई योजना के अंतर्गत शामिल हैं। जा योजना देश के गरीब और कमजोर परिवारन के लाने हैं। ई योजना को लाभ पावे के लाने आपको नाम, सामाजिक, आर्थिक, जाति, जनगणना SECC सूची में होबो जरूरी है। आप अपनो नाम ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पे जाके जांच कर सकत हैं। जा तो भैया हमने बात करी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, इको लाभ लो और स्वयं को स्वस्थ बनाओ। कार्यक्रम में आगे बढ़त है और आप सभी के मनोरंजन के लाने हम लेके आए हैं जा कजरी जिए गांव है बलराम रायकवार ने।

0: भैया हरो, अबे आपने जब मधुर सी कजरी सुनी, कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं। और जैसे कि आप औरन जानत हो कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप औरन तक नित नई जानकारियां पहुंचाऊ थे, सो ओई सिलसिला को आगे बढ़ात भय। आज हम आपके लाने स्थल रिकॉर्डिंग लेके आए हैं, कृषि में नवाचार विषय पे युवा किसानों और स्टार्टअप संचालकों से स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जब बातचीत। इनमें हमें रिकॉर्डिंग सहयोग करो है पूनम सरावगी बहन ने।
1: खेती में नवाचार आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बदलते मौसम, बढ़ती लागत और घटते जल स्तर के बीच पारंपरिक तरीकों से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। नवाचार से किसान कम संसाधनों में अधिक उत्पादन ले सकता है। यही नवाचार किसान को घाटे की खेती से निकालकर लाभ की खेती की ओर ले जाता है। विगत दिनों हमने बात की भोपाल में जमा हुए स्टार्टअप से मुनाफा कमा रहे किसानों और एक्सपर्ट्स के साथ। प्रस्तुत हैं इसी बातचीत के कुछ संपादित अंश। नवाचार अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाकर दूसरों को भी ट्रेनिंग दे रहे अशोकनगर से आए किसान राजपाल सिंह नरवरिया ने हमें बताया कि किस तरह से इन्होंने हार्वेस्टर में इनोवेशन के साथ ही मशीनरी में भी कई तरह के नवाचार किए हैं।
2: मैं किसान और इनोवेटर हूँ। मैंने कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए कुछ मशीनरी ईजाद की है, जिसमें मुख्य रूप से कंबाइन हार्वेस्टर है जो फसल कटाई के साथ साथ भूसा भी बनाता है, और वो उसको 5-in-1 किया। उससे कृषि से संबंधित हम अन्य काम भी कर सकते हैं, जैसे फसल कटाई, थ्रेसिंग, भूसा बनाना, सिंगल थ्रेसर, पशुओं के लिए कुट्टी, अनाज की सफाई। और इसके साथ एक हाइटेगरी पर बनाया है जो फसल कटाई के साथ साथ उसका ढेरी भी बनाता है, और जो 10-15% दाने झड़ते हैं उसको भी कलेक्ट करता है, जिससे किसान को अतिरिक्त लाभ होता है
3: जी।
2: और इसके साथ हमने एक गोबर के पॉट बनाने के लिए, इको फ्रेंडली पॉट बनाने के लिए एक मशीन ईजाद की है, तो उस गोबर के हम पॉट बनाते हैं, उससे पॉलीथिन मुक्त नर्सरी तैयार करते हैं। और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो हम पॉट साइज जमीन में रोप देते हैं, तो एक तो पौधा बचता है, माने पौधे के लिए खाद मिलता है और पॉलीथिन बचती है, पर्यावरण के लिए भी लाभ होता है, और इसके साथ साथ गौ संरक्षण का भी इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद मेरे और भी कृषि नवाचार हैं। एक मैंने ग्रेडर बनाया है, अनाज सफाई के लिए ग्रेडर है
3: जी।
2: वो 2-in-1 है। अभी तक जो एक तो महंगे होते थे ग्रेडर, इसके साथ उसका सिर्फ एक ही यूज होता है, अनाज की सफाई। जब हमारा ऑक्सीजन होता है तो हम पशुओं के लिए 2 से 5 सेकंड में अलग करके और उसके कूलर के रूम में पशुओं के लिए डेयरी फैन के रूम में यूज कर सकते हैं। तो ये किसानों के लिए इससे काफी फायदा होता है, पशुपालकों के लिए भी फायदा है, और अनाज साफ होने से मंडियों में अच्छा दाम मिलता है किसान को। इसके साथ मेरे एक कचरा पिकर है, जो महिलाएं आजकल गांव में कोई हाथ से गोबर और गंदगी उठाना नहीं चाहता, तो उसमें एक लीवर दिया है, जैसे हमारा वो होता है कचरा गोबर जो भी गंदगी, उसको हम हाथ से नहीं छूना पड़ता और उठा के हम अलग कर सकते
3: जी।
2: तो इसको हम पंचायतों में या जो महिलाओं के लिए हम उसको उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ मेरा एक वो है धान की खेत तैयार करने के लिए, क्योंकि धान बोने से पहले खेत को मचाना पड़ता है, गीला करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा यंत्र है, और उससे क्या होता है खेत तैयार करने में 40% समय और डीजल की बचत होती है, वो ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ता, किसान को परेशान नहीं होना पड़ता, वो काफी कारगर साबित हो रहा है किसानों के लिए। रिस्पांस अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसके लिए मुझे अभी तक मेरे नाम से 4 पेटेंट हैं भारत सरकार द्वारा 20-20 वर्ष के लिए, और जो मेरा कंबाइन हार्वेस्टर है उसे भारत के 25 ग्रामीण प्रभावशाली आविष्कारों की सूची में स्थान मिला है, और इसके लिए कृषि मंत्रालय ने एक किताब भी लिखी है, 10-12 जो नेशनल लेवल की मैगजीन, उसमें सफलता की कहानी प्रकाशित हुई है। और इसके साथ ही मुझे अभी तक पूरे देश भर से 100 से अधिक पुरस्कार अवार्ड मिले, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति भवन से नवाचारी इनोवेटर का वो अवार्ड मिला, और इसके साथ साथ जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड ICR का, ऐसा करके मुझे फार्मर फेलो, बहुत सारी जो कृषि यूनिवर्सिटी उन्हें भी सम्मानित किया
3: जी।
2: थोड़ा समझाने पड़ता है, नई चीज है तो पहले पता नहीं होता, फिर जब उसका तारीफ देखते ना तो किसानों को स्वतः समझ में आता है।
1: हरदा से आए युवा किसान अमन अग्रवाल चिया मोरिंगा की खेती करने का प्रयास कर डाइवर्सिफाइड खेती कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं।
4: मैं किसान का ही बेटा हूँ, मेरी 11वीं 12वीं की पढ़ाई भी एग्रीकल्चर में ही रही, उसके बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, और अभी MBA भी मेरा एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन में है। तो मेरे पूरे 17 राज्यों की मैंने ट्रेवल किया और खेती किसानी सीखी। इसके अलावा मैं स्विट्जरलैंड इटली भी रहा कुछ समय अलग अलग संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों के माध्यम से। तो अभी हम लोग चिया की खेती, मोरिंगा की खेती, थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड खेती

0: करने का प्रयास हमने किया है अपने, जैसे कि हमें कहीं ना कहीं खेती में नुकसान दिखता था कि एकदम से बारिश आ गई या कई सारी ऐसी चीजें हुई तो नुकसान होता था, तो हमने सोचा कि डाइवर्सिफाइड खेती, जो भी मैंने इतने सारे ट्रैवल किया और किसानों से, साइंटिस्ट से, प्रोफेसरों से सीखा, तो हमें चिया की खेती, जैसे गेहूं में हमें 40 से 50 हजार रुपए एकड़ की आमदनी हो रही थी, चिया से हमें 80 से 90 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक की, अभी हमने 17 हजार रुपए क्विंटल में अपना चिया बेचा है 5 एकड़ का। तो इस तरह से जब हम डाइवर्सिफाइड खेती करते हैं, उस साल भी ओलावृष्टि हुई थी, हमारी 6 फसलें थी हमारे पूरे खेत पे, तो उसमें से 4 फसलों ने अच्छा परफॉर्म किया, 2 फसलों पर नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोग नुकसान में नहीं गए उस कारण। जैसे कि पहले हमें नीमच बेचना पड़ता था, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जो औषधि फसलों और इस तरह में, अभी खातेगांव भी नोटिफाई हुआ, तो अभी मेरा निवेदन भी माननीय मंत्री जी से यही था कि अगर इस तरह की और मंडियां होंगी और डाइवर्सिफाइड खेती होगी तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें डाइवर्सिफाइड खेती से और आमदनी कमा पाएंगे, फूड प्रोसेसिंग से कमा पाएंगे। तो चिया ही नहीं, और भी जैसे मोरिंगा है, अश्वगंधा है, अकरकरा है, या फिर फ्रूट क्रॉप से हॉर्टिकल्चर है, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अपने खेत पर, छोटे छोटे प्लॉट्स पर, और ये डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। इससे हमें कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट करने को मिलता है। हम युवा किसानों को यही संदेश है कि अभी हमें एनर्जी है, आप ट्रैवल कीजिए, बहुत सारी जगहों पर जाइए, अलग अलग किसानों से सीखिए। जैसे अभी मैं सीमैप लखनऊ गया था, इस तरह से कई सारे रिसर्च सेंटर है वहाँ पे युवा किसान नहीं जा रहे हैं, तो आप अलग अलग रिसर्च स्टेशन, अच्छे किसानों से मिलिए और खेती सीखिए और करिए।
1: भोपाल के हर्षित गोदा ने इंडो इजराइल एवोकाडो की व्यावसायिक खेती शुरू की। पिंगटन ओलंपस जैसी गर्मी सहन करने वाली किस्मों की सफलता पूर्वक खेती करते हैं।
2: नमस्कार सभी को, मैं भोपाल में इसराइल की तकनीक से एवोकाडो की खेती कर रहा हूँ। मैंने इसका काम 2017 में इसराइल से सीखा था, इसका काम मैंने फिर 2021 में भोपाल में शुरू किया था। 5 साल अभी एवोकाडो इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गया है। हाल ही में मैंने अभी एक इसराइल की सबसे बड़ी एवोकाडो एक्सपोर्टिंग कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया है और मैं अब उस कंपनी का CEO हूँ। और हम लोग जॉइंट में मेरे जितने भी नेटवर्क के किसान हैं जिनको मैंने एवोकाडो के पौधे प्रोवाइड किए हैं, उनसे हम फ्रूट बायबैक करके इंडिया में अंडर कॉमन ब्रांड उसको सेल करेंगे। मैं पिछले 5 साल से 4 साल से करीबन 1 करोड़ रुपए टर्नओवर सालाना कर रहा हूँ। मेरे फार्म पे यूजुअली कस्टमर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने कोर्सेज की अपनी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें एवोकाडो से रिलेटेड आप कोर्सेज पढ़ सकते हैं, मेरे स्टडी कर सकते हैं, फील्ड पे एवोकाडो लगा सकते हैं। मैंने करीबन 18 राज्यों में 17-18 हजार प्लांट सप्लाई कर चुका हूँ अभी तक के। एवोकाडो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एप्पल जो फ्रूट है वैसी इंडस्ट्री बन जाएगा अगले 20 सालों में। एवोकाडो लगाइए, हमसे प्लांट्स लीजिए, हमारी नर्सरी विजिट कीजिए।
1: प्रदेश के गुना में गुलाब की खेती का नवाचार कर रहे किसान यशवर्धन भार्गव ने भी हमसे अपने विचार साझा किए।
3: मैं गुलाब की खेती और ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहा हूँ। गुलाब की खेती एक अभी नया नवाचार है। अभी जो हमारे इधर ट्रेडिशनल खेती होती थी उससे हटके जो किसान सोचता था कि 1 बीघा या 1 एकड़ में जो उत्पादन उसको नहीं मिल पाता था, लेकिन अगर वो अपनी खेती को शिफ्ट करेगा और इन नवाचारों की तरफ जाएगा तो ऐसी गुलाब की खेती हो गई और विभिन्न प्रकार के जो एक्सोटिक फ्रूट्स हैं उनकी खेती में उसको ज्यादा लाभ हो रहा है। तो जो उत्पादन 1 बीघा जमीन में अन्य किसी फसल से हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन और मुनाफा गुलाब जैसी खेती से किसान को हो सकता है। इसमें मार्जिन जो है वो 60 से 70% तक मार्जिन इसके अंदर है। इसमें डच रोज हम लोग उगा रहे हैं, ब्लैक रोज की खेती हम लोग कर रहे हैं, ये 2 रोज और 1 जरबेरा की भी अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ये 3 तरह के फूलों की खेती हम अभी कर रहे हैं। हमने गुलाब की खेती 2022 में शुरू कर दी थी। गुना जिले को अभी केंद्र सरकार द्वारा गुलाब की खेती के लिए स्कॉच अवार्ड भी दिया गया है। गुलाब की मांग भारत से ज्यादा दूसरे देशों में, अभी जो हमारे गुना से गुलाब एक्सपोर्ट होता है वो हम यहाँ से जयपुर भेज रहे हैं और जयपुर से लॉजिस्टिक्स के थ्रू वो पूरे UAE, दुबई और कुवैत एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, नई नई वेराइटीज अब इसमें काम चल रहा है। हम तो एक टिश्यू कल्चर लैब से हमारी चर्चा हुई है, तो वहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं कि और नई नई जो प्रजातियां गुलाब की हैं उसको हम मार्केट में लाएं, तो जैसा जैसा डिमांड रहता है उस हिसाब से फिर हम चीजों को ग्रो करते हैं। जैसे अभी जो हम किस्म गुलाब की कर रहे हैं वो 15 से 20 दिन तक अगर उसको आप ठंडे टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है, और एवरेज नॉर्मली 7 से 8 दिन तक वो खराब नहीं होता है। तो हम जैसे यहाँ से अगर उसको जयपुर भेज रहे हैं सपोज कीजिए, तो 1 दिन में वो जयपुर पहुंच जाता है और अगले दिन जयपुर से वो कुवैत, दुबई, अन्य मिडिल ईस्ट के देशों में वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। हम पॉली हाउस में बेड्स बना के और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उसमें हम गुलाब कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा एक हमारी वहाँ पे गौशाला है, तो वहाँ से जो हमारा गोबर का खाद वहाँ पे मिलता है वो मैन्योर के द्वारा हम वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती और सस्टेनेबल खेती हम वहाँ पे कर रहे हैं। मैं गुलाब किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा युवा आज की तारीख में नौकरियों की तरफ दौड़ रहा है, कॉर्पोरेट जगत की तरफ दौड़ रहा है और अपनी घर की खेती छोड़ के यह सोच के कि इसमें कोई लाभ नहीं है, तो हमारा जो कल्चर है वो एक्चुअल में एग्रीकल्चर है और हम उसको अगर छोड़ देंगे और हमारी नींव अगर टूट जाएगी तो हमारे देश में जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। और जो युवा को लाभ नौकरी रह के कॉर्पोरेट लेबर बनने में, उससे ज्यादा लाभ मालिक बन के आप खुद की खेती करें और उसमें आप नए नए नवाचार लाएं, तो आपको उसमें इसमें बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पे मिलेगा।
1: एग्री स्टूडेंट एंड एग्रीप्रोन्योर अभी हनी और मशरूम का उत्पादन करते हैं और इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं।
4: जो मॉडर्न एग्रीकल्चर जो चल रहा है, हाइड्रोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग, उसको एक प्लेटफॉर्म पे उतारने की कोशिश

0: करिए जिससे नए जो बच्चे हैं, नए जो युवा हैं जो कृषि के आधारित पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, या जो किसान हैं जो सीमित जानकारी के अभाव में बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, जैसे गेंदे की जो रोपाई है या मधुमक्खी पालन में जो आने वाले चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस करे हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा फेस नहीं करे। इसके लिए मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर कृषि स्किल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इंदौर में ओपन किया है, जिसका मेन विज़न जो टेक्नोलॉजी है उसको आसान भाषा में किसानों और युवाओं को समझा सकूँ और उनसे उस माध्यम से जो आधुनिक कृषि हो रही है वो खेती करवा सकूं, ये मेरा विजन है। मैंने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर की जर्नी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का व्यवसाय चालू करा, जिसमें स्टार्टिंग से ही मैंने पॉलिनेशन में अभी 18 वैरायटी का हनी हार्वेस्ट करता हूँ, जो राजस्थान, गुजरात और एमपी के जिलों से निकाला जाता है। एमपी में प्रतापगढ़ जो अजवाइन का बेल्ट रहा है वहाँ से मैं अजवाइन की खेती का शहद लेता हूँ। तुलसी का शहद मैं जो सावरिया सेठ हमारे यहाँ पे है राजस्थान में, वहाँ से लेता हूँ, भदेसर से। तो वहाँ से डाइवर्सिटी का फ्लोरा है जब मैंने देखा तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे मैंने बीकीपिंग की शुरुआत करी। साथ में मैंने ऑब्जर्व किया कि मशरूम फार्मिंग आज एक इंडोर प्लेटफॉर्म बन सकता है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कुछ साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं आज की तारीख। मैंने मेरी शुरुआत में 5 बक्सों से मधुमक्खी पालन की शुरुआत करी थी। शुरुआत में तो बहुत सारे फेजेस मैंने फॉलो करे जिसमें मेरे को नुकसान भी बहुत हुआ, और मैंने जो पहला जो मेरा है हनी से इनकम नहीं किया, मेरा पहला इनकम मेरा पोलन से था, पोलन और प्लस मैं पोलिनेशन के लिए बॉक्सेस देता था। जैसे बागवानी फसलों में मधुमक्खी का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, अगर उसमें पोलिनेशन प्रॉपर नहीं होता है तो उससे लॉसेस होते हैं। तो मैंने फार्मर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड जिसमें बी कीपिंग के जो बॉक्सेस थे वो मैंने उनको रेंटल पे दिए, और मैंने पहली इनकम मेरी हनी से हार्वेस्ट नहीं करी, मैंने पॉलिनेशन से 70% इनकम हार्वेस्ट करी और 70,000 रुपए की नेट इनकम पहले राउंड में कमाई। आज मेरा मधुमक्खी पालन जो 5 बॉक्सों से चालू होकर 300 बॉक्सेस पे चले गया और 3 राज्यों में मैं अभी मधुमक्खी पालन ही कर रहा हूँ, जिससे 18 वेराइटी के हनी हार्वेस्ट हो रहे हैं। अभी मेरे को ओनली ऑन हनी से कम से कम 20 लाख के समथिंग का प्रॉफिट हुआ है, जिसको मैंने यूटिलाइज करा और मैंने मशरूम फार्मिंग में मेरी खुद की लैब डाली है। जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं मशरूम का एक सीड बनाऊं, जिसके लिए मैं शिमला सोलन में जो डीएमआर रिसर्च सेंटर है वहां पे तक गया और वहां से चीजें सीखने के बाद इंप्लीमेंट की, और आज मैं मशरूम की सक्सेसफुल खेती कर रहा हूं, साथ में उनका माल भी खरीद रहा हूं और ट्रेड भी कर रहा हूं। तो आप भी मेरे जैसे युवा हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आके सीख सकते हैं मेरे साथ सीख के, क्योंकि मैंने भी जो शुरुआत करी थी बहुत छोटे से करी थी।
1: IITN अरविंद पाटीदार ने भी हमसे प्याज के भंडारण से जुड़ी समस्याओं के समाधान साझा किए।
2: मैंने अपने स्टार्टअप की बुनियादी जो नींव है वो रखी थी, जिसमें मैंने ऑनियन स्टोरेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है फार्मर को उसका सलूशन प्रोवाइड किया था, जिसमें आर्टिफिशियल नोच अपनी नोच की तरह काम करती, जो फार्मर को 15 से 20 दिन पहले अपना जो स्पॉइलेज होता है उसका स्टोर में उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता। इसका मेनली है कि फार्मर जो छोटे फार्मर है और जो लार्ज स्केल पे अपना ऑनियन प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेडर जो स्टोर में रखते हैं, इन सभी को जो ऑनियन की फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, जो प्याज की फार्मिंग से जुड़े हुए फार्मर है उनको और जो ट्रेडर है उनको फायदा होगा, क्योंकि वो अपने स्टोर में जो हार्वेस्टिंग के बाद से प्याज को रखते हैं, कुछ जो ड्राई पीरियड होता है बारिश का सीजन इसमें कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हमारा स्टोर में ऑनियन जो प्याज है वो खराब हो रहा है या सही हो रहा, उसमें क्या कंडीशन है अंदर की। तो उसी कंडीशन को हमारा जो डिवाइस है फार्म IoT का वो एनालिसिस करता है, उसके बाद वो फार्मर को और ट्रेडर्स को जो भी स्टोर करता है उनको इन्फॉर्म करता है कि आपके प्याज की कंडीशन क्या है, और इसी के तहत वो मार्केट का अच्छे से अच्छा प्राइस ले सके और ये सुविधा प्रोवाइड करता है। इसमें खर्चा की बात किया जाए तो फार्मर को 20 से लेकर 25 हज़ार का खर्च होता है 100 क्विंटल के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg को स्टोर करने के लिए 1 रुपये का खर्च होता है। और यदि इस बार की 2026 की बात किया जाए तो जब फार्मर ने अपने स्टोर में इसको लगाया था तो उसके बाद 10 रुपये प्राइस था और आज उसका 40 रुपीज़ प्राइस आ रहा है पर केजी के हिसाब से, तो वो एक प्रॉफिट का सौदा हुआ फार्मर के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी क्रॉप है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है।
1: काशी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर के फाउंडर कार्तिकेय मंडलोई पर्ल की खेती करते हैं और ट्रेनिंग देकर अन्य लोगों को भी एग्रीप्रेन्योर बनाना चाहते हैं।
3: मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एग्रीप्रेन्योर लोगों को बनाएं। हम जैसे युवा और जो लोग मिलके कुछ करना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर खोला है इंदौर में, जिसमें मोती की खेती, मशरूम की खेती और ऐसे बहुत तरीके की अलग अलग खेती हम लोगों ने एक ही रूफ के नीचे रखी है इंदौर में, और हम इस चीज़ को और आगे बढ़ा के और नए नए युवा लोगों को इस चीज से रोजगार देने की प्रयास कर रहे हैं।

0: ताकि लोग आए, उस चीज को सीखें और अपना नया खुद का बिजनेस चालू करें। और हम ये भी चाहते हैं कि एक इंसान जब खुद आगे आता है तो दूसरे और 5 लोगों को लेके भी आगे बढ़ सकता है। मैम, मोती की खेती के ये फायदे हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे पास बहुत बड़ा पॉन्ड होना चाहिए, बहुत बड़ी चीजें होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग टंकी में भी चालू कर देते हैं। एक नॉर्मल वाटर टैंक की बात करूँ तो मैक्सिमम 2000 स्क्वायर फीट, हम लोग ने जब लोगों को ट्रेनिंग करवाई थी तब लोगों ने इससे चालू करते हुए 200 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट से भी कम जगह में मोती की खेती करी है। लोग बोलते हैं कि मोती की खेती में कितने पैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, वो भी आपको सेटिंग में बता दिया जाएगा। हम लोग अभी मोती की खेती को ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग उसकी खेती भी कर रहे हैं, जिनसे हम लोग बायबैक कर लेते हैं। मैम, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कभी बंद नहीं होती है। जैसे कि देखी जाए तो मोती आज हर किसी की डिमांड है, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और बहुत आगे तक प्लानिंग बहुत अच्छी है।
1: देसी माटी एग्रीटेक एंड टेक्नोलॉजीज के दीप्तिमान ने भी हमसे अपने विचार साझा किए।
2: हमारी शुरुआत 2016 में खेती से हुई। हम कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम की काफी लार्ज स्केल पे खेती करते हैं और हमारा खुद का सप्लाई चेन है जो कि अक्रॉस इंडिया है, जिसमें हम बेसिकली जितने भी मॉडर्न ट्रेड है, ई कॉमर्स है, लाइक ब्लिंकिट है, रिलायंस फ्रेश है, उनकी पूरी सप्लाईज हम काफी सिटीज में, 4-5 सिटीज में मैनेज करते हैं। प्लस हमारा खुद का D2C प्लेटफॉर्म है और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है हम डायरेक्ट फार्मर से वो उगवाते हैं। हम फार्मर को खेती करना भी सिखाते हैं कि किस तरह से उगाया जाए, किस सीजन में क्या उगाया जाए और उसको क्या बेस्ट प्राइस में बेचा जा सकता है, उसमें भी हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा मेजर इन्फ्लक्स पॉइंट है। अब हम लोग जो है D2C में ही हमारा मेजर फोकस है, जिसको हम लोग स्केल करना चाहते हैं और हम लोग डायरेक्ट बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। जो भी पब्लिक डिमांड है उसको फार्मर से हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसके अंदर हमने बहुत सारा टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन किया हुआ है ताकि एक्चुअली जो पिलफरेज होते हैं, क्योंकि ये सब कच्चा माल होता है हमारा, मेनली हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डील करते हैं, तो उसकी पिलफरेज को कैसे कम किया जाए, कैसे उसको और ऑप्टिमाइज किया जाए, सप्लाई चेन को, वेस्टेजेस को मिनिमाइज किया जाए, उसके ऊपर हमारा फोकस है। तो हमारी खुद की इनहाउस टेक टीम्स है जो रिलेंटलेसली इस पे काफी काम कर रही है। इनफैक्ट उसके अलावा हमने फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया फार्मवेयर के नाम से, जो टिपिकली फार्मर को प्रॉपर गाइडेंस देगी कि कब किस सीजन में क्या उगाना है, क्यों उगाना है, क्या स्पेसिफिक यील्ड आ सकते हैं। और हमारा जो मेजर फोकस है वो है रेसिड्यू फ्री, क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनिक की लोगों के अंदर बहुत वो है कि उन्हें ऑर्गेनिक फूड चाहिए है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनिक फूड कमर्शियल स्केल पे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो मेजर हमारा फोकस एरिया होना चाहिए कि फ्रूट का या वेजिटेबल का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए एंड वो रेसिड्यू फ्री होना चाहिए, कि उसमें कोई हार्मफुल केमिकल ना हो जो कि ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर सके। सो ये हमारा मेजर इंफ्लक्स। तो किसानों को हम ये बताते हैं कि लेट्स अज्यूम जैसे आज हम अगस्त के महीने में खड़े हैं, अब कोई किसान कोई फसल लगाना चाहता है इस समय तो क्या ऑप्शन है उसके पास, अगर वो मोटी फसलें करना चाहता है, वो सब्जी करना चाहता है, वो फल करना चाहता है, तो कौन कौन से वायबल ऑप्शन है, कितने समय में वो होगा, उसमें क्या लागत आने वाली है, उसमें समय टू समय कौन से उसको स्प्रे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, वो सारी चीजें हम उनको टेक्निकली गाइड करते हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसलिए है क्योंकि देखिए यही वो किसान है जो हमारे सप्लाई चेन से जुड़ेंगे और आपके घर तक वो अच्छी चीजें पहुंच सकती है, जिसकी हम हर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है कि भाई हमें बेस्ट ऑफ द फूड मिले। किसानों को संदेश मैं यही देना चाहता हूं कि नई तकनीकों को अपनाएं, उससे आपके यील्ड बढ़ेंगे। आपको और एक्सप्लोर करना है, आपके पास इतना सारा आज की डेट में डेटा है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, छोटे ट्रायल करें। क्या होता है, लोग घबराते हैं एकदम से बड़े रकबे में जाने से, 50 डेसिमल कीजिए, 20 डेसिमल कीजिए, लेकिन उसको करिए, अच्छे से सीखिए।
1: किसानों की ट्रैक्टर खरीदने से लेकर उसे बेचने तक की हर समस्या का समाधान दे रहे हैं ट्रैक्टर ज्ञान के शिवांकुर गुप्ता।
3: पूनम जी, मेरा जो काम है, मेरा स्टार्टअप है tractorgyan.com, हमारा वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम किसानों को जो है वो ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट की जानकारी देते हैं। मान लीजिए कोई किसान है जिसको नया ट्रैक्टर लेना है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अलग अलग ट्रैक्टरों की पूरी स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, वो सब चेक कर सकता है। अगर उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे ये ट्रैक्टर लेना चाहिए, ये ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो उसमें कंपैरिजन का भी फैसिलिटी है। इसके अलावा किसान जो है अपना पुराना ट्रैक्टर हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो दूसरी जगह के किसान होते हैं वो आपस में जो है वो आपस में बात कर सकते हैं, इसका हम कोई भी किसान से कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। तो पुराना ट्रैक्टर खरीद और बेचने की भी सुविधा हमारे प्लेटफॉर्म पे है। इसके अलावा जो है वो जो औजार आते हैं जो ट्रैक्टर के पीछे, जैसे कल्टीवेटर लगता है, रोटावेटर लगता है, हार्वेस्टर अलग मशीन होती है, इन सभी मशीन्स की भी हमारे प्लेटफॉर्म पे पूरी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। रिस्पॉन्स हमें बहुत जबरदस्त मिलता है। पिछले 10 सालों से ये ट्रैक्टर ज्ञान मैं चला रहा हूँ। अगर पिछले साल की बात करें तो हमारा टोटल 78 करोड़ से ज्यादा इंप्रेशन था और लगभग 4,30,000 से ज्यादा किसानों ने हमारे प्लेटफॉर्म पे लीड जनरेट किया था। मतलब उनको कुछ ना कुछ तरीके से जानकारी चाहिए थी, किसी को ट्रैक्टर के बारे में, किसी को टायर के बारे में, किसी को कृषि यंत्रों के बारे में। तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स है। टोटल हमारे अगर सोशल मीडिया की बात करें तो 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग है। हमारे प्लेटफॉर्म पे हर कुछ दिनों में हम लोग नई

0: चीजें लेके आते रहते हैं। आने वाले दिनों में हम बहुत सारी नई भाषाओं में, अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है, भी और लैंग्वेजेस में भी आने वाले हैं।
1: नवाचार के बिना खेती में तरक्की संभव नहीं है।
2: भैयारो अब अपन ने जा स्थल रिकॉर्डिंग सुनी, जी में हमें रिकॉर्डिंग सहयोग मिलो तो पूनम सरावगी को। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कछु मौसम आधारित सलाह आपके लाने लेके आए हैं। सुबह हम आप और उनको बता देते हैं। भैया हरो, हल्दी अदरक और अरबी के लाने खेतन की तैयारी पूर्ण कर ले। संगे संगे भैया हरो, खरीफ फसलन की सब्जियन के लाने और कद्दू वर्गीय फसलन के लाने जा सलाह दी जाते है कि समय पे निराई गुड़ाई एवं अन्य अंतरवर्तीय कृषि कार्य संपन्न कर ले और कद्दू वर्गीय फसलन की बेलन को सहारा दे। लौकी कद्दू खीरा करेला एवं तुरई जैसी फसलन की बुवाई के लाने उठी भई क्यारियां तैयार कर ले और बुवाई से पूर्व गोबर की सड़ी खाद एवं उर्वरकन की अनुशंसित मात्रा खेत में जरूर मिलाएं। तो भैया हरो अब आज्ञा दो अपनी अंशु बहन को और स्वीकारो हमारी नेह और स्नेह भरी राम राम।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं और यात्रा के दूसरे चरण में 31 अगस्त और 1 सितंबर को वे किर्गिज गणराज्य जाएंगे और बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। क्या है इस यात्रा के विभिन्न पहलू, क्या है उनका महत्व भारत के लिए, किस तरह से ये हमें लाभान्वित करेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार और ताशकंद से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। आप दोनों का, एम्बेसडर सज्जनहार और सुशील जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: जी बहुत धन्यवाद सोनू जी, मुझे आमंत्रित करने।
2: सुशील जी, आप ताशकंद में अभी हैं, हमें बताएं कि किस तरह का वहाँ माहौल है, किस तरह का उत्साह है और वहाँ पर किस तरह की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा जो वो उज़्बेकिस्तान में कर रहे हैं।
4: जी देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह तो जबरदस्त है क्योंकि उज़्बेकिस्तान में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं और उनमें भी लगभग एक मेजोरिटी आप कहें

0: कि मोस्टली जो है वो छात्र हैं, बड़ी संख्या में युवा हैं, जेंजी हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। दो दिनों से हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग बहुत उत्साहित है, छात्र, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मा कंपनियों में काम करने वाले लोग, तो भारतीय समुदाय बहुत उत्साहित है, लेकिन साथ के साथ उज्बेकी समुदाय भी काफी उत्साहित है। यहाँ के लोग भारतीयों से एक तरीके से कहें तो बेहद ही दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, भारतीयों से एक अपना रिश्ता महसूस करते हैं जो कि सदियों पुराना है। सिल्क रूट की वजह से भी पहले के जमाने में लोगों का आना जाना बहुत होता था, और बॉलीवुड फिल्मों, बॉलीवुड के गानों, बॉलीवुड के सीरियल्स, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत के सीरियल की भी बहुत ज्यादा यहाँ पर लोकप्रियता रही है। हमने बहुत से लोगों से हिंदी गाने गुनगुनाते हुए सुने और लोगों से बातचीत की, तो यहाँ पर चारों तरफ होर्डिंग्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री जी के और बैनर्स लगे हुए हैं, तिरंगा लहरा रहा है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है।
1: तो आपने तो हमें भी उत्साहित कर दिया एम्बेसडर सज्जन ठाक। अगर मैं आपसे थोड़ा सा और ब्रॉडली पूछूं, मध्य एशिया का भारत के लिए क्या महत्व है, अगर आप संक्षेप में हमें बता सके।
2: जी बहुत धन्यवाद सुनो जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी
2: आपने देखिए बिल्कुल ठीक कहा है, ये चौथी यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान में, और वो पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो पांचों देशों की यात्रा कर चुके हैं। 2015 में अगर देखा जाए, एक साल के बिल्कुल बाद जब वो सत्ता उन्होंने संभाली थी, तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहला देश जो वो गए थे वो 2015 जुलाई में उज्बेकिस्तान था, उसके बाद कजाकिस्तान और फिर तीनों और देशों में भी। तो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि सुशील जी ने अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया, जो वहां पर हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। अगर देखा जाए सम्राट अशोक के समय से ये पूरा जो मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है, ये सम्राट अशोक के राज्य में ये मिलता था। और अगर देखें तो यहाँ से सिल्क रोड का न केवल जिसे कहा जाए गुड्स, बट आइडियाज, फिलोसफी, थॉट और बुद्धिज्म भी यहाँ से ही निकल कर चीन के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचा। परंतु जब से आजादी मिली है इनको सोवियत संघ से 1991 में, तब से हमारे जो संबंध हैं इतनी तेजी से आगे नहीं उभर पाए हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है जिसे हम कहा जाए कनेक्टिविटी, जिसे हम कहें जो हमारे इनसे लैंड बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं।
1: जी
2: जो ये सब देश जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से इन देशों की जो है, इससे पहले भी इन देशों की शक्ति बढ़ती जा रही है, और इन्होंने, ये पांचों देशों ने पहली बार 2018 से कहा जाए अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना शुरू किया है। और हालांकि इससे पहले बहुत ही ये निर्भर थे चीन पर और रूस पर, अब वो चाहते हैं जो और देशों के साथ भी इनके जो संबंध हैं और भी सुदृढ़, और इसमें भारत चाहे अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे अपने आर्थिक व्यवस्था के लिए, यहाँ पर इन देशों के पास तेल, गैस, यूरेनियम और जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थों का बहुत ही बड़ा भंडार है, तो वो हम इनको इनसे कैसे ले सकते हैं। और हमारी जो शक्ति है, चाहे ट्रेड हो, निवेश हो, फिनटेक हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रीन एनर्जी हो, इन सब क्षेत्रों में हम इनमें कैसे, इनके साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि ये देश भी चाहते हैं जो अपने दायरे से बाहर निकलकर और देशों के साथ सहयोग को आगे ले जाए।
1: एम्बेसडर सज्जन हर, प्रधानमंत्री ने जब वो जा रहे थे उससे पहले कहा कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ वे व्यापार और निवेश, जैसे आपने कहा डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। तो किस तरह के आपको लगता है कि आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, किस तरह के विषयों या कहें कि क्षेत्रों में समझौते जमीनी तौर पर होने की उम्मीद है आपको?
2: देखिए सोनू जी, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो जो है बायलैटरल रिश्ते, द्विपक्षीय सहयोग जो है भारत का और उज्बेकिस्तान का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, वहां पर तीन बड़े बड़े भारतीय विश्वविद्यालय उज्बेकिस्तान में हमने एस्टैब्लिश की है। एक तो एमिटी यूनिवर्सिटी की है, एक शारदा यूनिवर्सिटी की है जो है, और वहां पर हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है, इसमें फरगना वैली अंदिजान के क्षेत्र में, जहां से आपके सुनने वालों को याद होगा जहां से बाबर यहां पर भारत में आया था 1526 में, उसी क्षेत्र में हमने शारदा यूनिवर्सिटी का एक एस्टैब्लिशमेंट किया है। उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई है ताशकंद में, और एक और यूनिवर्सिटी

0: ब्राम यूनिवर्सिटी वो भी वहां पर एस्टैब्लिश की गई है। तो एक तो जो द्विपक्षीय संबंध हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो,
1: जी
0: एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये सब क्षेत्र हैं जिनमें हम उज्बेकिस्तान के साथ सहयोग कर सकते हैं।
1: जी
0: दूसरा परिपेक्ष सोनू जी है भारत का और मध्य एशिया के देशों का, और इसमें मैं बताना चाहूंगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल ली गई थी 2022 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जिसे कहा जाता है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट लेवल पर, मतलब वहां के पांचों देशों के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने वर्चुअली एक समिट ऑर्गेनाइज किया था। उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और उसमें ये बात तय की गई थी जो इस समिट का आयोजन किया जाएगा हर साल 2 साल
1: जी
0: के बाद, और 2022 के बाद अभी तक बहुत कारणों की वजह से ये अभी तक दूसरा समिट, दूसरा शिखर सम्मेलन हम नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं जो अगर अपने संबंधों को हमने और आगे गति देनी है, तेजी लानी है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इस शिखर सम्मेलन को हमें आयोजित आगे जल्दी करना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री मोदी की
1: जी
0: मुलाकात होगी शौकत मिर्जाएव से ताशकंत में और नेताओं से बिश्केक में, जिसका आपने जिक्र किया वहां पर 26वां एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो हमको ये द्वितीय शिखर सम्मेलन को भारत में आयोजित करने में इसको और गति मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी, और
1: जी
0: वो हमारे रिश्तों को एक नए सतह पर, एक नए लिमिट की तरफ और लेकर जा सकते।
1: बिल्कुल सुशील जी, अगर आपके पास आए इससे पहले कि हम बिश्केक में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो होने वाला है समिट, उस पे बात करें, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें समझौते हो सकते हैं जो भारत को भी लाभान्वित करेंगे और उज्बेकिस्तान को भी लाभान्वित करेंगे।
2: देखिए, कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, हमारी यहाँ की जो एम्बेसडर हैं स्मिता पंत जी से भी बात हुई और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो उज्बेकिस्तान है वो मिनरल रिच कंट्री है, तो रेयर अर्थ जो कि आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज है और जिसकी बहुत दुनिया में मांग है, वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है और उसको लेकर के कोई समझौते की गुंजाइश हो सकता है कि बन भी सकती है, उस पर बातचीत होगी, ऐसा एम्बेसडर महोदया ने भी कहा। और दूसरी चीज है रक्षा में बहुत सहयोग है दोनों देशों के बीच में,
1: जी
2: डस्ट क्लिक करके उनका आपस में एक साझा संयुक्त सैनिक अभ्यास भी होता है। भारत के पूर्व रक्षा प्रमुख मनोज पांडे भी जो थल सेना प्रमुख थे वो भी यहाँ आ चुके, तो दोनों देशों के बीच रक्षा है। एक महत्वपूर्ण निवेश का क्षेत्र और व्यापार का क्षेत्र जो है वो एग्रीकल्चर है। इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर के भी जो है वो कुछ कॉन्क्रीट चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ईरान से पहले सामान यहाँ पर लोग मंगाते थे और अब वो रास्ता लगभग बंद हो चुका है ईरान युद्ध के बाद से, तो चीन के रास्ते माल आता है तो वो महंगा पड़ता है, हमारी स्थानीय व्यापारिक समुदाय के लोगों से ही बात हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है मेडिकल का, फार्मा का, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी, कई भारतीय छात्र ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, यहीं पर अपने हॉस्पिटल्स और फार्मा सेक्टर के जो फैक्ट्रियां हैं वो स्थापित की, तो वो भी एक बड़ा सेक्टर है। पर्सन टू पर्सन जो बड़ी संख्या में लड़के आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक बड़ी आबादी जो यहाँ रहने वाले भारतीयों की है उसमें लगभग 80 से 90% तो सिर्फ छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। हमारी बहुत से छात्रों से बातचीत हुई तो उन्हें भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो उनके आने जाने को लेकर के, उनके प्रोफेशन को लेकर के हो सकता है कि कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें निकल करके आए।
1: और इसके बाद का जो सेकेंड लेग है इस यात्रा का प्रधानमंत्री जी का, जिसमें वो किर्गिज गणराज्य जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेने, उसके समिट में, आप हमें बताएं एम्बेसडर सज्जन हार की जो उन्होंने विजन दिया है भारत का, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी SCO, सिक्योरिटी कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटी, इसको आप कितना कहें कि एक सटीक, एक उम्मीद की किरण मानते हैं, हर एक पहलू पे आप किस तरह से आपसी सहयोग आंकते हैं, आगे के क्या पोटेंशियल है?
0: जी देखिए, मेरे विचार से संभावनाएं तो बहुत हैं इसमें, परंतु इसको ये भी देखा जाए जो इसमें लिमिटेशंस भी हैं। भारत ने इसके दो सबसे महत्वपूर्ण उच्च श्रेणी के ये शिखर सम्मेलन होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, क्योंकि ये सब जो देश हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत और पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो सबके प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पर प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट अलग होते हैं। तो हमने भारत ने शिखर सम्मेलन किया था प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर 2020 में, और सबसे उच्च स्तर पर उच्च श्रेणी का जो शिखर सम्मेलन होता है वो

0: हेड ऑफ स्टेट का होता है, जो कि 2023 में हमने उसकी अध्यक्षता की थी, और उसमें हमने बहुत से वो लिए थे, नए इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि बुद्धिज्म के ऊपर, जैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, जैसे मिलेट्स को, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा हम कहें एग्रीकल्चर में फूड स्कैर्सिटी, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, तो बहुत हमने अच्छे इसमें इनिशिएटिव्स लिए। तो मैं समझता हूँ संभावना इसमें बहुत है। सिक्योरिटी अच्छी बात है, क्योंकि इसको एस्टैब्लिश ही इसीलिए किया गया था, जो ये वाला सभी जो क्षेत्र है इसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, जो कैसे ये देश मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सहायता कर सकते हैं। दूसरी बात है कनेक्टिविटी, और उसमें हम कहते रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, जो पाकिस्तान के थ्रू तो हम नहीं आ सकते, तो हमने चाबहार के ऊपर बहुत अधिक जोर देना शुरू किया था, और उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। परंतु जब से ईरान के ऊपर इतनी अंकुश लगे हैं, इतने सैंक्शंस आए हैं, तो उसको हम आगे ठीक तरीके से नहीं ले जा पा रहे हैं। परंतु कजाकिस्तान का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सोनू जी, और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देश इनमें बहुत रुचि रखते हैं, जो INSTC और चाबहार को आगे हम और ज्यादा प्रगति की ओर ले जा सके। तो काफी, अगर नॉमिनल टर्म में देखा जाए, तो हमारी करीब 30% से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था है, तो ये अगर एक साथ मिलकर काम करें तो ये बहुत ही अच्छा इनमें सहयोग की संभावनाएं हैं। और मैं समझता हूं जो बातचीत होगी उसमें इन सभी सहयोग के पहलुओं को हम आगे ले जाने में सक्षम होंगे।
1: एम्बेसडर सज्जनहार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील चंद्र तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
0: बहुत धन्यवाद सोनू जी, मुझे आमंत्रित करने, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीलेश जोशी का नमस्कार।

जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ कुछ नया सीखा जाता है। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक ले जाते हैं और कुछ हमें खुद ही सीखा जाते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बस मुसाफिर बन के तो देखो क्या मजा है, रुकने में नहीं निरंतर आगे बढ़ने में ही रजा है।

कहाँ जाना है ये दिल से पूछो, क्यों चल रहे हो ये राहों से पूछो। जिंदगी का फलसफा है कितना गहरा, अपने अंदर के मुसाफिर से जरा पूछो और फिर अपने हम सफर से पूछो।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: धीरे धीरे कट ही जाता है सफर जिंदगी का, बस साथ हो तेरे सच्चा हम सफर तेरा, जो सदा तेरा साथ दे, मंजिल तुझे अपने आप ही मिल जाएगी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हर सफर में कुछ अनकही बातें, कभी खामोशी तो कभी मुलाकातें, जो संग चला बस वही याद रह गया, बाकी सब तो सुहाने सफर की सौगातें।

सफर लंबा है पर मंजिल सुहानी है, हर मोड़ पर यादों की कहानी है, तेरा साथ है तो हर मंजिल अब प्यारी है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे, दिल से नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ 89 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार

0: आर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
1: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
3: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि कितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
5: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के

0: लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने बीआर अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्टोरेंट भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
5: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेख उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023

शारदा को अभी आपने सुना फिल्म नैना में। गीत रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। लीजिए सुनिए विश्वास फिल्म का दो गाना, युगल स्वर मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर के हैं। गीत रचना गुलशन बावरा की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। चित्रगीत कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं दुनिया फिल्म का गीत। युगल स्वर मुकेश और शारदा के हैं, संगीत शंकर जयकिशन का।

दुनिया इसी का नाम है। मुकेश और शारदा को अभी आपने सुना दुनिया फिल्म में। संगीत रचना शंकर जयकिशन की थी। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। युवा होना केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने समय की भाषा समझने, स्वयं को पहचानने और अपने सपनों के लिए निरंतर साधना करने का समय है। आज की युवा भारती में हम चलेंगे युवा जीवन की ऐसी ही चार दिशाओं में, जहां सही पोषण है, बदलती अभिव्यक्ति है, स्वयं की तलाश है और सपनों के साथ कला की साधना भी है। सही पोषण सशक्त युवा, विकास की पहली शर्त। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सजग मन का निवास होता है, और जब बात युवाओं की हो तो ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना। साल 1982 में शुरू हुई ये पहल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आज हमारी थालियां भले भरी हुई हों, लेकिन क्या वो पोषण से भरपूर है? तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और सुविधा के नाम पर बढ़ता जंक फूड खासकर युवाओं की खानपान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन अब कई बार भूख से अधिक स्वाद और सुविधा का विषय बन गया है। लेकिन पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, ये शरीर को शक्ति देता है, मन को सजग रखता है और हमारे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। युवावस्था जीवन का वो दौर है जब शरीर संभावनाओं से भर रहा होता है और मन भविष्य के सपनों को आकार दे रहा होता है। ऐसे में सही पोषण केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की भी पहली शर्त है। हमें अपनी पारंपरिक भोजन पद्धति की ओर भी देखना होगा। दालें, अनाज, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, फल और स्थानीय खाद्य पदार्थ हमारी थाली को केवल स्वादिष्ट ही नहीं संतुलित और समृद्ध भी बनाते हैं। और श्री अन्न यानी मिलेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है कि स्वस्थ भविष्य किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में नहीं होता, उसकी शुरुआत रोज हमारी अपनी थाली से होती है। आइए पोषण को अभियान भर ना रहने दें बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सही पोषण से ही बनेगा सशक्त युवा और सशक्त युवा ही रचेंगे स्वस्थ, समर्थ और विकसित भारत का भविष्य। एक स्वस्थ शरीर ही एक सजग मन और सक्रिय जीवन की बुनियाद बनता है। लेकिन युवा होने का अर्थ केवल स्वस्थ और सक्षम होना ही नहीं, अपने समय के साथ संवाद करना भी है। हर पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ती है, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से और कभी ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से जिनमें एक पूरी दुनिया छुपी होती है। तो आज की युवा भाषा का एक दिलचस्प कोट समझने का ही एक प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति, कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की हमारी अगली प्रस्तुति कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की है, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं।
1: हाय फ्रेंड्स, पिछले साल एक इंटरनेशनल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। यह वर्ड था 6-7, बस दो अंक, ना कोई डेफिनेशन ना कोई मीनिंग। डिक्शनरी ने खुद माना कि इसका मतलब बताना मुश्किल है। कई स्कूलों ने इसे क्लास में बोलने पर रोक लगाई और बच्चों ने इसे और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसी साल हमारी संसद के भीतर एक विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इसी किस्म की वोकैब में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। ये जेंजी लिंगो है, सड़क से सांसद तक ओमनी प्रेजेंट। और यंगस्टर्स की अपनी अलग वोकैब कोई नई बात नहीं है। लिंग्विस्ट दशकों से यह कहते आए हैं कि हर पीढ़ी अपनी एक इंटरनल लैंग्वेज गढ़ती है, एक ऐसी वोकैब जो यह तय करती है कि कौन इस समूह के अंदर है और कौन बाहर। अब आप भारत का अपना उदाहरण समझिए। इंग्लिश शब्द पहली बार 1967 में दर्ज हुआ था, यानी 60 साल से हम हिंदी और अंग्रेजी को एक ही वाक्य में मिला रहे हैं। झकास शब्द 1985 की एक फिल्म से निकलकर पूरे देश के जुबान पर चढ़ गया। मुंबईया बोली से बिंदास आया, टाइम पास आया, जुगाड़, दादागिरी, फंडा आया, और आज ये सारे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज हैं। एक समय जिन शब्दों को गली मोहल्ले की भाषा कहकर नाक भौं सिकोड़ी जाती थी, वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में इंडियन इंग्लिश की 900 से ज्यादा एंट्रीज का हिस्सा हैं। अब असली सवाल, ये जेन ज़ी ऐसा बोलते क्यों हैं? दो वजहें। पहली, यह दौर। पहले एक शब्द कॉलेज की कैंटीन से मोहल्ले तक, फिर किसी फिल्म तक, और तब देश भर पहुंचता था। इसमें सालों लग जाते थे। अब बीच में ना फिल्म है ना अखबार, बस एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम बाजार की तरह काम करता है। जो दिखता है वही बिकता है। जेन्ज़ी लिंगो तेज बिकता है, इसलिए आपके सामने है। दूसरी, ब्रेविटी, यानी गागर में सागर भरना। एक पिक्चर, एक लाइन, और पूरी तरह कही जा सकती है। जिस बात को कहने में मिलेनियंस को पूरा पैराग्राफ लग जाता है, वे एक मीम में कह देते हैं।
2: मेरा नाम अमृता सिन्हा है, मैं सूरत में रहती हूँ, और मैं एक आईटी कंपनी के साथ एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम करती हूँ। जेन्ज़ी लैंग्वेज कॉन्शियसली बनाई हुई कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे रेगुलर इंटरनेट यूसेज और मीम स्क्रोलिंग से आई है, और अब हमारे जेनरेशन के हर दिन के कॉन्वर्सेशन का एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। और मुझे लगता है जब मैं ऐसा कोई शब्द यूज करती हूँ अपने एल्डर जेनरेशन के सामने और उनका बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशन आता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जेनरेशन का कोई स्लैंग या रेफरेंस यूज करके उन्हें समझा पाऊँ। जैसे मैंने जब अपनी दादी को बताया कि डेलीली आपके ख्याली पुलाव पकाने का छोटा वर्जन है, तो अब उन्हें बहुत मजा आता है डेलीलू वर्ड यूज करने में।
1: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, यानी 100 करोड़। वहीं जेन्ज़ी, यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन, आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पीढ़ी है, लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि अब आप जेन्ज़ी को सीरियसली लें। तो आइए समझते हैं कि जेन्ज़ी की भाषा किस तरह की है। पिछले साल दुनिया के बड़े शब्दकोशों ने जो शब्द चुने उन पर गौर कीजिए। ऑक्सफोर्ड ने चुना रेज बेट, यानी ऐसी सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा क्लिक मिले। कैम्ब्रिज ने चुना पैरा सोशल, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना जो आपको जानता तक नहीं। मरियम वेबस्टर ने चुना स्लॉप, यानी मशीन से थोक में बनाया गया घटिया कंटेंट, और उससे पिछले साल ऑक्सफोर्ड का शब्द था ब्रेन रॉट। ये मजाकिया शब्द नहीं, ये इस जनरेशन का डिक्शन है। अब एक दिलचस्प एनालॉजी। 20वीं सदी में रेवोल्यूशन का सबसे पहचाना निशान क्या था? हवा में उठी हुई एक बंद मुट्ठी, एक फिस्ट। ये फिस्ट हर महाद्वीप पर दिखी, बस पिक्चर ही काफी थी। अब इस आइकॉनिक फिस्ट की जगह एक और पिक्चर लेती जा रही है, और यह पिक्चर किसी विचारधारा से नहीं, एक जापानी कॉमिक से आई है। 1997 में जापानी चित्रकार इचिरो ओडा ने एक सीरीज शुरू की, वन पीस। उसका नायक है मंकी डी लूफी, सर पर स्ट्रॉ हैट पहने एक नौजवान समुद्री यात्री जो अपने साथियों के साथ एक भ्रष्ट विश्व व्यवस्था से टकराता है। उसके ग्रुप का निशान है एक कार्टून स्कल, और उस स्कल पर वही स्ट्रॉ हैट है। भारतीय जेन्ज़ी के बीच बेहद पॉपुलर लेखक और पॉडकास्टर जेन्ज़ी के इस व्यवहार का बेहद अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। उनका कहना है कि आज की सटायर से भरी दुनिया में बात तेज फैलती है, और इसीलिए आज के दौर में ये जेन्ज़ी का मुख्य औजार भी बन जाता है। जयपुर साहित्य उत्सव में उन्होंने इस जनरेशन को कल्चरल लेबर तक भी कहा। उनका कहना है कि जेन्ज़ी एल्गोरिदम, ब्रांड और ट्रेंड के लगातार दबाव में जी रहे हैं। मतलब प्रेशर तो है, पर उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप जेन्ज़ी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दिल्ली का नौजवान किसी इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का नौजवान किसी लोक कलाकार के लिए। जेन्ज़ी एक सुविधाजनक लेबल है, कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं, और ऐसी ही उसकी भाषा है, किसी भी लेबल से मुक्त। तो जब हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, तो असल में हम भाषा की नहीं, हमारे जनरेशनल गैप की बात कर रहे होते हैं, जो आज से ज्यादा कभी नहीं था। आज ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच हमारे लिए सबसे उम्दा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे चर्चित चेहरे, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर ऑन द प्लैनेट, और मास्टर कम्युनिकेटर। बीते कुछ हफ्तों में उनके इंस्टाग्राम की भाषा बदली है। लंबे औपचारिक भाषणों की जगह छोटे डायरेक्ट मोबाइल से बने वीडियोस ने ली है, वर्टिकल फ्रेम में, सामान्य बोलचाल में। जुलाई के आखिर में एक वीडियो की शुरुआत ही तरह हुई, हाय फ्रेंड्स। किसी वीडियो में एक प्रधानमंत्री का हाय फ्रेंड्स कहना कोई छोटी बात नहीं है, या कम्युनिकेशन अप्रोच के बदलने का संकेत है। क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस छिपा है कि जेंजी तक पहुंचना है तो जेंजी की भाषा में पहुंचना होगा। प्लेटफॉर्म वही चलेगा जहां जेंजी पहले से मौजूद है और लिंगो वही चलेगा जो जेंजी का अपना है, नो कैप। दोस्तों ध्यान रहे, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना नियम भी यही है। हालांकि हमें ये भी ध्यान देना होगा, जो ब्रेविटी इस भाषा को ताकत देती है वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो वो कैब हर 3 हफ्ते में बदल जाए, बेहद छोटी हो, वह याद कम रहती है। जो सटायर हर बात पर लागू हो, वह धीरे धीरे विषय की गंभीरता छीन लेता है। और जिस मंच पर गुस्सा सबसे तेज बिकता हो, वहाँ गुस्सा भड़काना एक कारोबार बन जाता है। रेज बेट इसी शब्द की सच्चाई है। वायरल हो जाना और बदलाव ले आना दोनों एक चीज नहीं। तो डियर जेन ज़ी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ, भाषा बदलती रहती है, बदलती रहेगी। टाइम पास और जुगाड़ कभी सड़क की भाषा थे, आज वो कैब का हिस्सा है। जो आज डेलुलू है वह किसी दिन संसदीय बहस का सामान्य शब्द होगा, बल्कि हो भी चुका है। तो इस पूरे शोर के बीच एक बात याद रखने लायक है, शब्द और अंदाज बदल सकते हैं लेकिन संवाद की जरूरत नहीं बदलती। भाषा चाहे कोई भी हो, बात तभी आगे बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें। तो कह तो दिया, नो कैप।
3: अभी आपने सुना, कह तो दिया, नो कैप। आज की युवा भाषा के दिलचस्प कोड को समझने का प्रयास था ये लघु प्रस्तुति। आलेख और प्रस्तुति थी ओमवेश उपाध्याय की, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीति संचार विशेषज्ञ हैं। भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संवाद के तरीके बदलते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हर पीढ़ी के अंदर बना रहता है, मैं कौन हूँ और मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूँ। दुनिया को जानने और उसके साथ कदम मिलाने की दौड़ में क्या कभी हम अपने भीतर झांकने के लिए भी ठहरते हैं? इसी तलाश की एक अनोखी यात्रा हमें ले चलती है ऋषिकेश, जहां देश के 14 राज्यों से आए 50 युवाओं ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से स्वयं को समझने और स्व की खोज का प्रयास किया। हमारी अगली प्रस्तुति है ये लघु वृत्तचित्र, दुनिया से आगे खुद तक। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक

0: अब भी है।
1: गंगा की अविरल धारा, हिमालय की शांत और विराट उपस्थिति, आश्रम का अनुशासित जीवन, गुरु का सानिध्य और आचार्य शंकर की ज्ञान परंपरा से संवाद, इन सबके बीच 10 दिन ऐसे बीते जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन को समझने का ही अवसर नहीं दिया, स्वयं को देखने और समझने की एक नई दृष्टि भी दी। ये अवसर था अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 2026 का। मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित यह 10 दिवसीय शिविर उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस शिविर की एक विशेष बात थी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं का एक साथ होना। 14 राज्यों के युवा इस शिविर में सहभागी बने। देश से 1200 युवाओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुई, उनमें से 300 युवाओं का साक्षात्कार हुआ और अंततः 50 युवाओं का चयन इस शिविर के लिए किया गया। एक साझा जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की, और शायद उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूँ? यही प्रश्न अद्वैत वेदांत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 10 दिनों तक शिविर में आदि गुरु आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कराया गया। तत्वबोध अर्थात तत्व का बोध, अपने अस्तित्व के मूल को समझने का प्रयास। इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु का सानिध्य। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में तत्वबोध का अध्ययन हुआ। इस पूरे अनुभव को मैं केवल एक कार्यक्रम की तरह या शिविर के रूप में ही नहीं देखता हूँ, स्वयं इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर का एक सहभागी भी रहा हूँ। तत्वबोध के अध्ययन ने मुझे अपने बारे में, अपने मन और अपनी पहचान के बारे में नए ढंग से सोचने का भी अवसर दिया। कई साथियों के साथ रहने, उन्हें जानने और समझने का भी अवसर मिला। असल में इन साथियों और सहपाठियों के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही हमारी एक साथी बेंगलोर से जुड़ी हैं, दीक्षा ओम। आइए जानते हैं उनके अनुभव शिविर के बारे में।
2: इस शिविर की जानकारी मुझे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से हुई, जहाँ पर मैं योग दर्शन की पढ़ाई कर रही हूँ। इस शिविर में जाने का अवसर मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर बेहद ही खूबसूरत बातें जानी। उन सभी बातों में से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने जीवन को सही प्रकार से देखने के नई दृष्टिकोण को जाना। 90% से भी ज्यादा हमारी समस्याएं एक गलत मेंटालिटी, गलत थॉट प्रोसेस और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के कारण है। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम चीजों को एक सही ढंग से देख सकते हैं और जीवन में कर्तव्य क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने जानी वो ये है, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे भीतर और गहरा उतरता है। तीसरी चीज जो मैंने जानी वो ये है कि किस प्रकार शास्त्र आपके शस्त्र का काम कर सकते हैं। जब हमें सही ज्ञान होता है तो हम उस वीर योद्धा के भांति हैं जो एक युद्ध भूमि में सशक्त खड़ा होता है। उसके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डरता नहीं है, उसे अपने ज्ञान पर और स्वयं पर आत्मविश्वास होता है। इसलिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा ये अनुभव।
1: हम अक्सर स्वयं को अपनी उपलब्धियों से पहचानने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मैं कितना सफल हूँ, मेरे पास क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक क्षण के लिए इन सब प्रश्नों से आगे ले जाकर पूछता है, इन सब के पीछे तुम कौन हो? शायद यही प्रश्न हमें भीतर से स्वतंत्र करता है और यही अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह केवल किसी विशेष आयु के लोगों के लिए नहीं, यह जीवन को समझने की एक दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की समृद्धि की ओर भी देखना सिखाती है। इस शिविर में मेरे साथ प्रतिभाग कर रहे मेरे एक और सहपाठी जो कैथल हरियाणा में योग के शिक्षक हैं, अमन वर्मा, जानते हैं शिविर में उनका अनुभव।
0: स्वामी जी के प्रवचन दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और अनुभवों से भरपूर थे। उस चीज के कारण हम लगातार अपने बारे में भी मनन करते और ग्रंथ के बारे में भी। इतने सारे युवाओं के बीच में एक साथ आकर के पढ़ना, इतने सारे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिभागियों के बीच में उस ग्रंथ को जानना, पढ़ना, साथ में संवाद करना, वार्ताएं करना, उस चीज के अनुभव ने मुझे इस ग्रंथ के साथ साथ, इस दर्शन के साथ साथ जीवन की जो ऊर्जा है, जीवंतता है, उसका जो यौवन है, उसको भी अनुभव करने का मौका मिला।
1: 10 दिन सुनने में बहुत कम, लेकिन कभी कभी 10 दिन भी जीवन में एक लंबे अध्याय की तरह उतर जाते हैं। ऋषिकेश से लौटते समय हमारे साथ ढेर सारी तस्वीरें और स्मृतियां थी, और इसके साथ ही हमारे साथ था तत्वबोध का अध्ययन। अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 10 दिनों का आयोजन मात्र नहीं, निरंतर चलने वाली एक यात्रा का हिस्सा भी है। यदि आपके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा है, यदि आप आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस परंपरा को निकट से अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की एकात्म धाम पहल से संबंधित जानकारी उनकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हम बहुत कुछ खोजते हैं, सफलता खोजते हैं, सुख खोजते हैं, सम्मान खोजते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें एक और खोज की ओर ले जाती है, स्वयं की खोज। और शायद यही खोज सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर।
3: दुनिया से आगे खुद तक, अभी आपने सुना ये लघु वृत्त चित्र। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं। खुद को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसके अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपने सपनों को पहचानना, अपनी राह चुनना और चुनौतियों के बीच उस राह पर बने रहना, यही तो युवा होने की असली परीक्षा भी है। किताबें हैं, करियर की तैयारी है, भविष्य की चिंताएं हैं, और इनके बीच एक कला है जिसे केवल समय नहीं, समर्पण भी चाहिए। जब मंच पर मोहिनीअट्टम की मुद्राएं आकार लेती हैं और मन में भविष्य की मंजिलें भी साथ साथ चलती हैं, तो जीवन एक खूबसूरत कदम ताल बन जाता है। प्रस्तुत है लघु रूपक मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल।
4: किताबों के खुले पन्ने, असाइनमेंट की समय सीमा, आने वाली परीक्षाओं का तनाव, ऐसे में जरा सोचिए जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के भाग दौड़ के तुरंत बाद अपनी किताबें समेत शाम होते ही सीधे एक शास्त्रीय नृत्य के रियाज में जाकर शामिल हो जाए।
5: आज की जनरेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने की रेस में नहीं दौड़ रही। एक तरफ करियर बनाने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ अपने अंदर के उस कलाकार को जिंदा रखने की जिद, जो शॉर्टकट नहीं बल्कि घंटों का सब्र और कड़ा रियाज मांगता है। केरल के तटीय क्षेत्रों से विकसित हुई मोहिनीअट्टम 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है।
4: आंदोलन यानी लहरों जैसी सुगम शारीरिक गतियाँ,

0: सोपानम, संगीत की धीमी लय और नयन अभिनय यानी आंखों का बारीक संचालन इसकी मुख्य तकनीकी पहचान है।
1: कथकली की नाटकीयता या भरतनाट्यम की तेज पदचाप के विपरीत मोहिनीअट्टम का मुख्य आधार अति सूक्ष्म ठहराव और शारीरिक संतुलन है।
0: इसीलिए आज के फास्ट पेस्ट दौर में इस विधा की पारंपरिक संरचना को बिना बदले नई पीढ़ी को सौंपना एक बेहद बारीक काम है।

0: एक गुरु के तौर पर आज की व्यवहारिक चुनौतियों के बीच इस क्लासिकल तकनीक को युवा कलाकारों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए सुनते हैं गुरु जयप्रभा मेनन जी से।
1: क्लासिकल में ये मोहिनीअट्टम अकेले एक नृत्य रूप है जो सोलो में और ये सिंगल परफॉर्मेंस में आता है, एकहारिया में आता है। हमारे शास्त्रीय नृत्य रूप के दो तरह के, तांडव और लास्य। तो मोहिनीअट्टम लास्य कैटेगरी में आता है। लास्य मतलब क्या है? लास्य इज जेंटल, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल, यानी और एकदम सरलता में बोलेगा ये स्त्रैण नृत्य रूप है, फेमिनाइन ब्यूटी इसमें ज्यादा है। मोहिनीअट्टम में बॉडी डिसिप्लिन एंड माइंड डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है।
2: आज की डिजिटल दुनिया शॉर्टकट और इंस्टेंट रिस्पांस पर चलती है, लेकिन मोहिनीअट्टम जैसी विधा महीनों और सालों का सब्र मांगती है। ऐसे में पढ़ाई के तनाव और रियाज के अनुशासन के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या ये कला उनकी पढ़ाई में रुकावट बनती है या उल्टा उनका फोकस और बेहतर करती है?
3: मेरा नाम अनश्वर है एंड अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ, पिछले 5 साल से मोहिनीअट्टम। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं लाइक ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं कर पाती एंड डांस क्लास प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। और इसमें नॉट ओनली माय कल्चर बट मैं बाकी चीजों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उसका एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एंड मैंने सोचा भी है कि अगर आगे जाके मैं जस्ट इन केस अपने डांस को प्रमोट करना चाहूँ, आई कैन स्टार्ट टेकिंग डांस क्लासेस एंड ऑल।

0: मंच का आत्मविश्वास सिर्फ उस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी झलकने लगता है।
1: माय नेम इज राजश्री आर, आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, इट्स माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। क्लासिकल डांस के टूअर्स बहुत अट्रैक्टेड रही, डांसिंग इज माय पैशन, बट कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर को लेकर भी थोड़ा बहुत कंसर्न है कि इफ आई एम परस्यूइंग दिस फील्ड मैं कर पाऊंगी कि नहीं। इवन दो आई नो कि मैं कर लूंगी, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री। बट अगर मुझे एक मौका मिलता है कि मैं इसको फुल टाइम पे लेके जाऊं ट्रेडिशनल मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम, आई विल डेफिनेटली डू इट।
0: दिन भर की किताबी पढ़ाई और करियर की आपाधापी के बीच मोहिनीअट्टम के इन कठिन तट्टाडवू और रामायणम इलाकीअट्टम का कड़ा अभ्यास ये साबित करता है कि युवाओं में कला के प्रति समर्पण कितना गहरा है।
2: शास्त्रीयता की मर्यादा को बिना बदले आधुनिक जीवन शैली के साथ इस विधा को साधते युवा कलाकारों की ये यात्रा वाकई दिलचस्प है। मंच पर थिरकते ये कदम और मन में अपनी मंजिल को पाने का ये जज्बा यूं ही बना रहे, हमारी शुभकामनाएं।
3: मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल, अभी आपने सुना ये लघु रूपक। आलेख प्रांजल, वाचन स्वर प्रांजल और नेत्रा, प्रस्तुति

हिंदी रूपक एकांश। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए आइए एक नजर डालें उन युवा कदमों पर जो आज भारतीय खेलों को नई रफ्तार दे रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों पर अपनी चमक बिखेरी। 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। एथलेटिक्स में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। कुश्ती के विश्व अंडर 20 मंच पर भी भारतीय बेटियों ने दम दिखाया। मानसी लाठर ने रजत जबकि तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए और शतरंज के बिसात पर आर प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर भारतीय प्रतिभा का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा है। मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें याद दिलाती है कि खेल केवल जीत का नाम नहीं अनुशासन समर्पण और निरंतर साधना का नाम है। आज का युवा भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैदान बदल रहे हैं, खेल बदल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को ऊंचा उठाने का जज्बा वही है। इसी के साथ संपन्न होता है युवा भारती का आज का अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर मंडपा कशारदा का कर्नाटक शैली में गायन।
1: गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर मंडपा कशारदा।
0: श्रीमती विमला और श्री कृष्णमूर्ति की बेटी डॉक्टर मंडपा कशारदा ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री आईवीएल शास्त्री के पास प्राप्त की। तत्पश्चात श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु के पास आपने संगीत की बारीकियां सीखी। 8 वर्ष के अल्प आयु से ही डॉक्टर शारदा अपने कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर की रचनाओं पर आपके शोध कार्य हेतु आपको PhD प्रदान किया गया है। आप आंध्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त रही हैं। पिछले 60 वर्षों से डॉक्टर मंडपा कशारदा कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। आपको कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंडपा कशारदा को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन में A ग्रेड और सुगम संगीत में B हाई ग्रेड प्राप्त है और आप Grade 1 कम्पोजर भी हैं।
1: बॉर्न इन विजयनगरम टू श्रीमती विमला एंड श्री कृष्णमूर्ति, डॉक्टर मंडपा कशारदा वॉज इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक एट एन अर्ली एज। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक अंडर श्री IVL शास्त्री एंड लेटर होन्ड हर स्किल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु। डॉक्टर मंडपा कशारदा रिसीव्ड हर PhD डिग्री फॉर हर थीसिस ऑन द कॉम्पोजिशंस ऑफ पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर। शी सर्व्ड फॉर सेवरल इयर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक of Andhra University, an A-grade artist of Akashvani and Doordarshan in Carnatic music and B-high in light music, she is also a grade 1 music composer. Dr. Sharada has performed more than 3,000 concerts in classical, devotional and light music in several platforms all over the country. She is also the author of 2 books, Swaratarangini and Kriti Manjari. Dr. Mandapa Kasharada is the recipient of a number of awards and felicitations.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपा कशारदा की संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव।
1: In tonight's concert, Dr. Mandapa Kasharada is accompanied by श्री महादासु नीलाद्री राव on the violin, श्री सुसरापु सुब्रमण्यम on the मृदंगम and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam.
0: Dr. Mandapa Kasharada aaj ke karyakram ka aarambh karti hain Begad raag mein Sant Tyagaraj ki rachna Bhaktuni Charitramu se।

0: जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: डॉक्टर मंडपक शारदा बिगिन्स हर प्रेजेंटेशन विद भक्तुनी चरित्रामो, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन बेगर रागम।

0: डॉक्टर मंदपा का शारदा की अगली प्रस्तुति है माया मालावगौल राग में श्याम शास्त्री की रचना नीलायताक्षी, जो कि मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: She next presents a composition of Shyama Shastri in Maya Malava Gaula Ragam Misra Chaputalam.

0: सुनिए, शुद्ध कन्यासी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना श्री पार्थ सारथी, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: वी विल नाउ लिसन टू श्री पार्थ सारथी। इट इज इन शुद्ध कन्यासी रागम रूपक तालम एंड इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार।

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर मंडपा का शारदा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मंडपा का शारदा प्रस्तुत कर रही है कल्याणी राग में पल्लवी गोपालय्यर की रचना नीदु चरण पंकजमुले, जो कि आदिताल में निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you have been listening to a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapaka Sharada. She is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam. Continuing her performance, Dr. Mandapaka Sharada will now present a composition of Pallavi Gopalayar in Kalyani Ragam Adithalam.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री सुसरापु सुब्रमण्यम ने और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव ने। डॉक्टर मंडपा का शारदा आज के कार्यक्रम का समापन वृंदावनी राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्णा द्वारा रचित तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम बाय श्री सुसरापु सुब्रमण्यम एंड ऑन द घटम बाय श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। Dr. Mandapaka Sharada concludes her this evening's presentation with a tillana of Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Vrindavani Ragam Aditalam.

0: के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अभी तक आप डॉक्टर मंडपा कशारदा द्वारा कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे वायोलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapa Kasharada. She was accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani, Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के